आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1

सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से होकर जाता है। जब मन शांत होता है तब परमात्मा की आवाज़ स्पष्ट महसूस की जाती है, सुनाई देती है।

अहंकार दूरी बनाता है और विनम्रता ईश्वर के निकट ले जाती है। कृतज्ञता वो प्रार्थना है जो बिना शब्दों के भी ईश्वर तक पहुंच जाती है।

आत्मा की शांति संसार की किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करने का सबसे सुंदर मार्ग है।

हिमांजली में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं मानस गान।

श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्टजन में एक लक्षण समान होता है। जहाँ संतजन का विछो प्राण हर लेने वाला होता है, वहाँ असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं?

0: देशगान के पश्चात आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौसम के दौरान अत्यधिक सार्वजनिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि

भारत के आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहचान बनाई है और आम देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 3 नगर निगमों में शानदार जीत हासिल कर ली है। राज्य में 17 मई को 4 नगर निगमों में वोट डाले गए थे, जिनकी कल मतगणना की गई। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में ही जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मंडी नगर निगम में 14 वार्डों में से 12 पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को 1 वार्ड में जीत मिली है। पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है।

0: पालमपुर नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में ही जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मंडी नगर निगम में 14 वार्डों में से 12 पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को 1 वार्ड में जीत मिली है। पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है। उन्होंने शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 कांग्रेस समर्थित पंचायत प्रधान व 2300 उप प्रधान विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनाव के आधार पर पूरे प्रदेश का माहौल अपने पक्ष में होने के दावे पर कर रही है, जो गलत है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा,

0: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारीपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला, 7:05 हुए हैं। एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं चिंतन।

एक बार देवऋषि नारद जी मही सागर संगम में स्नान करने पधारे। उसी समय वहां बहुत से ऋषि मुनि भी आ पहुंचे। नारद जी ने उनसे पूछा, महात्माओं आप लोग कहां से आए हैं? उन्होंने बताया, मुने हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहां के राजा धर्मवर्मा है। एक बार उन्होंने दान के तत्वों को समझने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे कहा, द्विहेतु षडधिष्ठानम षडंगम च द्विपाकयुक् चतुष्कारम त्रिविधम त्रिनाशम दानम मुच्यते। अर्थात दान के दो हेतु, छह अधिष्ठान, छह अंग, दो फल, चार प्रकार, तीन भेद और तीन विनाश साधन हैं। नारद जी, राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने इसका अर्थ नहीं बतलाया। तब राजा ने ढिंढोरा पिटवाकर ये घोषणा करवाई कि जो इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या करेगा उसे मैं 7 लाख गऊएं, उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं और 7 गांव दूंगा। श्लोक का अर्थ दुर्बोध होने से उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सका। हम लोग सब वहीं से आ रहे हैं। नारद जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर धर्मवर्मा के पास पहुंचे और कहा, राजन मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और उसके बदले जो देने के लिए ढिंढोरा पिटवाया है उसकी सत्यता प्रमाणित कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण ऐसी बात तो बहुत से ब्राह्मण कह चुके हैं पर किसी ने वास्तविक अर्थ नहीं बताया। दान के दो हेतु कौन हैं, छह अधिष्ठान कौन हैं, छह अंग कौन हैं, दो फल कौन हैं, चार प्रकार, तीन भेद और तीन विनाश साधन कौन हैं? इन 7 प्रश्नों को यदि आप ठीक ठीक बतला सकें तो मैं आपको 7 लाख गऊएं, 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 7 गांव दूंगा। नारद जी ने कहा, श्रद्धा और शक्ति ये दो दान के हेतु हैं, क्योंकि दान का थोड़ा या बहुत होना पुण्य का कारण।

नहीं होता। न्यायोपार्जित धन का श्रद्धापूर्वक थोड़ा सा भी दान भगवान की प्रसन्नता हेतु होता है। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। दाता, प्रतिगृहता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग हैं। इहलोक के और परलोक के ये 2 फल हैं। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक, ये 4 प्रकार हैं। कुआं, पोखरा खुदवाना, बगीचा लगाना आदि जो सबके काम आए वो ध्रुव है। नित्य दान ही त्रिक है। संतान, विजय, स्त्री आदि की विषयक इच्छा पूर्ति के लिए दिया गया दान काम्य है। ग्रहण, संक्रांति आदि पुण्य अवसरों पर दिया गया दान नैमित्तिक है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, ये 3 भेद हैं। दान देकर पछताना, कुपात्र को देना, बिना श्रद्धा के देना अर्थात पश्चाताप, कुपात्र और अश्रद्धा, ये 3 दान के नाशक हैं। इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो इनका महात्म्य है उसे मैंने तुमको सुना दिया। इस पर धर्मवर्मा बहुत चकित हुआ। उसने कहा, मुने, आप कौन हैं? आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। आप कृपया अपना परिचय दीजिए। नारद जी ने अपना परिचय दिया और कहा, तुम जो मुझे भूमि दे रहे हो इसे मैं तुम्हारे पास ही धरोहर छोड़ रहा हूं, आवश्यकता पड़ने पर ले लूंगा। यूं कहकर वे रेवतक पर्वत पर चले गए और वहां विचारने लगे, मैंने भूमि तो पा ली पर अब योग्य ब्राह्मण कहां मिले जिसे मैं भूमिदान दूं।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं FM शिमला पर आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। 7:57 पर आप सुनेंगे FM न्यूज़ हेडलाइन, जिन्हें कि आप सुबह 8:30 और 9:57 पर भी सुन सकते हैं। 8 आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ के लिए। लोक संगीत 8:32 से शुरू होगा और 8:45 पर कानून की बात में आप सुनेंगे औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम 1947। इसमें श्रीमती अनुजा सूद पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय शिमला से भेंट करेंगे डॉक्टर हुकम शर्मा। हिंदी वार्ता ठीक 9 आप सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार सुबह 9:20 पर पेश होंगे। कुदरत के रंग प्रोग्राम 9:31 पर शुरू होगा और ठीक 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 11:05 पर पुरानी फिल्मों से और 11:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ी संगीत।

महिला सम्मेलन आप सुनेंगे 12:20 से ठीक 1 बजे के बीच में, और 1:10 पर शुरू होगा हमारा म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम सबरंग ठीक 2 बजे, और दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 2:15 पर पेश होगा, और लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम शिखरों के स्वर आप सुनेंगे 2:30 पर।

प्रादेशिक समाचार दोपहर बाद 3 बजे, शाम 6 बजे और शाम 7:45 पर आप सुन सकेंगे। 3:10 पर फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स और युवाणी कार्यक्रम, 3:30 पर और फिल्म संगीत ठीक 4 बजे शुरू होगा। हिमाचली बोलियों में 4:20 पर चंबियाली कार्यक्रम, मंडियाली कार्यक्रम 4:50 पर और पंगवाली कार्यक्रम 5:20 पर शुरू होगा। और महास्वी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:06 से और कुलवी कार्यक्रम 6:35 से। 7:10 से शुरू होगा कृषि जगत।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:30 से लेकर 8:45 तक, और समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 8:45 से लेकर 9:15 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एक फिल्म से कार्यक्रम पेश होगा 9:15 पर, और 9:30 से शुरू होगा दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम। गज़लों का समय रहेगा ठीक 10 बजे, और आखिर में 10:30 पर आप सुन सकेंगे सदाबहार नगमे।

0: ये थी एफएम शिमला पर आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एफएम।

एफएम शिमला के तमाम श्रोताओं को संजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा एफएम स्टेशन आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त सुबह के 7:16 हुए हैं और एफएम शिमला पर लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला।

साथियों, हर सुबह ये याद दिलाती है कि जीवन में हमें एक और अवसर मिल रहा है और कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का और अपने सपनों के करीब पहुंचने का। हर सुबह एक नई शुरुआत है, बीते कल को छोड़कर आज को बेहतर बनाने की। और सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले उसकी तरह जलना सीखिए। और सफलता की बात करें तो सफलता उन्हीं को मिलती है जो सुबह उठकर अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। और आज का दिन आपके जीवन में नई कहानी लिखने का अवसर है, क्योंकि हर नई सुबह ये संदेश देती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। और सुबह की सकारात्मक सोच पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है। जो व्यक्ति हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता है, वो जीवन में कभी भी हारता नहीं। और सुबह सुबह पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठना और वो आपका पूरा दिन बना देता है। और समय की बात करें तो समय सबसे कीमती धन है, इसे आज ही सही दिशा में लगाएं।

और हर सुबह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। भरोसा रखिए, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। नई सुबह, नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई सफलता। आज वही कीजिए जिसके लिए भविष्य में खुद पर आप गर्व कर सकें। चलिए बात करते हैं शिमला के मौसम की। आज शिमला में मौसम सुहावना रहने की संभावना है और दिन में तापमान

लगभग 25 डिग्री तक रहेगा और रात में करीब 14 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और बीच बीच में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती है और इसलिए बाहर निकलते समय छाता या हल्की रेन जैकेट भी आप साथ रख सकते हैं और अगले कुछ दिनों तक भी बादल बारिश और गरज चमक का सिलसिला बना रह सकता है। और आज के लिए हम बात करें तो सुबह और शाम मौसम शिमला का ठंडा रहेगा और दोपहर में हल्की गर्माहट रहेगी और पहाड़ी रास्तों पर अगर फिसलन है बारिश से तो इसलिए पहाड़ी रास्तों पर चलने में भी आप सावधानी बरतें। और शिमला की ठंडी हवा और बादलों के बीच आज का दिन काफ़ी मस्त रहने की संभावना है और शिमला घूमने के लिए आज का दिन बहुत बेहतर रहेगा, बस बीच बीच में बारिश की संभावना को थोड़ा ध्यान में रखें।

0: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। ढेर सारी बातें हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं और जिसमें कि हम आज जन्मे व्यक्तित्व की बात करेंगे, आज के इतिहास की बात करेंगे और कुछ विशेष दिनों की भी हम बात करेंगे। बहरहाल हम इस प्रोग्राम में सुनने वाले हैं जनगणना 2027 विषय पर जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक दीपशिखा शर्मा से भेंट वार्ता। भेंट करता सपना ठाकुर।
1: नमस्कार। देश के विकास के लिए बनाए जाने वाली नीतियों के निर्धारण में जनगणना आंकड़ों का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं जनगणना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं दीपशिखा शर्मा जी। आप जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश की निदेशक हैं। दीपशिखा जी, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीपशिखा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनगणना है क्या, इसका क्या महत्व है।
2: मैं जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे आकाशवाणी शिमला का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, मैं यहाँ आई और मैं जनगणना के बारे में हमारे सभी सुनने वाले लोगों को जागरूक कर पाऊंगी। जनगणना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारी भारत की 16वीं जनगणना 2027 है। इसे डिजिटल माध्यम से इस बार किया जाएगा। जनगणना हमारी जनसांख्यिकी के आंकड़े, हमारी आर्थिक गतिविधियों, साक्षरता, शिक्षा, आवास, घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, उर्वरता, अनुसूचित जाति, जनजाति, भाषा, धर्म, प्रवास, विकलांगता और अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक जनसांख्यिकी डाटा का एक सबसे ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत है। जनगणना भारतवर्ष में जो भी हमारे पास उपस्थित डाटा है उसके हिसाब से 1872 से की जा रही है और यह भारत की 16वीं जनगणना है। और यह जनगणना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जनगणना केवल आंकड़े नहीं हैं बल्कि ये हमारे विकास का आधार हैं। जनगणना का जो हमारा आंकड़े होते हैं उन्हें हमारी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारे नीति निर्माण के लिए और रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए जनगणना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: दीपशिखा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनगणना 2027 विशेष क्यों है।
2: जनगणना 2027 अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार जनगणना जो है वो डिजिटल माध्यम से की जा रही है और जो आंकड़े हैं उसे ज़मीनी तौर पर हमारे जो गणनाकार हैं, जिन्हें कि हम प्रगणक एवं पर्यवेक्षक कहते हैं, वो ज़मीनी स्तर पर जाके घर घर जाके आंकड़े डिजिटल फॉर्म में उनको एकत्रित करेंगे। मोबाइल के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा। इस जनगणना के संचालन के लिए मुख्य रूप से जो हमारे पोर्टल हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा एक पोर्टल है, उसका यूज़ किया जाएगा। और जो भी ड्यूटीज़ लगेंगी प्रगणकों की, पर्यवेक्षकों की, उनके आई कार्ड असाइन होंगे, उनकी ट्रेनिंग्स की जाएंगी, वो सब कुछ इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और जो जनगणना की प्रोग्रेस होगी उसको भी इसी से मॉनिटर किया जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस जनगणना से जुड़ी है वो है स्वगणना। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच में किया जाएगा, तो हमारी स्वगणना की जो ऑप्शन है उसे भी रखा गया है और स्वगणना हमारी 1 जून से 15 जून तक की जाएगी, जिससे कि हम फिर से स्वगणना पोर्टल scensus.gov.in

0: पर जाकर कर सकते हैं। यह इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें आम नागरिक को अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। वो इस पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं और टोटल 33 क्वेश्चंस के बारे में।
1: बहुत बढ़िया दीपशिखा जी, जैसे आपने स्वगणना की बात की, तो स्वगणना है क्या और कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी स्वगणना कैसे कर सकता है?
0: जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सामान्य व्यक्ति स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकता है। एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी कि sc.census.gov.in पर जाकर अपनी स्वगणना का जो जानकारी है, 33 प्रश्न जो कि गजट में नोटिफाई किए गए हैं भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, उस जानकारी को वो भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी जानकारी स्वगणना पोर्टल पर जाके भरती हूँ, तो मैं पहले तो पोर्टल पर लॉगिन करूँगी। लॉगिन करने के बाद मेरे पास मेरे जो घर की लोकेशन है वो पिन करने के लिए ओपन हो जाएगी। मान लीजिए हम अभी आकाशवाणी में बैठे हैं, मेरा ये घर है, तो मैं इसके ऊपर उस पिन को ड्रॉप कर दूंगी, लोकेशन को फिक्स कर दूंगी और उसके बाद जो है मैं 33 प्रश्न मेरे सामने खुल जाएंगे। तो उन 33 प्रश्नों के जवाब मैं उसमें भरूंगी। उसमें हमें एडिट करने का ऑप्शन भी है, आगे जाने का ऑप्शन भी है। यदि हमें कुछ समझ नहीं आता है तो उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, जिनको पढ़कर मैं उन 33 क्वेश्चंस की जानकारी ड्रॉप डाउन बटन्स के थ्रू भर सकती हूँ। और अंत में मुझे जो है डिटेल्स सबमिट करने पर एक सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी जनरेट होगा। उस सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी को मुझे अपने पास संभाल के रखना होगा। जब असलियत में हमारा जो फेज स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हमारा फेज शुरू हो रहा है, उस समय जब प्रगणक गणनाकार आपके घर आएंगे तो उनके साथ उस आईडी को शेयर किया जाएगा। जब वो उसको अपने मोबाइल स्क्रीन पर खोलेंगे तो आपके डाटा जो है उनके सामने आएगा। उस डाटा को वो एक बार कंफर्म करके सबमिट करेंगे और वो पोर्टल पर चला जाएगा। इस तरह से ये बेहद ही आसान प्रक्रिया है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दीपशिखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारा जो अधिकतर जो संख्या गांव में बसती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कैसे शामिल किया जाएगा इसमें?
0: जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वगणना एक विकल्प है जो कि हर नागरिक को दिया गया है। हमारा जो जनगणना का उद्देश्य है वो हर एक घर को और हर एक मकान को और जानकारी को एकत्रित करना है। स्वगणना एक विकल्प है, यदि इसे कोई चुनना चाहे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहे तो वो कर सकते हैं। परंतु यदि कोई इसे नहीं चुनता है किसी कारणवश या नहीं ऑप्ट करता है, तो जो हमारे प्रगणक हैं, गणनाकार हैं, जिनकी ड्यूटी जमीनी स्तर पर डाटा कलेक्शन के लिए लगाई गई है, वो तो सबके घर जाएंगे ही जाएंगे।
1: जी, जी।
0: और इसके बारे में हम अलग अलग स्तरों से लोगों में जागरूक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे आज ही हमारा ये आकाशवाणी का प्रोग्राम है, हमारे रेडियो जो है गांव तक लोग हमेशा सुनते हैं, तो इसके माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। उसके अलावा हम सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, नुक्कड़ नाटकों के थ्रू, पब्लिसिटी वैन्स के माध्यम से, या फिर रैलीज के माध्यम से, या स्कूलों में अलग अलग स्तरों में स्कूलों में प्रतियोगिताएं करा के जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और गाँव के एक एक आदमी को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे कि वो स्वगणना कर सके,
1: यानी जागरूक करेंगे सब लोगों को।
0: जी
1: दीपशिखा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जनगणना जैसे वृहद कार्य के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं?
0: देखिए, जनगणना एक बहुत ही बड़ा कार्य है अगर हम इसे देखें, क्योंकि जनगणना को पूरे देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। हिमाचल की बात करें, अलग राज्यों की बात करें, तो जनगणना कराने के लिए एक बहुत ही बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में 22,000 के करीब करीब जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसके लिए हमारा जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है ट्रेनिंग देना और उसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग को इम्पार्ट करना, ताकि जो हमारे सेंसस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे जो प्रगणक बाद में डाटा कलेक्ट करने के लिए जाएंगे उनके दिमाग में वो पूरी तरह से अच्छे से भरकर आएं, और ताकि हमारे डाटा की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए हमने दो तरह की ट्रेनिंग्स इसमें चलती हैं। एक तो अधिकारियों की ट्रेनिंग चलती है जो कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, अभी तक हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। और जो दूसरी ट्रेनिंग होती है वो होता है ट्रेनिंग कास्केड। जैसे कि हमारे नेशनल ट्रेनर्स हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए 2 नेशनल ट्रेनर्स हैं, वो नेशनल ट्रेनर्स जो हैं हमारे मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं। 26 मास्टर ट्रेनर्स हैं हिमाचल प्रदेश के लिए कुल, और वो मास्टर ट्रेनर जो हैं वो फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं। तो हमारी नेशनल ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर्स, 420 फील्ड ट्रेनर्स हैं, वो ट्रेनिंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारी लास्ट जो पड़ाव है प्रगणक एवं पर्यवेक्षक, इन्यूमरेटर एंड सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग बची है, जो कि करीबन 19,000 के करीब लोग हैं पूरे हिमाचल में जिन्होंने जमीन

0: स्तर पर कार्य करना है, उनकी ट्रेनिंग 1 जून से लेके 15 जून के बीच में पूरी की जाएगी।
1: दीपशिखा जी, अब अहम बात ये आती है कि जनगणना के समय नागरिकों से पूछे जाने वाले सवाल क्या रहेंगे।
0: सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जनगणना के बारे में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो नोटिफाइड होते हैं। पहले उन्हें केंद्र सरकार नोटिफाई करती है, फिर वो प्रदेश सरकार द्वारा भी नोटिफाई किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जनगणना का यह प्रथम चरण है, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, और जो हमारा द्वितीय चरण है उसे कहते हैं जनसंख्या की गणना। तो क्योंकि हम अपने फर्स्ट फेज में इस वक्त खड़े हुए हैं, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, अंग्रेजी में हम उसे कहेंगे हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग ऑपरेशन या HLO फेज। फर्स्ट फेज को HLO फेज और सेकेंड फेज को PE फेज के नाम से जाना जाता है। HLO फेज में हमारे टोटल 33 क्वेश्चन जो है वो आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं, और वो 33 क्वेश्चन ही हमारे प्रगणक जाके जमीनी स्तर पर पूछेंगे, वो उसके अलावा कोई और प्रश्न नहीं पूछ सकते। अब आते हैं कि प्रश्न क्या हैं। तो जो शुरू के 8 प्रश्न हैं हमारे, वो घर की स्थिति के बारे में हैं, जैसे कि सेंसस हाउस नंबर क्या है, घर का जो दीवारें बनी हैं वो किस मटेरियल की बनी हैं, ईंट पत्थर, फर्श किस चीज़ का बना हुआ है, घर की स्थिति कैसी है। उसके बाद हमारे जो प्रश्न आते हैं वो घर के मुखिया के बारे में, जानकारी के बारे में आते हैं कि घर के मुखिया का नाम क्या है, उनका लिंग वर्ग क्या है। उसके बाद हमारे जो प्रश्न आते हैं वो घर में सुविधाओं के बारे में आते हैं, अगले 7 प्रश्न, कि घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या घर में पानी पीने की सुविधा है, क्या घर में रसोई गैस ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है, क्या शौचालय की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। इस तरह की जो प्रश्न हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। और जो अंत के 7 प्रश्न हैं वो हमारे घर में उपस्थित परिसंपत्तियां क्या हैं, हमारे पास गाड़ी, हमारे पास टेलीविजन, वाईफाई, लैपटॉप, इस तरह की प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आकाशवाणी के माध्यम से हमारे सारे श्रोताओं को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि ये जो सारे प्रश्न हैं ये हमारी एक डाटा संकलन है जो कि हमारे नीति निर्माण में इस्तेमाल जिनका होगा, रिसोर्स एलोकेशन में। जैसे मान लीजिए कल को कहीं सड़क निकालनी है या कहीं घरों का आवंटन करना है, अगर हमें इन सारे डाटाज का, आंकड़ों का पता होगा तभी हम वहां के लिए नीति निर्माण कर पाएंगे कि कहां किस चीज की आवश्यकता है या कहां कोई चीज बहुत ज्यादा है, इसका निर्धारण कर पाएंगे और नीतियों और रिसोर्स को एलोकेट कर पाएंगे।
1: दीपशिखा जी, जनगणना को लेकर आम जन में कई प्रकार की भ्रांतियां व्याप्त हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप?
0: जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि जनगणना को लेकर आम लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और जो सबसे ज़्यादा भ्रांति सुनने को मिलती है वो यही होती है कि कहीं हमारा जो, हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी गणनाकार को, कहीं वो किसी को दे तो नहीं दी जाएगी या उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं आकाशवाणी शिमला के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि जो जनगणना की जानकारी होती है वो पूरी तरह से गोपनीय होती है। जनगणना की जो हमारी जानकारी होती है वो किसी भी तरह RTI में नहीं दी जाती, किसी भी कोर्ट में एज अ एविडेंस जो है उसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और जो हमारा जनगणना का जो डाटा रिलीज होता है जनगणना कंप्लीट करने के बाद में, प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद में, वो विलेज लेवल और वार्ड लेवल पे रिलीज होता है, वो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन कभी भी रिलीज नहीं होती है। तो ये डाटा जो है वो पूरी तरह से गोपनीय है, और इस डाटा का उपयोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन में ही किया जाता है। ये तो सबसे पहली भ्रांति लोगों की ये है जनगणना को लेके। आजकल एक और भ्रांति जो लोगों में चल रही है वो है कि कोई फ्रॉड आदमी आके हमारे घर में हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, OTP मांग रहे हैं,
1: बैंक डिटेल्स
0: मांग रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि जो आपके जनगणना प्रगणक हैं, जो आपके घर में आएंगे, पहली बात तो वो आपके आसपास के कोई सरकारी कर्मचारी रहेंगे, दूसरी बात उनके पास एक आई कार्ड रहेगा जिसमें QR कोड है, आप उसको स्कैन करेंगे तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उसको देख सकते हैं। तीसरा, आप किसी भी वक्त जनगणना कार्य निदेशालय को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, और आपसे किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, कोई OTP नहीं मांगा जाएगा, कोई भी लिंक आपको क्लिक करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आपको बस 33 प्रश्नों के जवाब अपने गणनाकार को देने हैं और अपनी जानकारी, सही जानकारी उन्हें देनी है।
1: दीपशिखा जी, क्या जो अधिकारी या कर्मचारी जब जनगणना के लिए आएंगे तो क्या उनके पास कोई पहचान पत्र भी होगा?
0: जी, डिजिटल माध्यम से जो जनगणना की जा रही है हमारी, इसको कंट्रोल करेगा सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हमारा एक पोर्टल है। तो जितने भी हमारे गणनाकार हैं, प्रगणक हैं, उनके जो आई कार्ड्स हैं वो उस पोर्टल के द्वारा ही इशू किए जाएंगे,

0: और उसमें एक QR कोड रहेगा, जो उनका आई कार्ड पहन के वो ड्यूटी पे आएंगे उसमें QR कोड रहेगा, उसको स्कैन करके आप पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको उनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और यदि फिर भी आपको कोई संदेह है तो आप अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या जनगणना कार्य निदेशालय को 1855 हेल्पलाइन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: यानी कि अगर किसी भी सहायता या जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो हेल्पलाइन नंबर की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे आपने कहा 1855 पे बात कर सकता है। दीपशिखा जी, आप निदेशक हैं जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश की, आपकी ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी नागरिकों के लिए क्या संदेश रहेगा?
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्रश्न पूछने के लिए। जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश होते हुए कि आप जनगणना की अपनी जानकारी देने के लिए खुलकर सामने आएं, आपका जो जानकारी है वो पूरी तरह से गोपनीय है, उसको किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं किया जाता है। आपके घर में जब हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षक यानी गणनाकार आएंगे, आप उनका स्वागत करें, उनके साथ जो है वो पूरी जन भागीदारी निभाएं, उनके जो 33 प्रश्न जो वो पूछते हैं उनकी सही और सटीक जानकारी दें ताकि वो हमारे नीति निर्माण के लिए बहुत ज्यादा सहायक हो। आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, आपको सिर्फ 33 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1855 पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी, क्योंकि इस बार स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है, हिमाचल का स्वगणना पोर्टल 1 जून से एक्टिव हो जाएगा। स्वगणना हम 1 जून से 15 जून के भीतर कर सकते हैं, इसलिए आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर sc.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी जरूर भरें। यदि आप ये नहीं करते हैं तो भी हमारे प्रगणक घर घर पे नंबरिंग करेंगे, हर घर को काउंट करेंगे। एक बार फिर से मैं अपील करती हूँ कि अपनी जानकारी आप खुल कर दें।
1: दीपशिखा शर्मा जी, आज आपने जनगणना के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई, आपका धन्यवाद, नमस्कार।
2: प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला में अभी आप सुन रहे थे जनगणना 2027 विषय पर जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक दीपशिखा शर्मा से भेंट वार्ता, और इनसे भेंट वार्ता की सपना ठाकुर जी ने।
3: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
4: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प ले, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे।
2: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला में, और आज अब हम बात करते हैं आज के इतिहास की।

साथियों, आज है 1 जून और 1 जून वर्ष का 152वां दिन है और साल में अभी 213 दिन शेष हैं और भारत और इसराइल के बीच हवाई समझौता आज के दिन 1 जून 1992 को हुआ था और मध्य चीन के ह्यूबी प्रांत में 770 से 256 ईसा पूर्व के 300 प्राचीन कब्रों की खोज हुई थी और 2005 में 1 जून के दिन अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की थी और चीन के दक्षिण पूर्वी जियांगशी प्रांत के शांगीपन गांव में आदि मानव का पद चिन्ह 2006 में 1 जून के दिन मिला था। और भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों में जिनका जन्मदिन है अशोक कुमार और इसमें बाकी जो नाम है चमन सिंह यादव, महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय नौसेना के नाविक और भारत के 34वें मुख्य न्यायाधीश एस राजेंद्र बाबू और भारतीय फिल्म अभिनेत्री नरगिस और भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक कर्णम मलेश्वरी और समकालीन कवि और लेखक बलदेव वंशी, राजेश्वरी गायकवाड़ और एस मुखर्जी भारत के भूतपूर्व 20वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इन सभी पर्सनैलिटीज़ का

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। जी हाँ, यह हर साल 1 जून को मनाया जाता है और इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बाल श्रम और शोषण को समाप्त करना और उनके सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिवस के इतिहास की बात करें तो ये दिवस मुख्य रूप से 1925 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित बाल कल्याण पर विश्व सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया गया था और दुनिया के कई देशों, जिसमें कि विशेषकर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों ने 1 जून 1950 से इसे आधिकारिक रूप से मनाना शुरू किया। और मुख्य फोकस की बात करें तो बच्चों को हिंसा, शोषण, बाल मजदूरी और कुपोषण से बचाना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

साथियों, बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस के, क्योंकि प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, और इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था। और इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसमें जागरूकता, डेयरी उद्योग और आजीविका की बात आती है, जिसमें वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दुग्ध का इम्पोर्टेंस और इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में लोगों को जागरूक कराया जाता है, और दुग्ध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को वैश्विक स्तर पर मान्यता और समर्थन प्रदान करना, और दुनिया भर के लगभग 1 अरब लोगों की आजीविका के साधन के रूप में डेयरी क्षेत्र के योगदान का जश्न मनाना भी जो है इसका उद्देश्य है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और दुनिया का लगभग 1/4 दूध का उत्पादन जो है केवल भारत में होता है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम शिमला केंद्र। आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 148 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में 17 में से 16, बिलासपुर में 14 में से 6, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर जिले में 11 में से सभी 11, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 19, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 1, लाहौल स्पीति में 10 में से 2 और सिरमौर जिले में 17 में से 10 और सोलन जिले में 17 में से 12 जिला परिषद वार्डों के

सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है। उन्होंने शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 कांग्रेस समर्थित पंचायत प्रधान व 2300 उप प्रधान विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनाव के आधार पर पूरे प्रदेश का माहौल अपने पक्ष में करने के दावे कर रही है, जो गलत है। मंडी नगर निगम से भाजपा की प्रचंड जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल मंडी में एक विजय रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि ये जनादेश प्रदेश

0: बना लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि तीन नगर निगमों के चुनावी नतीजे प्रदेश की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना दो चरणों में की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच चलेगा। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आइए अब चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही

0: 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।

0: कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याण

0: का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
1: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पे। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी, तूफान और बारिश के आसार।

0: जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 150 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में 17 में से 16, बिलासपुर में 14 में से 6, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 21 में से सभी 11, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 19, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 1, लाहौल स्पीति में 10 में से 2, सिरमौर जिले में 17 में से 12 और सोलन में 17 में से 12 जिला परिषद वार्डों के सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मंडी जिला परिषद के नतीजों में बड़ा उल्टफेर देखने को मिला है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर कोटली वार्ड से जिला परिषद का चुनाव हार गई है। इसी तरह धर्मपुर क्षेत्र के टीहरा वार्ड से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव हार गई है। वंदना गुलेरिया मात्र 47 मतों के अंतर से हारी, जबकि चंपा ठाकुर 2,464 मतों के बड़े अंतर से पराजित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करते ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 3 नगर निगमों में शानदार जीत हासिल कर ली है। राज्य में 17 मई को 4 नगर निगमों में वोट डाले गए थे, जिनकी कल मतगणना की गई। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही, नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM शिमला केंद्र। 8:32 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM शिमला केंद्र। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कानून की बात कार्यक्रम। आज का विषय है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इस कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी श्रम मंत्रालय शिमला श्रीमती अनुजा सूद से भेंट कर रहे हैं डॉक्टर हुक्म शर्मा।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में मैं हुकुम शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, भारत जैसे विकासशील देश में उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योग तभी सफल हो सकते हैं जब श्रमिक और नियोक्ता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हों, परंतु जब वेतन, सेवा शर्तों, छंटनी या बर्खास्तगी जैसे मुद्दों पर मतभेद होते हैं तो औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। इन्हीं विवादों को रोकने और सुलझाने के लिए अधिनियम बनाया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। आज इसी अधिनियम पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमने आमंत्रित किया है अनुजा सूद जी को। आप पीठासीन अधिकारी हैं श्रम न्यायालय। अनुजा सूद जी, स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका।
2: धन्यवाद।
1: औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, ये है क्या?
2: सबसे पहले श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और मैं आकाशवाणी शिमला का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आज चर्चा के लिए बुलाया है। जैसा कि आपने पूछा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या है, तो यह भारत का एक केंद्रीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न विवादों को रोकना और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना है।
1: जी, तो जो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, इसकी शुरुआत की अगर हम चर्चा करना चाहें तो ये किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई?
2: जी, इस कानून का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक शांति, जिसे हम इंडस्ट्रियल पीस भी कहते हैं, बनाए रखना है, और ये नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है ताकि ना काम रुके और दोनों पक्षों के हितों की रक्षा भी हो सके।
1: जी अनुसूद जी, औद्योगिक विवाद होते क्या हैं?
2: जी, धारा 2K के तहत कोई भी विवाद जो नियोक्ताओं और नियोक्ताओं, या नियोक्ताओं और श्रमिकों, या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच में हो, और जो रोजगार, काम की शर्तों या श्रम की परिस्थितियों से संबंधित हो, उसे हम औद्योगिक विवाद मानते हैं।
1: जैसे कि इसके नाम से मालूम होता है या हम अनुमान लगा सकते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, तो क्या ये जो अधिनियम है ये 1947 में ही बना था, या जानना चाहेंगे कि ये अधिनियम कब बनाया गया?
2: जी, ये अधिनियम वर्ष 1947 में बनाया गया ताकि स्वतंत्र भारत में औद्योगिक शांति बनाए रखी जा सके और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ये भारत का एक केंद्रीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न विवादों को रोकना

0: और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना है।
1: औद्योगिक विवाद जो है, अगर इसकी हम परिभाषा जानना चाहेंगे तो क्या अभिप्राय है औद्योगिक विवादों से?
0: औद्योगिक विवाद वे विवाद हैं जो रोजगार, बेरोजगारी, सेवा शर्तों या काम की परिस्थितियों को लेकर श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न होता है।
1: औद्योगिक विवाद किन किन के बीच हो सकता है?
0: औद्योगिक विवाद नियोक्ता और श्रमिक के बीच में, या नियोक्ता और नियोक्ता के बीच में, या श्रमिक और श्रमिक के बीच में हो सकता है।
1: तो ये भी हमें बताएं कि इस अधिनियम में जो, जैसे आपने कहा कि तीन नाम लिए आपने, नियोक्ता, श्रमिक, तो ये इन दोनों में से जो श्रमिक है वो किसे कहा गया है?
0: श्रमिक वो व्यक्ति है जो किसी उद्योग में वेतन के बदले शारीरिक, तकनीकी, लिपिकीय, कुशल या अकुशल कार्य करता है, वह श्रमिक कहलाता है।
1: तो क्या कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं?
0: जी हाँ, जैसे प्रबंधक हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उच्च वेतन पाने वाले पर्यवेक्षक हैं, या पुलिस और सशस्त्र बलों के सदस्य हैं।
1: ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जिन संस्थानों पर ये अधिनियम लागू होता है?
0: जी, ये अधिनियम कारखाने, खदानें, बागान, परिवहन सेवाएं, औद्योगिक और वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
1: वर्क्स कमेटी जो है ये क्या होती है?
0: वर्क्स कमेटी श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति होती है जो आपसी सहयोग सौहार्द बनाए रखने का कार्य करती है।
1: समझौता अधिकारी की भूमिका क्या रहती है?
0: समझौता अधिकारी को हम कंसिलेशन ऑफिसर भी कहते हैं। समझौता अधिकारी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करता है और अपनी रिपोर्ट इस बारे में सरकार को सौंपता है। जो ये समझौता अधिकारी होता है, इनका ज्यादा एंडेवर ये रहता है कि ये दोनों पार्टीज को किसी एक कंसिलेशन में, किस समझौते पर आए, और जब समझौता नहीं होता है तो फिर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके बाद फेलियर रिपोर्ट के बाद रेफरेंस हो जाता है
1: जी
0: कोर्ट के अंदर।
1: जी जी, अनुजा सूद जी, श्रम न्यायालय जो है यो किस प्रकार के मामलों का निपटारा करता है?
0: जी, जैसे सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी, हड़ताल, तालाबंदी की वैधता, अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि के जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा करता है।
1: औद्योगिक अधिकरण क्या है?
0: औद्योगिक अधिकरण वेतन, भत्ते, कार्य घंटे, अवकाश व अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
1: राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण कब गठित किया जाता है?
0: जब कोई औद्योगिक विवाद राष्ट्रीय महत्व का हो या एक से अधिक राज्यों से संबंधित हो।
1: हड़ताल क्या होती है?
0: हड़ताल जब श्रमिक सामूहिक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो उसे हड़ताल कहा जाता है।
1: जी, तो हड़ताल और जो तालाबंदी है, तो ये दोनों क्या अलग अलग हैं? और अगर अलग अलग हैं तो फिर तालाबंदी क्या होती है?
0: तालाबंदी नियोक्ता अस्थायी रूप से कार्यस्थल बंद कर देता है, उसे तालाबंदी कहते हैं। और बहुत बार हम हड़ताल और तालाबंदी का अंतर समझ नहीं पाते, हमें इसे एक ही मतलब निकालते हैं, लेकिन हड़ताल और तालाबंदी दो अलग शब्द हैं और इनका लेबर लॉज में अलग मीनिंग है। हड़ताल ये श्रमिकों का अधिकार है, जब श्रमिक मिलकर काम करने से मना कर देते हैं उसे हड़ताल कहते हैं, और तालाबंदी ये नियोक्ता का अधिकार है और हथियार भी है, और जब मालिक अस्थायी रूप से कार्यस्थल को बंद कर देता है या काम करने से मना कर देता है तो उसे तालाबंदी कहते हैं।
1: लोक उपयोगिता सेवाएं क्या होती हैं?
0: वे सेवाएं जो जनता के दैनिक जीवन से जुड़ी हों, जैसे जल, बिजली, परिवहन, डाक इत्यादि।
1: लोक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल के क्या नियम हैं?
0: हड़ताल से पहले निर्धारित समय में पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है।
1: अवैध हड़ताल या तालाबंदी का क्या परिणाम होता है?
0: अवैध हड़ताल या तालाबंदी करने पर जुर्माना या कारावास का प्रावधान है।
1: जी, तो जो ले ऑफ है ये क्या होता है?
0: जब नियोक्ता अस्थायी रूप से काम की कमी के कारण श्रमिकों को काम नहीं देता तो उसे ले ऑफ कहते हैं।
1: छंटनी से क्या तात्पर्य है?
0: जब अतिरिक्त श्रमिकों को स्थायी रूप से सेवा से हटाया जाता है तो उसे छंटनी कहते हैं।
1: छंटनी से पहले कोई क्या कुछ आवश्यक बातें हैं?
0: जी, इसकी पूर्व सूचना देना जरूरी है, मुआवजा देना जरूरी है, और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है।
1: तो क्या कोई व्यक्तिगत श्रमिक विवाद भी उठा सकता है?
0: जी हाँ, बर्खास्ती, सेवा समाप्ति या छंटनी से संबंधित मामलों में व्यक्तिगत श्रमिक भी विवाद उठा सकता है।
1: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
0: जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक शांति को बनाए रखना और श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच में संतुलन स्थापित करना।
1: क्या ये जो अधिनियम है ये केवल श्रमिकों के हित में है?
0: जी नहीं, ये अधिनियम श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करता है।
1: इस अधिनियम का राष्ट्रीय विकास से क्या संबंध है?

0: उद्योगिक शांति से उत्पादन बढ़ता है, रोजगार सुरक्षित रहता है और देश का आर्थिक विकास भी होता है।
1: जसूत जी, अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए क्या रास्ते उपलब्ध हैं?
0: विवाद सुलझाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे कोई विवाद हो जाता है तो पहले वो वर्क्स कमेटी, जो कार्य समिति है, वो छोटे मोटे विवाद, जो आपसी विवाद होते हैं, वो वहीं पे सुलझाने का प्रयास करती है। इसके पास अगर मामला नहीं सुलझता तो फिर कंसलेशन ऑफिसर, जो सुलहाधिकारी हैं, उनके माध्यम से समझौता कराने की कोशिश की जाती है। और अगर वहां भी नहीं होता है देन लेबर कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल है, उसमें जब आपसी बातचीत विफल हो जाती है तब कानूनी रूप से उसका फैसला किया जाता है।
1: क्या कोई कंपनी जो है वो कभी भी अपने कर्मचारियों को निकाल सकती है कार्य से?
0: नहीं, इसके कड़े नियम हैं। यदि किसी संस्थान में 100 से अधिक श्रमिक हैं तो छंटनी या संस्थान बंद होने से पहले सरकार की अनुमति लेना और श्रमिकों को उचित नोटिस और मुआवजा देना अनिवार्य होता है।
1: अनुचित श्रम व्यवहार क्या होता है और इसके लिए क्या सजा है?
0: श्रमिकों को यूनियन बनाने से रोकना, डराना धमकाना या अवैध तरीके से काम से निकालना अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है। इसके लिए जुर्माना और 6 महीने की कैद दोनों का ही प्रावधान है।
1: क्या कोई मालिक अचानक काम के घंटे बदल सकता है या छुट्टी कम कर सकता है?
0: जी नहीं, धारा 9A के तहत अगर नियोक्ता सेवा की शर्तों, जैसे वेतन, काम के घंटे, छुट्टियां लेने में बदलाव करना चाहता है तो उसे श्रमिकों को 21 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। बिना नोटिस के किया गया बदलाव हमेशा ही अवैध माना जाता है।
1: जब कोई मामला लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाता है तो वहां फैसला कैसे होता है?
0: जब कोई मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष आता है तो दोनों ही पक्षों को अपना अपना पक्ष रखना होता है और उसके लिए सबूत देना होता है, जिसे ट्रिब्यूनल देखता है कि क्या सबूत आए हैं। और इसके पास दीवानी अदालत जैसी शक्तियां भी होती हैं और ट्रिब्यूनल का फैसला को अवार्ड कहा जाता है और दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से वो बाध्य भी होता है।
1: जी, तो हमारा जो श्रमिक वर्ग है आमतौर पर वो ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। अनुजा सूद जी, हमारे जो तमाम इस तरह के लोग हैं, कामगार लोग हैं, श्रमिक की श्रेणी में जो लोग आते हैं, अगर उनको कभी लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उनके लिए आप कोई साधारण सी बातें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवाएं और क्या उनको आगे के मतलब कदम उठाने चाहिए?
0: देखिए, जब भी कोई श्रमिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ अनुचित व्यवहार होता है या टर्मिनेशन हो रहा है या क्लोजर कर देती है कई बार कंपनी बिना किसी कॉम्पनसेशन के या नोटिस के बिना, या चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन कर देती है बिना नोटिस दिए, जिसके लिए कि 9A का नोटिस देना जरूरी होता है, तो इस तरह के मामलों में वो प्रबंधन को भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर वो प्रबंधन नहीं सुनता है तो जो लेबर ऑफिसर है, कंसलेशन ऑफिसर्स हैं, उनके माध्यम से अपनी डिमांड्स को उठा सकते हैं। और अगर वहां भी कोई कंसलेशन नहीं होती है तो फिर वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।
1: जी, तो कई बार ऐसा भी आपके सामने कई केसेस आते होंगे जब कोई श्रमिक कहीं कार्य कर रहा है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या कोई चोट वगैरह लग जाती है किसी को, और कई बार गंभीर चोट भी लग सकती है, तो उस स्थिति में भी क्या श्रमिकों के लिए कानून में कोई प्रावधान है जो उनकी सहायता करते हैं?
0: जी बिल्कुल, अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो एक तो ये ESI के माध्यम से सब कवर्ड रहता है, उनको खर्चा मिलता है, और चोट लग जाती है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए हकदार रहते हैं।
1: जी, और क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकार भी हैं? क्योंकि देखिए, पुरुषों और महिलाओं में अगर वो कामगार हैं, दोनों ही श्रमिक हैं, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपनी गृहस्थी भी देखनी है, अगर छोटे बच्चे हैं उनको भी संभालना है, और साथ साथ में मेरे ख्याल से जो भी कोई श्रम करता है, कोई दिहाड़ीदार जो लोग हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान भी रहते हैं क्या?
0: वर्क प्लेस में एनवायरमेंट क्रिएट करना महिलाओं के लिए फ्रेंडली हो, वो एक जिम्मेदारी रहती है नियोक्ता की। ऐसा कुछ स्पेशल कुछ उनको अधिकार नहीं दिए गए हैं इस कानून के अंदर कि महिला होने के हिसाब से उनको कुछ स्पेशल अधिकार मिलेंगे, लेकिन मैं एक बात इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला के साथ कोई भी श्रम कानून का उल्लंघन करके उसको निकाला जाता है या चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन होता है या और कोई भी जिससे उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो इसको चैलेंज भी कर सकती है। और क्योंकि वो महिला है इसलिए उसे फ्री लीगल एड की भी सुविधा मिलती है, जो कि फ्री लीगल एड जो है वो जो भी कानूनी सहायता मुफ्त मिलती है उसके सारे प्रावधानों के अंतर्गत हमारे पास भी वो केस कर सकती है और उसको उसका लाभ भी मिलता है।
1: जी, तो कार्यस्थल पर कुछ सुविधाएं तो महिलाओं को मिलती ही होंगी, जैसे

0: अलग से टॉयलेट की सुविधा होना बहुत
1: जी जी
0: जरूरी
1: बिल्कुल
0: है,
1: जी बिल्कुल
0: इस तरह की
1: इस
0: कोई
1: तरह की हाँ वो जो सुविधाएं बेसिक सुविधाएं हैं
0: जी
1: वो तो देना जरूरी ही है। जरूरत हो वहां क्रच की सुविधा भी देना महिलाओं को जरूरी है, वो
0: जी
1: प्रावधान इसमें एक्ट में है।
0: जी यानी जहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं वहीं अधिकार भी है, उन अधिकारों का हम सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। अनुजा सूची, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आई और आपने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कानून की बात कार्यक्रम, विषय था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इस कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी श्रम मंत्रालय शिमला श्रीमती अनुजा सूद से भेंट कर रहे थे डॉक्टर हुकम शर्मा।
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार

0: और आपने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कानून की बात कार्यक्रम। विषय था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इस कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी श्रम मंत्रालय शिमला श्रीमती अनुजा सूद से भेंट कर रहे थे डॉक्टर हुकम शर्मा।
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
3: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र 103.7 MHz पर। 9 बजे हैं। कार्यक्रम हिंदी वार्ता में आज का विषय है भारतीय कला का इतिहास। वार्ताकार हेम कुमार चटर्जी।
4: भारतीय कला का इतिहास बहुत समृद्ध है, जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं से परिपूर्ण है। भारतीय कला का विकास विभिन्न कालखंडों और सभ्यताओं के साथ हुआ है, और इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और शिल्पकला जैसे कई श्रेणियां शामिल हैं। प्राचीन भारतीय कला का इतिहास अत्यंत विविधतापूर्ण है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक धरोहर की दर्शाता है। इस विभिन्न कालखंडों में को हम अलग अलग ढंग से बांट सकते हैं। लगभग 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता की कला में छोटी मूर्तियां और मिट्टी की आकृतियों प्रमुख है, जैसे नृत्य करती लड़की की मूर्ति। ये कलाकृतियां दैनिक जीवन और धार्मिक प्रथाओं को दर्शाती है। हड़प्पा सभ्यता के सील और मोहर भी हमें मिले हैं, जिन पर विभिन्न जानवरों और प्रतीकों की छवियां उकेरी गई हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में उन्नत शहरी योजना देखी जा सकती है, जिसमें अच्छी तरह से व्यवस्थित सड़कें, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नान गृह शामिल हैं। हालांकि यहाँ पर महत्वपूर्ण स्मारकीय कला का प्रमाण हमें कम मिलता है। 1500 से 500 ईस्वी पूर्व वैदिक काल की कला मुख्यतः प्रतीकात्मक और धार्मिक रही, जिसमें धार्मिक वस्तुएं और प्रारंभिक देवताओं का साधारण छवियां शामिल है। बौद्ध कला तकरीबन 1300 ईस्वी से 600 ईस्वी में रही, जिसमें कि बौद्ध धर्म के प्रसार और विकास के साथ साथ उसकी कला और स्थापत्य में गहरी और विविध परिवर्तन हुए। इस अवधि को बौद्ध कला के विकास के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कला में विभिन्न रूप और शैलियां शामिल है। पारंपरिक बौद्ध कला में सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध कला का व्यापक विकास हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई स्तूप और शिलालेख बनवाए। अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ, जैसे कि सांची, लखनऊ, सारनाथ में पाए गए स्तंभ, कला शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये स्तंभ शेरपुंज मतलब लायन कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज भारत के राष्ट्र का प्रतीक है। अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण करवाया, जो बौद्ध धर्म के अवशेषों की सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। सांची और अमरावती के स्तूप इस काल के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। 220 से 550 ईस्वी को गुप्त काल का भारतीय कला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, और इस काल में बौद्ध कला ने भी महत्वपूर्ण उन्नति की। इस काल में बौद्ध कला ने बौद्ध धर्म की धार्मिक ग्रंथों और विचारों की चित्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजंता की गुफाएं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गुप्त काल की बौद्ध चित्रकला की प्रमुख कृति है। इन गुफाओं में बौद्ध कथाओं, जातक कथाओं के भित्ति चित्र हैं, जो अपने रंगीन और जटिल चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। सारनाथ में प्राप्त बौद्ध मूर्तियां, जैसे कि धर्म चक्र परिवर्तन, गुप्त काल की कला के उत्कृष्ट उदाहरण दर्शाती है। इलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों जैसे बुद्ध, हिंदू, जैन का मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। बौद्ध गुफाओं में शानदार रॉक कट मंदिर और मूर्तियां शामिल हैं, जो इस काल की वास्तुकला को कला को दर्शाती है। बौद्ध कला में बुद्ध की जीवन और उपदेशों को चित्रित करने के लिए विशेष प्रतीकों और शिल्प तत्वों का उपयोग किया गया, जैसे कि बुद्ध की प्रतिमाएं, उनके चरण चिन्ह और अन्य प्रतीक जो धार्मिक और शिक्षाप्रद उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे। बौद्ध कला ने बाद की शताब्दी में भारतीय और एशियाई कला पर गहरा प्रभाव डाला। इसका प्रभाव न केवल भारतीय उपमहाद्वीप

बल्कि दक्षिण पूर्व एशियाई और तिब्बत में भी देखा गया। इस प्रकार 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक बौद्ध कला ने भारतीय कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल बौद्ध धर्म के लिए एक स्वर्ण काल था, जिसने बौद्ध विचारधारा और कला को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सजोया। 600 से 1200 ईस्वी मध्यकालीन भारत कला के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विविध काल है। इस समय विभिन्न शासकीय राज्यों साम्राज्यों के तहत कला और स्थापत्य के महत्वपूर्ण विकास और परिवर्तन हुए। इस काल को मुख्यतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, चालुक्य और पल्लव कला, जो कि 600 से 900 ईस्वी तक है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के शासनकाल में महाबलीपुरम में कई महत्वपूर्ण रॉक कट मंदिर और उत्कीर्ण बनाए गए। इन मंदिरों में डिसेंट ऑफ गंगाज, अर्जुन की तपस्या जैसे उत्कीर्ण शामिल है, जो उनके उत्कृष्ट शिल्प कौशल को दर्शाती है। चालुक्य शासकों ने शासनकाल में बादामी और पट्टदलकल के क्षेत्र में शानदार मंदिर निर्माण हुए। राजपूत कला और जैन कला, जो कि 800 से 1200 ईस्वी में मानी गई। राजपूत चित्रकला में परंपरागत हिंदू विषयों और शाही दरबार के प्रमुख है। इस काल के चित्रण में विशेष रूप से राजा और रानियों के चित्रण, शिकार के दृश्य और धार्मिक काव्य शामिल थे। राजस्थानी चित्रकला लघु चित्रकला की शैली रही, जो मुख्यतः 16वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिम भारत के स्वतंत्र हिंदू राज्यों राजस्थान में विकसित हुई। चित्रकला की यह शैली हिंदू राजपूताना की सबसे अधिक प्रतिनिधि है। यही कारण है कि राजस्थानी शैली को दूसरे नाम हिंदू शैली से माना गया। जैन कला में जैन तीर्थांकरों की मूर्तियां और मंदिर प्रमुख हैं। इस काल में रत्नों की नक्काशी और जैन धार्मिक स्थलों की स्थापत्य कला का प्रमुख विकास हुआ। गुजरात के पाटण में जैन मंदिरों की भव्यता और उनके शिल्प कौशल इस जैन कला की एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। चौल काल, जो 19वीं से 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भव्य मंदिर निर्माण हुए, तंजावुर के भैदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलमपुरम के मंदिर इस काल के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। चौल कला में कांस्य की मूर्तियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं, विशेषकर नटराज की मूर्ति। ये मूर्तियां कला और धर्म के एक बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत करती है। मध्य भारत में खुजराहो में स्थित मंदिर समूह, जो कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के हैं, अपने कामुक और विस्तृत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में हिंदू जैन धर्मों की मूर्तियां का संपूर्ण संग्रह है। खुजराहो के मंदिरों की नक्काशी, जिसमें कि सामाजिक और धार्मिक जीवन की विविधताएं शामिल हैं, भारतीय कला का स्वर्ण काल की प्रतिनिधित्व करती हैं। 1526 से लेकर तकरीबन 1947 ईस्वी तक भारतीय कला का इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समय काल रहा है। इस अवधि में भारतीय कला पर मुगलों, यूरोपियन उपनिवेशियों और भारतीय कला का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस काल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तकरीबन 1526 से लेकर तकरीबन 1847 तक मुगल काल भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण धारा रही है, जिसने भारतीय संस्कृति और वास्तुकला में गहरा प्रभाव डाला। इस काल में कला की कई प्रमुख पहलू थे। अकबर के शासनकाल में चित्रकला को बढ़ावा मिला और उन्होंने कई प्रसिद्ध चित्रकारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। अकबर ने कई ऐतिहासिक घटनाओं, राजसी दृश्यों और धार्मिक विषयों पर चित्रकला का संरक्षण किया। 1628 तकरीबन इसी समय शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला में नई शैली विकसित हुई। मुगल कोर्ट चित्रकला में चित्रों में रंगीनता, जटिलता और परिष्कृत शैली पर जोर दिया गया। बाबर का फसलनामा और अकबर आलमगीरी की प्रार्थना जैसे चित्र इस काल के चित्रकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उपनिवेश काल में भारतीय कला पर ब्रिटिश उपनिवेश और अन्य यूरोपीय प्रभावों का गहरा असर पड़ा। इस काल में विभिन्न कला शैलियों का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन के तहत कला शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ और ललित कला अकादमी और भारतीय कला संस्थान जैसे संस्थानों ने यूरोपीय कला तकनीकों और शैलियों को भारत कला में समाहित किया। इस काल में ब्रिटिश चित्रकारों ने भी भारत की छवियां बनाई, जो यूरोपीय दृष्टिकोण से भारतीय परिदृश्यों और सांस्कृतिक जीवन को चित्रित करती हैं। इसी समय अवधि पर पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति उत्तर भारत के निचली हिमालय पहाड़ी राज्यों और पंजाब के मैदानों में हुई। 17वीं शताब्दी के आरंभ से 19वीं शताब्दी के मध्य तक विशेष रूप से बसौली, मानकोट, नूरपुर, चंबा, कांगड़ा, गुलेर, मंडी और गढ़वाल में पनपी। पहाड़ी चित्रकला के केंद्र विषय वस्तु ऑलमोस्ट और सबसे ज्यादा देवताओं राधा कृष्ण और श्वेता प्रेण में चित्रित है। एक विशिष्ट गतिमकता,

0: सहज, लय, कोमलता, रचना के सूक्ष्म जटिल विवरण और मानवीय भावनाओं और शारीरिक विशेषताओं की गहन धारणा और चित्रण पहाड़ी लघु चित्रकला को दक्कन और मुगल के राजस्थानी राजपूत जैसे अन्य लघु चित्रों से अलग करती है। 1947 से आधुनिक भारत कला के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कला में हुए विकास, नवाचार और परिवर्तन को दर्शाया जाता है। इस काल में भारतीय कला ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचान बनाई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय कला के पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। इस काल में कलाकारों ने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के साथ आधुनिक शैलियों को मिश्रित करने की कोशिश की। इसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, आमतौर बंगाल स्कूल के रूप में जाना जाता है। एक कला आंदोलन और भारतीय चित्रकला की एक शैली थी जो बंगाल, मुख्य रूप से कलकत्ता और शांतिनिकेतन में उत्पन्न हुई और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। अपने शुरुआती दिनों में इसे भारतीय चित्रकला शैली के रूप में जाना जाता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद स्वदेशी रूप से जुड़ी थी और इसका नेतृत्व अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था और इसे ईबी हेवेल जैसे ब्रिटिश कला प्रशासकों द्वारा भी बढ़ावा दिया और समर्थन दिया जा रहा था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुगल कला से प्रभावित कई कृतियों का चित्रण किया और इनके सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग भारत मादा मदर इंडिया में एक युवती को हिंदू देवी देवताओं की तरह चार भुजाओं के साथ दिखाया गया, जो भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रतीक वस्तुएं पकड़े हुए हैं। बंगाल स्कूल के कुछ उल्लेखनीय चित्रकार और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य कलाकार नंदलाल बोस, असित कुमार हालदर, सुधीर खास्तगिर, शितेंद्रनाथ मजुमदार, हाकिम मोहम्मद खान, सुमेंद्रनाथ गुप्ता, के वेंकटप्पा, अयोध्या प्रसाद, सुरेंद्रनाथ गांगुली, इन सभी को भारत के विभिन्न स्थानों पर भारतीय कला का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया। जैसे सुमेंद्रनाथ गुप्त, जो असित हालदर के ही विद्यार्थी थे, लाहौर भेजा गया। के वेंकटप्पा जी को बेंगलौर भेजा गया। असित हालदर को पहले लखनऊ, फिर जयपुर भेजा गया, और जहाँ पर असित हालदर ने लखनऊ में इसी परंपरा की भावना के साथ एक युवा कलाकार सनत चैटर्जी को प्रशिक्षित किया और गोद लिया और बाद में उन्हें भारतीय कला परंपरा के साथ और इसको फैलाने के लिए 1960 में शिमला भेजा गया। भारतीय आधुनिक चित्रकला में राजा रवि वर्मा, जामनी रॉय, अमृता शेरगिल इसलिए क्योंकि वो शिमला में भी रही और इन्होंने यहाँ पर समर हिल में रह के बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई। इन्होंने अपनी कलाकृति आधुनिक रूप से प्रस्तुत की। इनके चित्रकला में लोक कला और आधुनिकता का उद्भव और अद्भुत मेल देखने को मिलता है। प्रगतिशील कलाकारों का समूह आधुनिक कलाकारों का एक समूह रहा, जो 1947 में अपने गठन के समय से ही मुख्य रूप से बॉम्बे में स्थित रहा। हालांकि इसमें किसी विशेष शैली का अभाव था, लेकिन यह कहा जा सकता है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रचलित शैलियों के साथ साथ भारतीय कला के इतिहास के प्रभावों के संरक्षण की ओर अग्रसर था, जिसमें पोस्ट इंप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म और एक्सप्रेशनिज्म शामिल थे। प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन 6 संस्थापक सदस्यों एफ.एन. सूजा, एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, एच.एन. गौड़े और एस.के. बाकरे द्वारा किया गया था। बाद में समूह से जुड़े अन्य लोगों में रामकुमार, जो दोबारा शिमला से रहे हैं, अकबर पदमसी और त्याप मेहता शामिल थे। ये सभी कलाकार आज के समकालीन कलाकारों में न केवल भारत बल्कि पूरे संसार में वर्तमान कला क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कलाकार नाम रखते हैं। आधुनिक भारत कला ने न केवल भारतीय कला परिदृश्य को नया आकार दिया है, बल्कि वैश्विक कला मंच पर भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इस कला में कलाकारों ने विविध शैलियों, तकनीकों और विषयों का उपयोग किया, जो भारतीय समाज और सांस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। आधुनिक भारतीय कला में नवाचार का प्रयोग और वैश्विक संवाद ने ऐसे एक अनूठा और प्रेरणादायक क्षेत्र बना दिया है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता। आज का विषय था भारतीय कला का इतिहास।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। 9:15 हुए हैं। अब आपको बताते हैं आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। अब से कुछ देर बाद 9:31 से आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम, जिसमें आज सुनेंगे आमिर खान का गायन राग बसंत खुमारी। ठीक 10 बजे रिमझिम और 11:05 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, और 11:30 पर पेश होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और महिला सम्मेलन पेश होगा 12:20 पर, और दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनहरी किरणें पेश होगा दिन में 2 बजे, जिसमें आज का विषय रहेगा सिंचाई की विभिन्न विधियां। हिमगुंजन कार्यक्रम 2:30 पर आप सुन सकेंगे, 2:45 पर फिल्म संगीत। हिमाचली बोलियों में चंबियाली कार्यक्रम 4:20 पर, मंडियाली कार्यक्रम 4:50 पर, और 5:20 पर शुरू होगा पंगवाली कार्यक्रम। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे महासवी कार्यक्रम, 6:35 पर कुल्लू कार्यक्रम, और उसके बाद समाचारों का समय रहेगा शाम 6 बजे और 7:45 पर। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। शाम 8 बजे आप सुनेंगे धारा गीत प्रोग्राम, जिसमें कि रुक्मणी देवी, साथी मीना राम, मंजू भारद्वाज के गाय लोकगीत आप सुनेंगे। फिल्म संगीत 8:15 पर, और सुगम संगीत 8:30 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता सुनेंगे 9:15 पर, और ठीक 10 बजे शास्त्रीय संगीत, और 10:30 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम सुरबहार। ये थे प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला से भी सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार DTS सेवा और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इस संदेश के बाद
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है।

0: इसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे देश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जिला परिषद वार्डों के लिए मतों की गिनती जारी, अभी तक 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित। मंडी जिला में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर और धर्मपुर से वंदना गुलेरिया चुनाव हारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी, आने वाले दिनों में मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में 17 में से 16, बिलासपुर में 14 में से 6, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 11 में से 9, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 19, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 12, लाहौल स्पीति में 10 में से 2, सिरमौर में 17 में से 12 और सोलन जिले में 17 में से 12 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला परिषद के नतीजों में अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सोलन नगर निगम में भाजपा की जोरदार जीत के बाद बीडीसी और जिला परिषद नतीजों में भी अधिकांश भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सलोगड़ा और मंसार पंचायत समिति वार्डों से निर्वाचित मनीष कुमार और कुमारी शीला ने अपनी जीत को मतदाताओं व कार्यकर्ताओं की जीत का करार दिया और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया।
1: मेरी जीत नहीं है, इस सलोगड़ा और मंसार के लोगों की जीत है। जो मैंने वादे किए हैं वो मैं पूरा करूंगा, हम मिलकर पूरा करेंगे। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, पूरी समस्याएं हम मिलकर उनका समाधान करेंगे।
2: देखिए, ये मेरी जीत नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने रात दिन मेहनत करी और पूरे जिला परिषद वार्ड की 19 पंचायतों का मेरे साथ दौरा किया।
0: उधर मंडी जिला परिषद के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर कोटली वार्ड से जिला परिषद का चुनाव हार गई है। इसी तरह धर्मपुर क्षेत्र के टिहरा वार्ड से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव हार गई है। वंदना गुलेरिया मात्र 47 मतों के अंतर से हारी, जबकि चंपा ठाकुर 2,464 मतों के बड़े अंतर से पराजित हुई। कुल्लू जिला परिषद के कुल 14 वार्डों में से अभी तक 11 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
3: कुल्लू जिला में जिला परिषद की 14 सीटें हैं, जिनमें देर रात तक मतगणना चलती रही, जबकि कुछ वार्डों के नतीजे सुबह घोषित किए गए। नतीजों के अनुसार जिला में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है तथा 8 भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि 4 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार तथा 2 आजाद उम्मीदवार हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाली सभी जिला परिषद सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं तथा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को यहाँ निराशा ही हाथ लगी है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: इधर सिरमौर जिला परिषद के कुल 17 वार्डों में से अभी तक

0: 12 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
1: सिरमौर जिला में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद पर काबिज होने जा रही है। अभी तक जिला परिषद की 17 सीटों में से 12 सीटों के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। खास बात ये भी है कि सिरमौर जिला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को अपने गृह क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जहां अपने गृह क्षेत्र रेणुकाजी में जिला परिषद की 3 सीटें हार गए, वहीं दूसरी तरफ शिलाई में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह क्षेत्र में भी कांग्रेस को 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: किन्नौर जिला परिषद के कुल 11 वार्डों में से 9 के चुनाव नतीजे आ गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही जिले की राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस परिणाम के बाद जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों का स्पष्ट बहुमत बन गया है। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी के
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिला परिषद के अब तक के घोषित परिणामों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम की धर्मपत्नी लीला देवी चुनाव जीत गई है। वहीं जिला के बख्तपुर वार्ड से इंदिरा कपूर विजय रही। इंदिरा कपूर ने जीत के बाद कहा कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी।
3: गुरुवार की जनता से यही कहना चाहूंगी कि आपने मुझे चौथी बार जो अपना प्रेम प्यार दिया है और इतने मतों से मुझे विजय बनाई है, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समस्याओं को हम धीरे धीरे निपटाने की बहुत कोशिश करेंगे। जैसे आप रोड्स का ले लो, जिस तरह से जिला परिषद के दायरे में बस आएगा उसी प्रकार से मैं अपने वार्ड का विकास करूँगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के नतीजे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत और सरकार की जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि प्रदेशवासियों ने विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने चुनाव में जीते सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने अपने क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता द्वारा व्यक्त विश्वास सरकार को और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों में वर्षा होगी। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
4: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी कई जिलों में गर्ज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 और 4 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। लगातार बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का असर काफी कम हो गया है। निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि पहाड़ी व ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आगामी 6 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने 4 नगर निगमों के चुनाव नतीजे से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, धर्मशाला, मंडी और सोलन नगर निगम में भाजपा को बहुमत, पालमपुर में कांग्रेस का परचम बरकरार। पंजाब केसरी के शब्द हैं, 3 नगर निगमों में भाजपा का राज, सिर्फ पालमपुर में कांग्रेस जीती। दिव्य हिमाचल का

0: शीर्षक है नगर निगम चुनाव में भाजपा आगे। दैनिक जागरण के अनुसार सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निगम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका। दैनिक भास्कर ने खबर दी है एचआरटीसी चालक परिचालकों का अल्टीमेटम, आज वेतन नहीं मिला तो कल से नहीं चलेंगी निगम की बसें। मौसम पर हिमाचल दस्तक लिखता है प्रदेश में 6 जून तक खराब बना रहेगा मौसम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जिला परिषद वार्डों के लिए मतों की गिनती जारी, अभी तक 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित। मंडी जिला में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर और धर्मपुर से वंदना गुलेरिया चुनाव हारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी, आने वाले दिनों में मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।
1: वन जीरो 3.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM शिमला केंद्र।

9:31 हुए हैं और मैं संजय कुमार हाजिर हूं आपके साथ एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर जिसमें हम आपकी सैर करवाते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ऐसे डेस्टिनेशन में जहां आपको सुकून मिलता है, चैन मिलता है। और कई बार हम आपकी सैर करवाते हैं कुछ धार्मिक स्थलों से जहां पर आप प्रकृति के सुंदर नज़ारों को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूर्ण होने का भी आपको अवसर मिलता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे शिकारी माता मंदिर के बारे में। साथियों, देवी देवताओं की धरती कहे जाने वाले हिमाचल की संस्कृति बेहद ही अनोखी और अद्भुत है और यहाँ ऐसे अनेकों मंदिर हैं जिनके पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा है और कई सौ साल पुराने इन मंदिरों में लोगों की आस्था आज भी कम नहीं हुई है बल्कि पहले से और भी बड़ी है। मंडी ज़िला में सराज घाटी में ऐसा ही मंदिर है जिसे शिकारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है और इसे पांडवों के अज्ञातवास से जोड़कर भी देखा जाता है और यहाँ कहा जाता है कि भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है।

साथ ही हिमाचल के लोगों में देवी देवताओं के प्रति अथाह विश्वास और गहरी आस्था है। और हिमाचल में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग एक कहानी है। और ऐसा ही धार्मिक स्थल है शिकारी माता का मंदिर। और जंजैहली से 16 किलोमीटर दूर शिकारी देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिस पर आज तक कोई छत नहीं बनाई गई है। और यहाँ पर 164 योगिनियाँ विराजमान हैं। और पौराणिक कथाओं में इस मंदिर का निर्माण जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने करवाया था। और मान्यता ये भी है कि मार्कंडेय ऋषि ने इस जगह पर कई साल तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा अपने शक्ति स्वरूप में इस जगह पर स्थापित हुई थी। और बाद में इस स्थान पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी तपस्या करी।

और पांडवों की तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और पांडवों को युद्ध में जीत का आशीर्वाद भी दिया था। और उसी समय पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन किसी कारणवश मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सका और यहाँ पर माँ की पत्थर की मूर्ति स्थापित करने के बाद जो है यहाँ से चले गए थे।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: शिकारी शिखर की पहाड़ियों पर हर साल सर्दियों में कई फीट तक बर्फ होता है और मंदिर के प्रांगण में भी कई फीट तक बर्फ गिर जाती है। जिला मंडी के तहत आने वाले सराज घाटी में शिकारी देवी माता का मंदिर समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और बर्फबारी के कारण सर्दियों में ये मंदिर नवंबर 3 से जो है 3-4 महीने तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। उसके बाद मार्च महीने के अंत में या अप्रैल के शुरुआत में जो है मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और अप्रैल, मई और जून में श्रद्धालुओं के आने की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और शिकारी माता दर्शन करने के लिए हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और गर्मियों के दिनों में मंदिर के चारों ओर हरियाली ही दिखती है और श्रद्धालुओं के पहुँचने के लिए यहाँ पर बेहद सुंदर मार्ग जो है बनाया गया है।

साथियों, इन दिनों शिकारी माता मंदिर में 500 से 1000 जो श्रद्धालु है वो गर्मियों के दिनों में आते हैं, जबकि छुट्टियां जब होती हैं तो छुट्टियों के दौरान ये आंकड़ा 10,000 तक भी कई बार पहुंच जाता है। और माता शिकारी देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आजकल किसी जन्नत से कम नहीं है, और मन्नत पूरी होने के साथ साथ यहाँ पहुँचने पर भक्तों को ठंड का एहसास भी होता है, क्योंकि यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। और जितना कुछ आपने मंदिर के बारे में सुना भी होगा उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपको वहाँ पे महसूस होगा। और मंदिर पहुँचने पर एक अलग सुकून की अनुभूति होती है, और माता अपने भक्तों की हर मुराद को पूरा करती है।

और ये भी कहा जाता है कि शिकारी माता शारीरिक कष्टों को भी दूर करती है, और मान्यता ये भी है कि इस मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता और अपने भक्तों के सच्चे मन से मांगी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और ये भी कहा जाता है कि यदि आपके शरीर के किसी अंग में अत्यधिक कष्ट रहता है तो आप यहाँ आकर उस अंग के स्वस्थ होने की कामना करते हैं, तो फिर उस कामना के पूर्ण होने पर जो है वहाँ पे चांदी से बने अंग की छोटी सी प्रतिमा इस मंदिर में जो भक्त है भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। तो साथियों, कभी भी आपका मन हो, खासकर छुट्टियों में बिताने का मन अगर आपका हिमाचल में है, तो आप ज़िला मंडी के शिकारी देवी ज़रूर जाएं, जहां आप प्रकृति के मनोरम दृश्यों का मज़ा तो लेंगे ही, साथ ही साथ जो है आप माता के दर्शन करने का भी आपको शुभ अवसर मिलेगा।

0: इस गीत के साथ ही कुदरत के रंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला, 9:57 होने को हैं। आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 150 से अधिक वार्डों के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में 17 में से 16, बिलासपुर में 14 में से 6, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 11 में से 9, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 19, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 12, लाहौल स्पीति में 10 में से 2, सिरमौर में 17 में से 12 और सोलन में 17 में से 12 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला परिषद के नतीजों में अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। मंडी जिला परिषद के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर कोटली वार्ड से जिला परिषद का चुनाव हार गई हैं। इसी तरह धर्मपुर क्षेत्र के टीहरा वार्ड से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव हार गई है। वंदना गुलेरिया को मात्र 47 मतों के अंतर से हारी, जबकि चंपा ठाकुर 2,464 मतों के बड़े अंतर से पराजित हुई। चंबा जिला परिषद के अब तक घोषित परिणामों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम की धर्मपत्नी लीला देवी चुनाव जीत गई हैं। वहीं जिला के बख्तपुर वार्ड से इंदिरा कपूर विजय रही। इंदिरा कपूर ने जीत के बाद कहा कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के नतीजे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत और सरकार की जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास

0: प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि प्रदेशवासियों ने विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का समर्थन किया है। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों में वर्षा होगी। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। FM न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप ट्यून

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर।

चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत से। इसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक। गीतकार आनंद मिनिंद और संगीतकार है मछर सुल्तानपुरी।

तो साथियों, ये था प्रोग्राम का पहला गीत, और इसके बाद आइए सुनते हैं तेरी मेहरबानियां फिल्म का गीत। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार ने।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ों में प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गीत। इसे लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली

0: स्वच्छता का आदर्श बनाए। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया स्वर्ग से सुंदर फिल्म का गीत। इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में चालबाज फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
1: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
0: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
1: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
0: शुभवाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

फिल्म संगीत के आखिर में आइए अब सुनते हैं एस एच बिहारी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।

एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी आप ये समाचार बुलेटिन सुन सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 229 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 136 वार्डों में भाजपा समर्थित जबकि 52 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं। 43 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में सभी 17, बिलासपुर में 14 में से 7, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 11 में से 9, कुल्लू में 14 में

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 229 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 136 वार्डों में भाजपा समर्थित जबकि 52 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं। 43 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में सभी 17, बिलासपुर में 14 में से 7, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 11 में से 9, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 20, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 12, लाहौल स्पीति में सभी 10, सिरमौर में 17 में से 10 और सोलन में 17 में से 14 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला परिषद के नतीजों में अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। मंडी जिला परिषद के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर कोटली वार्ड से जिला परिषद का चुनाव हार गई है। इसी तरह धर्मपुर क्षेत्र के टिहरा वार्ड से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव हार गई है। वंदना गुलेरिया मात्र 47 मतों के अंतर से हारी, जबकि चंपा ठाकुर 2,464 मतों के बड़े अंतर से पराजित हुई। चंबा जिला परिषद के अब तक 18 में से 12 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यहां घोषित परिणामों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम की धर्मपत्नी लीला देवी चुनाव जीत गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।

0: इस बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी वार्डों के चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के नतीजे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत और सरकार की जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि प्रदेशवासियों ने विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने चुनाव में जीते सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने अपने क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता द्वारा व्यक्त विश्वास सरकार की और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों में वर्षा होगी। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी कई जिलों में गर्ज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 और 4 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। लगातार बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का असर काफी कम हो गया है। निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि पहाड़ी व ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आगामी 6 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

0: ये आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी ये समाचार रिले किए गए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जी हाँ, इसी विचार के साथ आगाज करते हैं आकाशवाणी FM शिमला पर इस सफर का। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपके साथ रुचि ठाकुर। वक्त बदला, राग बदले, साज भी बदल गए, लेकिन पुराने गानों की खुशबू आज भी वैसी ही ताज़ा है। ये गीत बीते हुए कल का वो खूबसूरत आईना है जिसे हम आज भी देखकर मुस्कुराते हैं। जी हाँ, आकाशवाणी FM शिमला पर अब आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों से ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे चलती का नाम गाड़ी फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है आशा भोंसले और किशोर कुमार ने, मजरूह के बोल और ST वर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। दोस्तों, जीवन की भागदौड़ में कभी कभी थोड़ा रुककर उन सुनहरी यादों को भी याद करना चाहिए जो चेहरे पर मुस्कान ले आती है। हिमाचल की हरी भरी वादियों, ठंडी ठंडी हवाओं और सुहानी सुबह के साथ, जी हाँ, हम भी लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा गीत जो आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देंगे। जी हाँ, अब आपको सुनवाएंगे हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोंसले की आवाज़ में।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी

0: जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं दोस्तों आप, और अगर आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए और सुनिए आकाशवाणी एफएम शिमला पर ये गीत। मुस्कुराइए, क्योंकि ये गीत जो है वो आपके दिल को ज़रूर छू जाएगा। ये हमने लिया है दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

आकाशवाणी फिल्म शिमला पर आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों से कार्यक्रम। जी हाँ, कागज़ के फूल इस फिल्म का ये गीत आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में। कैफी आज़मी के बोल हैं और एसटी वर्मन का संगीत। संगीत दिलों को जोड़ता है और यादों को हमेशा ताज़ा रखता है। पुराने दौर के गीतों में जो मिठास थी वो आज भी हर पीढ़ी को पसंद आती है।

सुजाता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, गीता दत्त और आशा भोंसले की आवाज़ में, मजरूह के बोल और एसटी वर्मन का संगीत। ये वो गीत हैं जिनमें प्यार था, अपनापन था और दिल को छू लेने वाला एहसास। इसी के साथ आज पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में बस इतना ही।

यहाँ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। एफएम शिमला पर ये समय है पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का। हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप लेते हैं इस कार्यक्रम में, और ये वो लोकगीत हैं जो हमें हमारी मिट्टी, हमारी जड़ों और हमारी संस्कृति से जोड़ कर रखते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं तारावती के गाए इस लोकगीत के साथ।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। हिमाचली लोकगीत सिर्फ गीत नहीं होते, ये हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारे पहाड़ों के दिल की आवाज़ है। इन गीतों में जो है वो हमें बहुत सी सी चीज़ें देखने और सुनने को मिलती है जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है या जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख है। तो आइए अब सुनते हैं अतुल शर्मा का गाया ये लोकगीत।

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुनपति और लक्ष्मी का गाया ये लोकगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए अब सुनते हैं रीता देवी का गाया ये लोकगीत।

आकाशवाणी एफ एम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। जी हाँ, हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। ये लोकगीत सुनने में जितने मधुर होते हैं उतना ही सुंदर होता है इस पर किया जाने वाला नृत्य। जी हाँ, इस पर किया जाने वाला नृत्य और साथ ही साथ इस पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की तो बात ही कुछ और होती है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं जोगिंदर सिंह हब्बी और साथियों का गाया ये लोकगीत।

अरुणा गुप्ता की आवाज़ में भी आपने लोकगीत सुना कार्यक्रम में। इसी के साथ पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में बस इतना ही। 12 बजने को हैं, अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी व अंग्रेजी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से

0: लिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar president arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
0: The president of Myanmar will meet President Draupadi Murthy.

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार, विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में।

0: इसी गीत के साथ आज फिल्म संगीत में बस इतना ही। 12:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 12:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला सम्मेलन। आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz, DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं।

0: स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज के कार्यक्रम महिला सम्मेलन में। और आज हम रहेंगे आपके साथ रेणु कश्यप और
1: मैं हेमा राय। आप सभी को हमारा
0: नमस्कार। देखिए हेमा जी, किसी भी परिवार की नींव माता पिता पर निर्भर करती है। माता पिता बच्चों के जीवन का सबसे पहला

0: जरूरी हिस्सा होते हैं। अभिभावक प्रेम, समर्पण, त्याग और करुणा का प्रतीक होते हैं।
1: जी, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स या वैश्विक माता पिता दिवस हर साल 1 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। ये दिन बच्चों के लिए पालन पोषण, उनके जीवन को संवारने में माता पिता द्वारा किए गए निस्वार्थ त्याग और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल, और वर्ष 2012 में अभिभावकों को समर्पित इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। तो ये कैसे मनाएं और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? वैसे तो देखिए, हर दिन
1: माँ बाप
0: अपने
1: का ही दिन है।
0: बिल्कुल है, और अपने माता पिता के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। अपने अभिभावकों के प्रति समर्पण और सम्मान का दिन होना चाहिए हर दिन, लेकिन ये दिन कुछ खास होता है, तो इसके लिए आपका खास क्या कर सकते हैं?
1: जी, आप कर सकते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर उनके साथ बात करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ आप खाना खा सकते हैं, उन्हें
0: जी
1: कहीं घूमने ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ करें कि वो ये दिन उनके लिए खास बन जाए।
0: बिल्कुल, और देखिए, जब आपने बात कही कि भी उनकी ख्वाहिशों का ध्यान रखा जाए, तो मुझे एक बात याद आती है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए ना जाने अपने कितने शौक, अपनी कितनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी होंगी।
1: जी, अपनी कितनी रातों की नींदें
0: हाँ,
1: और दिन का चैन
0: चैन।
1: उन्होंने हमारे लिए खोया है।
0: जी बिल्कुल, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उनकी जो कोई अधूरी ख्वाहिशें रह गई हों, क्या हम ये वक्त है कि हम उसको कहीं पूरा कर सकें? उस पर थोड़ा सा भी अगर हम मरहम लगा सकें, तो ये समझ सकते हैं कि जो हम उनका ऋण है वैसे चुका सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि जो माता पिता है उनका ऋण हम ज़िंदगी भर कभी भी नहीं चुका सकते। हाँ, थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर कर सकते हैं कि अगर उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है, उसका पता करें और कोशिश करें अगर उसमें थोड़ा सा भी आप कुछ कर सकते हैं।
1: जी, और देखिए, अहम काम है जो हम कर सकते हैं, वो है उनकी ज़रूरतों को समझना। हम सभी जानते हैं कि हमारे माता पिता हाथ पैर चलने तक हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। हमारी पसंद का खाना बनाने से लेकर हमें अच्छी शिक्षा से देने से लेकर और हमें अपने पैरों पर खड़ा करने तक हमारी हर ज़रूरत का उन्होंने ख्याल रखा है और रखते हैं।
0: जी, और देखिए, जैसे हमारे माता पिता हमारे बिना कहे हमारी जो सारी ज़रूरतें हैं उनको समझते थे, समझते हैं, वैसे ही अब हमारे जो माता पिता है उनको एक समय के बाद ना ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई उन्हें भी समझे। तो
1: जी
0: उनकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अब हमारी होती है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए, माता पिता कई बार होता है कि उन्हें मांगते कभी नहीं, आपसे कुछ भी
1: जी
0: नहीं मांगते। उन्हें कई बार ये भी होता है कि आर्थिक रूप से उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन उन्हें ज़रूरत होती है एक साथ की और एक सहारे की।
1: और समय की
0: जी
1: सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है समय की, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में रेनू क्या है कि सभी अपने कामों में इतने व्यस्त है कि उनके पास बैठने के लिए समय नहीं है।
0: जी
1: अगर हम कर सकते हैं कि उनके पास थोड़ा उन्हें उनके पास जाएं, उनके पास थोड़ा समय व्यतीत करें, उनसे बात करें, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा उन्हें किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समय की।
0: बिल्कुल, और देखिए, खुद से पहले हमारे माता पिता ने जब हमें आगे रखा है बच्चों की सेहत का, आज भी चाहे वो बुज़ुर्ग भी हो जाते हैं तो भी माता पिता अपने बच्चों को हमेशा आगे रखते हैं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं। तो बच्चा जब बड़ा हो जाए तो यही सब बच्चे को भी समझना होता है कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें भी वही देखभाल की ज़रूरत है जो हमें बचपन में होती है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी भी बच्चों की ही होती है।
1: जी देखिए ना, माता पिता हमेशा बच्चों की हर ज़रूरत बिना कहे समझ जाते हैं, तो वो तो तब भी समझ जाते हैं जब बच्चा अपनी तकलीफ़ बयां तक नहीं कर पाता। वही जब माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं या शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, तो बच्चों पर जो आत्मनिर्भरता है, उनकी जो निर्भरता है, वो बढ़ जाती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, तो ऐसे में ऐसे वक्त पर माता पिता का सहयोग करना, उनकी मदद करना हर बच्चे का कर्तव्य होता है, और ये सहयोग शारीरिक तौर पर भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मानसिक तौर पर उन्हें ज़रूरत होती है आपकी, आपके साथ की, और जैसे कि हिमा आपने कहा कि आपके समय की ज़रूरत होती है। एक अगर आप दो बोल भी उनसे प्यार प्यार से बोल देते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाते हैं।
1: जी
0: ऐसे होते हैं माता पिता जो कि निस्वार्थ भाव से आपसे हमेशा प्रेम करते हैं।
1: जी सबसे बड़ा कर्तव्य तो रेनू देखिए बच्चों का ये बनता है कि माता पिता का पूरा सम्मान करें। बच्चों के मन में माता पिता के सम्मान में कभी

0: भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, वे माता पिता को सम्मान दें। आपका दिया हुआ आदर और सम्मान माता पिता को आत्मसंतोष और सुकून देता है।
1: देखिए, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर ये याद रखिए कि बस माँ बाप नहीं मिलते, जैसे मुरझा कर जो गिर जाते हैं फूल वो दोबारा नहीं खिलते। तो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, आदर करें और उन्हें अपना जो समय है वो ज़रूर दें।
0: जी।

0: तो देखिए, ये दिन तो समर्पित है माता पिता के लिए, तो कोशिश कीजिए, अभी भी समय है, आप अपने माता पिता के लिए कुछ खास ज़रूर कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। तो बहना, जैसे हम पिछले एक साल से बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों की, और 90 वर्षों का जो सफ़र है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारियाँ देते हैं, और बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो हमने आपके साथ साझा की। तो आज अब जब बात आती है आकाशवाणी की, तो जो हमारा रिश्ता है, आकाशवाणी का जो रिश्ता है अपने श्रोताओं के साथ, वो है विश्वसनीयता का।
1: जी, भरोसे का दूसरा नाम आकाशवाणी। 90 सालों का सफ़र और भरोसे का रिश्ता। 1936 से 1990 तक का कैसा रिश्ता, आज़ादी की लड़ाई से लेकर युद्ध तक, जब टीवी अखबार हर घर में नहीं थे, तो लोग खबर के लिए रेडियो के आगे ही बैठते थे, यानी कि रेडियो की विश्वसनीयता को ही सर्वमान्य थी, वो सभी लोग इसी पे विश्वास करते थे।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, इसका जो ध्येय है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सबके हित और सुख के लिए गांव-गांव तक मौसम की, खेती की, शिक्षा की, रोजगार की जो जानकारी है वो श्रोताओं तक पहुंचाना। 1990 से लेकर के, तो ये तो सफ़र था 1936 से 1990 तक की हमने बात की, कि जो युद्ध की जानकारियाँ होती थी अखबार के जरिए, जहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी वो रेडियो के माध्यम से आप तक पहुँचती थी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि 1990 से 1925-26 जो ये चल रहा है, उसमें आगे क्या बदलाव आए हैं। देखिए, जो श्रोता हैं वो अपने जो रेडियो RJ हैं, प्रोग्राम प्रेजेंटर हैं, उनके साथ खुलकर बात करने लगे हैं। फ़ोन कॉल्स पे भी बात होती है, ईमेल के माध्यम से भी जो अपनी राय है वो अपने जो एंकर हैं उन तक पहुंचाते हैं, SMS के माध्यम से अपनी जानकारियां पहुंचाते हैं, लेटर्स के माध्यम से भी बात करते हैं। यानी आम आदमी अब सीधे तौर पर जुड़ता है आकाशवाणी के साथ और अपनी बात पहुंचाते हैं आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक।
1: जी, श्रोताओं की समस्याओं का समाधान लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से, विषय विशेषज्ञों द्वारा पब्लिक स्पीक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ज़्यादा श्रोताओं तक पहुंच बनती है।
0: बिल्कुल
1: आगे कैसा होगा ये रिश्ता?
0: बिल्कुल। तो देखिए, ये तो आज तक की हमने बात कही, लेकिन आगे जो है वो काफ़ी बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, आप सभी जानते हैं ना कि जो रेडियो है सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं रही है, जुड़ने का माध्यम है बन गया है, पॉडकास्ट के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी अगर आकाशवाणी का नाम जुड़ा है तो वो लोगों के को 100% विश्वास है। तो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर अगर विश्वसनीयता की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है आकाशवाणी का।
1: जी, 90 सालों से जो आज भी नहीं बदला वो है श्रोताओं का भरोसा। इमरजेंसी में, न्यूज़ में, स्पोर्ट्स कमेंट्री हो या पुराने गाने सुनने हो, तो लोग आज भी आकाशवाणी के साथ जुड़ते हैं।
0: बिल्कुल, जब भी कभी कोई इमरजेंसी आई हो तब भी आकाशवाणी ने अपना जो कार्य है वो बखूबी

0: भी निभाया है। चुनाव हो, महामारी हो, जब सही खबर चाहिए होती है तो लोग आज भी कहते हैं कि आकाशवाणी है तो 100% सही है। टीआरपी नहीं चाहिए उन्हें, भरोसा है, पहचान है। और डिजिटल युग में भी आज भी अगर सोशल मीडिया पर भी बात की जाए तो फेक न्यूज़ का जो आजकल दौर चल रहा है उसमें भी जो विश्वसनीयता आपने बनाई है वो आकाशवाणी ने बनाई हुई है। और विश्वसनीयता जो है वो ऐसे ही कायम रहती है। कैसे रहती है कि जब त्वरित समाचार की प्रतिस्पर्धा के बावजूद सत्यता और विश्वसनीयता की बनाए रखने की बात आती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आकाशवाणी खबरों को अच्छे तरीके से जो तथ्य होते हैं उनकी पुष्टि करने के बाद ही उन सभी जो कार्यक्रमों को पेश करता है।
1: जी, टीआरपी की दौड़ नहीं, सरकारी संस्थान होने के नाते सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखना जिम्मेदारी है। लोक सेवा ही आकाशवाणी का मकसद है। सभी परिस्थितियों में सच्ची और प्रमाणित खबरें प्रसारित करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है आकाशवाणी।
0: जी बिल्कुल, तो आपका जो भरोसा है वो ऐसे ही कायम रहे आकाशवाणी के साथ। और आगे कार्यक्रम में और भी बात करेंगे किसी और विषय पर, तो पहले आपको एक गीत सुनवा देते हैं।
1: जी

0: और देखिए हेमा, कई बार क्या होता है कि जब आप लिखते हैं ना, और आपकी हैंडराइटिंग देख करके कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कितनी खूबसूरत, चाहे वो किसी की भी हैंडराइटिंग हो ना, अगर वो दूर से अट्रैक्ट करती है और
1: जी
0: बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए, चाहे वो किसने भी लिखा हो, और अगर गंदा लिखा हो तो फिर वैसे ही बुरा
1: वो
0: लगता
1: चाहे
0: है ना।
1: सही भी लिखा होगा वो गलत ही
0: हाँ
1: लगता है
0: हाँ ये तो बिल्कुल सही है।
1: जी। आज के दिन आप सभी को इंतज़ार रहता है सेगमेंट परवरिश का, जिसमें कि हम आपको अपने नन्हे मुन्ने और सभी उम्र के बच्चों से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जो कि अक्सर हमारे बच्चों में आम तौर पर शुरू से ही अगर हम ध्यान दें तो उनके लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद होगा। तो वो क्या है? जी हाँ, वो है हमारे बच्चों की लिखावट यानी हैंड राइटिंग की।
0: बिल्कुल। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि सब कुछ आते हुए भी खराब लिखावट के कारण स्कूल टेस्ट हो या फिर परीक्षाएं हैं, उनमें बच्चे के कम मार्क्स आते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे ने सब कुछ सही लिखा होता है लेकिन टीचर को उसका लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, और वे सही को भी कई बार गलत कर देते हैं। बड़ी कोशिश करते हैं, जो अध्यापक होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि भाई किसी को भी गलत ना किया जा सके, लेकिन क्या होता है कई बार इतनी ज़्यादा गंदी हैंडराइटिंग होती है कि भी वो समझ में नहीं आती है।
1: जो
0: और जैसे आपने पहले भी कहा था कि होता क्या है कि आपने तो सब कुछ सही लिखा है लेकिन आपकी जो गंदी हैंडराइटिंग है उसकी वजह से वो किसी को समझ में नहीं आया, और उसकी वजह से जो आपके मार्क्स हैं वो भी कम आते हैं।
1: जी बहनों, बच्चा साफ साफ लिखे इसके लिए आप उसे शुरू से ही स्पीड मैनेजमेंट, वर्ड और स्पेस मैनेजमेंट सिखाएं। नन्हे हाथ जब आड़ी तिरछी लकीरें खींचना शुरू करें तभी से उनकी राइटिंग पर ध्यान दें। कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से हम अपने बच्चों की लिखावट जो है वो सुधार सकते हैं।
0: बिल्कुल। देखिए जो स्पीड मैनेजमेंट की बात कही, ये होता है कि भाई कितने समय में बच्चा कितने जो शब्द है वो लिख सकता है, और जो स्पेस की बात है वो भी यही आती है। तो बच्चे जब लिखना ही शुरू करते हैं तो ध्यान ये देना है कि वे पेंसिल कहाँ से पकड़ते हैं,
1: जी
0: है ना। कुछ बच्चे होता है कि पेंसिल को बहुत नीचे से पकड़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत ऊपर से पकड़ते हैं, और जब जब वे पेंसिल गलत पकड़ें तो उन्हें टोक कर ठीक से पेंसिल पकड़ाएं, क्योंकि जो पेंसिल पकड़ने का जो तरीका होता है वो भी हमारी जो हैंड राइटिंग है उसको इफेक्ट करता है।
1: जी कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ही ऊपर से पेंसिल पकड़ते हैं। जब वो पेंसिल को गलत तरीके से पकड़े तो उन्हें टोक कर ठीक से पेंसिल, क्योंकि ज़्यादा ऊपर से पकड़ेंगे तो भी हैंड राइटिंग सही नहीं लिख पाएंगे, वो राइटिंग अपनी उनकी
0: जी
1: सही नहीं होगी। और बहुत नीचे से भी क्या, उनकी उंगलियाँ भी उसमें टच करती हैं तो वो राइटिंग ठीक नहीं आती। और इसके साथ ही देखिए रेनू, सिटिंग पोस्चर का भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि लिखते समय जो रीढ़ की हड्डी है वो बच्चे की बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और सर जो है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा कॉपी पे ही सर लगा देते
0: जी
1: हैं, तो सिर जो है उनका ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि लेवल में टेबल पे बैठ के अगर उसको करवाएं तो वो ज़्यादा सही रहेगा।
0: बिल्कुल। और देखिए शुरू में बच्चों को लाइन वाली कॉपी में लिखने का अभ्यास कराएं, इससे वे सही आकार में लिखना सीख जाते हैं। उन्हें ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर कैपिटल लेटर दो लाइनों के बीच में लिखा है

0: है तो स्मॉल लेटर आपको सिंगल लाइन में लिखना है। और देखिए इसके लिए वो 4 लाइन वाली कॉपी भी
1: जी
0: आती है, तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन हम घर पर उनकी जब जब प्रैक्टिस करवाते हैं उस वक्त कितना ध्यान देते हैं ये भी निर्भर करता है। अगर हम उनके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बच्चे ना लेजी होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर लिखने में कई बार बहुत समय लेते हैं या फिर वो लिखना पसंद भी नहीं करते
1: जी
0: हैं।
1: और ऐसा नहीं कि वो होमवर्क करते हैं तो तभी उनकी लिखावट की प्रैक्टिस रोजाना होनी ही चाहिए, तभी
0: जी
1: उनकी लिखावट में सुधार आएगा, उन्हें लिखने की आदत पड़ेगी।
0: जी
1: रोज़ एक पेज बिंदु वाले अक्षरों पर लिखने का अभ्यास हम उन्हें करवा सकते हैं। ये अभ्यास हर उम्र के बच्चों के लिए ज़रूरी है, इससे बच्चों को ठीक से अक्षर बनाने आते हैं।
0: बिल्कुल। और जो लिखने की स्पीड के बारे में बात कर रहे थे उस पर भी नियंत्रण रखना ज़रूरी है। देखिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी बच्चा कुछ लिखे तो आप उसके पास ही बैठें, क्योंकि अगर वो बहुत जल्दी जल्दी लिखेगा तो क्या हो सकता है कि वो रनिंग हैंड में बहुत जो हैंड राइटिंग उसकी इफ़ेक्ट हो सकती है।
1: क्योंकि अक्षरों को बनाने का जब
0: हाँ
1: तरीका वो आराम से सीखेगा ना, आप उसे अगर वो गलत घुमा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हाथ पकड़ के भी आप उसे सिखाएंगी तो वो
0: जी
1: याद रखेगा कि मुझे ऐसे ही सिखाया गया था। उसे समझाएं कि वो धीरे धीरे से 2 लाइनों के बीच में ही लिखे। 3 से 5 साल के बच्चे के लिए 5 मिनट में 2-3 लाइनें लिखना, 6 से 8 साल के बच्चे के लिए 7-8 लाइनें 2 मिनट में लिखने की स्पीड बिल्कुल सही है।
0: और देखिए कुछ बच्चे पेंसिल को गढ़ा गढ़ा कर लिखते हैं, यहाँ
1: जी
0: तक कि
1: जोर लगा के फट
0: कागज़
1: जाता
0: भी
1: है।
0: फाड़ लेते हैं। और जो कुछ बच्चे होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हल्के हाथ से लिखते हैं, और कॉपी पर वो कितना प्रेशर पड़ रहा है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी सी बहुत छोटी सी बातें हैं जिनका आप ख्याल रख सकती हैं, और इस ख्याल को रख करके आप बच्चों की जो हैंड राइटिंग है वो सुधार सकती हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनसे कि आप बच्चे की हैंड राइटिंग सुधार सकती हैं। तो बस आपने करना क्या है, अभी गीत सुनिए और उसके बाद फिर से हम बात करते हैं।
1: जी।

0: तो हेमा जी, देखिए बहनें इंतज़ार कर रही होंगी कि आगे और क्या हम आप बहनों को बताने वाले हैं, जो कि बच्चों की हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए आप क्या कर सकती हैं। तो देखिए, बच्चे को लिखने के नियमित अभ्यास की आदत डालें, उसे कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक्स और एक्टिविटी जो मैगजीन है वो ला करके दे सकती हैं आप। इससे बच्चों को ना खेल खेल में लिखने की जो आदत है वो पड़ जाती है।
1: जी देखिए बहनों, ड्राइंग और हैंडराइटिंग आपस में जुड़े हैं। जिसकी हैंडराइटिंग ख़राब होती है ना, उसकी ड्राइंग भी अच्छी नहीं होती, और जो सफाई से रंग नहीं भर सकते उनकी लिखावट भी ख़राब होती है। तो लिखते समय बच्चे के हाथ की पोजीशन पर भी आप गौर करें, जब वो रंग भर रहा है किसी में उस पर भी आप ध्यान रखें। कुछ बच्चे लिखते समय अपने हाथ को ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर रखते हैं तो कुछ टेढ़ा। बच्चे को सही पोजीशन समझाएं और लिखवाएं।
0: बिल्कुल, जो ये हमने ड्राइंग की बात कही ना, ड्राइंग में भी क्या होता है कि थोड़ी सी ना पेशेंस की ज़रूरत
1: जी
0: होती है, सब्र की ज़रूरत होती है। तो जिस बच्चे में सब्र है वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। और जो लिखने में भी यही होता है ना कि आपको लिखते
1: जी
0: हुए इतने अच्छे तरीके से आप जो शब्द है वो बना रहे हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है थोड़ा सा भी, तो क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी लिखने की
1: जी
0: कोशिश करने
1: हम
0: लगते
1: खुद
0: हैं।
1: भी जब लिखते हैं ना, रेनू
0: हाँ
1: आपने अगर ध्यान दिया होगा, जब हम आराम से लिखते हैं तो कितने अक्षर हमारे अच्छे
0: बहुत,
1: आते हैं,
0: हाँ
1: हैंडराइटिंग अच्छा होता है। और जब हम
0: बिल्कुल,
1: कभी जल्दबाजी में लिखते हैं तो वो अक्षर कई बार खुद से भी नहीं पहचाने जाते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए, लिखावट में कहाँ समस्या आ रही है ये भी ज़रूर समझिए। बच्चे की जो समस्या है वो है कहाँ, कि शुरू से ही बच्चे को ये भी ज़रूर बताएं कि दो अक्षरों के बीच कितना अंतर रखना है। आप उसे ये बता सकती हैं कि दो शब्दों के बीच में एक छोटी उंगली का गैप रखना, या थोड़ा सा जो भी गैप रखना होता है। और जब भी वो कुछ लिखे तो साथ बैठकर इस पर गौर ज़रूर करें।
1: जी बच्चे अक्सर लिखने से कतराते हैं, इसे मज़ेदार बनाने के लिए उन्हें आईने में धूल या भाप पर या रेत पर, या कुछ खा रहा है टोमेटो सॉस या किसी चीज़ को तो उसमें, या हवा में उंगली से अक्षर बनवाने की आप बनाने के लिए कहें। बच्चों की उंगलियों की एक्सरसाइज भी होती है और हाथ की रोटेशन मूवमेंट बेहतर बनती है।
0: और बच्चे को मज़ा भी आता है ये काम करने में,
1: जी
0: क्योंकि उल्टे सीधे काम है ना, इनमें ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई
1: जी
0: सॉस पर लिखना है या फिर आटे में ही उंगलियां फिराना शुरू कर
1: जी
0: देते हैं। तो अगर इस तरीके से वो काम करेंगे तो सीखेंगे भी और उन्हें भी आनंद आएगा। और देखिए, कुछ पेरेंट्स ना उत्साह में भर कर बच्चों के लिए फैंसी जो पेंसिल हैं वो भी लेकर के, इरेजर भी लेकर के आते हैं कि इनसे लिखने में बच्चों को मदद मिलेगी। पेंसिल देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा छोटी पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल गोल ही होनी चाहिए।
1: जी अलग अलग शेप की पेंसिल पकड़ने से उंगलियों पर ज्यादा दबाव बनता है, उनकी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं जिस वजह से वे जल्दी थक जाते हैं।
0: और देखिए, रोज़ रोज़ एक जैसी कर्सिव राइटिंग करते हुए बच्चा ना बोर भी हो जाता है। तो घर में क्या कर सकते हैं, राइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड भी टांग सकते हैं। इस बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि बच्चा एक सीधी लाइन में और प्लेन पेपर पर लिखना भी सीख जाता है।
1: जी खराब लिखावट की वजह से परीक्षा में मार्क्स कट जाते हैं। बच्चा साफ साफ लिखे इसके लिए हमें शुरू से ही स्पीड मैनेजमेंट, जैसे कि हमने पहले भी कहा, वर्ड मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट बच्चों को सिखाना होगा।
0: तो देखिए हेमा, उम्मीद करते हैं कि ये कुछ जो हमने बातें बहनों से कही वो बच्चों की लिखावट को सुधारने में काफ़ी मददगार होगी उनके लिए भी। तो परवरिश के आज के अंक में तो देखिए इतना ही है, लेकिन कार्यक्रम में देखिए बाकी है एक और गीत, तो सुनवा देते हैं।
1: जी

0: तो हेमा जी, वो भी एक दौर था कि जब संदेशे चिट्ठी के माध्यम से जाते थे, लेकिन
1: जी
0: आज का दौर है वो बदल चुका है कि आप सीधे SMS या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपने कोई भी बातें हैं वो उन तक पहुंचाते हैं। तो ये
1: जी
0: तो बातें हुई कि आप कैसे कैसे हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आकाशवाणी के कार्यक्रम यूँ ही सुनते रहें। लेकिन जो हमारा आज का महिला सम्मेलन कार्यक्रम है वो तो यहीं पर संपन्न होता है। अब दीजिए हमें अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से अभी आप महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुन रहे थे। इस समय दोपहर का 1 बजने को है। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द

0: टिकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में

0: रहेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53 रुपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U Myint Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
0: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahava relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the President of Myanmar to India is expected to further

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें

0: निःशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जीवन में खुश और व्यस्त रहने के लिए गीत संगीत सबसे अच्छा तरीका है। आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें अधिकार जाने,
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी भाग दौड़ क्यों ना हो, थोड़ा सा समय अपने लिए और अपने पसंदीदा संगीत के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि संगीत दिल को सुकून देता है और चेहरे पर मुस्कान लाता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं करण अर्जुन फिल्म का ये गीत, साधना सरगम और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में, इंदिवर के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: अब आपको सुनवाएंगे बोल राधा बोल फिल्म का ये गीत, कुमार शानू और पूर्णिमा की आवाज में, समीर

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं म्यूज़िक मस्ती कार्यक्रम। जी हाँ, और हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ गीत, वो भी चुनकर कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे। जानम समझा करो इस फिल्म का ये गीत अनु मलिक और हेमा सरदेसाई की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल है और अनु मलिक का संगीत।

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋ।

103.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ यहाँ पर एफएम शिमला पर आनंद ले रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत संगीत की वॉल्यूम को थोड़ा और हाई करते हैं और आपको सुनवाते हैं हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म का ये गीत इसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने। महबूब के बोल और इस्माइल दरबार का संगीत इस फिल्म में। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम।

मस्ती और झूमने के इस सफ़र में अब आपको सुनवाते हैं दाग द फायर फिल्म का ये गीत उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल और राजेश रोशन का संगीत। वक्त पंख लगाकर उड़ जाते हैं, खासकर जब साथ हो गीत संगीत का।

इसी गीत के साथ आज म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में बस इतना ही। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 2 बज चुके हैं दोस्तों। FM शिमला पर ये समय रहता है गीतों के कुछ चुनिंदा रंग, कार्यक्रम सब रंग का। जी हाँ, आगाज़ करेंगे अबीदा परवीन की गाए इस सूफी कलाम के साथ, कार्यक्रम सब रंग का।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं राजी फिल्म का ये गीत हर्षदीप कौर।

इस गीत के साथ आज सबरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। 2:15 होने को हैं, अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र दोपहर हिंदी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपये से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन

0: धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा

0: हैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान एक महीने तक चलेगा।
2: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
6: मैं आपकी सरकार को 2026 की

0: राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: के साथ हैं आप स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। आकाशवाणी FM शिमला पर यह समय रहता है हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शिखरों का सर का। जी हाँ, हिमाचल की मिट्टी की खुशबू से भरा एक खास कार्यक्रम शिखरों के स्वर आगाज करेंगे रघुवीर शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ कार्यक्रम का।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुलराज किशोर भारद्वाज का गाया ये लोकगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर कार्यक्रम। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का। अब आपको सुनवाएंगे पुष्पलता का गाया ये लोकगीत।

दोस्तों, ये लोकगीत जो है वो पहाड़ों के प्रति प्रेम और रिश्तों की मिठास को बेहद खूबसूरती से बयां करते हैं। अगर आप हिमाचल से दूर रहते हैं तो ये गीत जो भी आपने सुना आपको अपने गांव, मिट्टी और लोगों की याद ज़रूर दिलाएगा। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा का गाया ये लोकगीत।

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर कार्यक्रम। जी हाँ, अब आपको सुनवाएंगे अंकुश संदल का गाया ये लोकगीत। आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप और हिमाचली लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम शिखरों के स्वर में।

लहरूराम सांख्यान के गाए इस लोकगीत के साथ आज लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम शिखरों के स्वर में बस इतना ही। 3 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: फ्रेंड्स, सबसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे ओल्ड हिट्स पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। 4 बजे का समय रहेगा।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। DTH और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप ये समाचार सुन सकते हैं।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। पेश है ये रिपोर्ट।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। वर्ष 1993 बैच के उत्तराखंड मूल के कमलेश कुमार पंत के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। के पंत ने कहा कि सरकार की

योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने सोलन में एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान शिक्षा विभाग के उपनिदेशक गोपाल चौहान ने बताया कि ये अभियान जिले के सभी स्कूलों में चलाया जाएगा और विद्यार्थियों को चिट्टा सहित अन्य मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा।

0: मोहन शर्मा ने सोलन में एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान शिक्षा विभाग के उपनिदेशक गोपाल चौहान ने बताया कि ये अभियान जिले के सभी स्कूलों में चलाया जाएगा और विद्यार्थियों को चिट्टा सहित अन्य मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा।
1: एंटी चिट्टा जो कैंपेन है ये 1 जून से 20 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हमने जिले के सारे जितने भी जो ग्रेड 1 ऑफिसर हैं उनको 10-10 स्कूल अलॉट किए हैं, वो सरकारी स्कूल भी है प्राइवेट स्कूल भी है, वो सारे स्कूलों में जाएंगे और बच्चों से और स्टाफ से और SMC मेंबर से ये जो ड्रग्स के जो मेंटेनेंस है इसके बारे में जो है बातचीत करेंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे, बच्चों से इंटरेक्शन की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ये ड्रग्स का जो ये इतना भारी प्रकोप हमारे प्रदेश में आ गया है ये क्यों आया, इसको रोकने के लिए बच्चों को जो परिवार से बातचीत करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स से कोई चीजें ना छुपाए और उनसे बात करें ताकि टाइम रहते ही इसको हम रोक सके।
0: होटलों, रेस्तराओं और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। व्यावसायिक LPG की कीमतों में ये वृद्धि अमरीका और ईरान में संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के मद्देनजर हुई है। असम के गुवाहाटी में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्र ग्रैपलिन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने खिलाड़ियों की इस अद्भुत सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता राज्य के युवाओं की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। राज्य में बीते 3 दिनों के दौरान हुई वर्षा, ओलावृष्टि व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों पर वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहेगा। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
3: कृषि विकसित भारत के विजन में एक आधारभूत स्थान रखती है। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने 4.45% की दर से वृद्धि दर्ज की है, जो पूर्ववर्ती दशकों की तुलना में सर्वाधिक है। इस परिवर्तन के केंद्र में बागवानी है, जो भारत की उच्च मूल्य फसल अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उभरी है। फलों और सब्जियों से लेकर फूलों, मसालों और बागान फसलों तक बागवानी ग्रामीण परिदृश्यों को रूपांतरित करती रही है। पारंपरिक मुख्य फसलों के विपरीत उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलें प्रति इकाई भूमि पर अधिक प्रतिफल उत्पन्न करती हैं और कृषि सकल मूल्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत में कृषि के विकास के प्रेरक के रूप में बागवानी क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कृषि फसल उपक्षेत्र के सकल मूल्य उत्पादन में लगभग 37% योगदान देता है और भारत की कृषि विकास की दिशा में एक आधारशिला के रूप में उभरा है। उत्पादन में निरंतर वृद्धि इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को रेखांकित करती है, जो न केवल समग्र कृषि उत्पादन में बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था के भीतर मूल्य संवर्धन में भी परिलक्षित होता है। बागवानी क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति इसके रणनीतिक महत्व को और सुदृढ़ करती है। देश सब्जियों, फलों और आलू के उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में फलों का योगदान 9.18% तथा सब्जियों का योगदान 8.18% है। केंद्रीय बजट 2026-27 ने उच्च मूल्य कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विशिष्ट क्षेत्र आधारित भिन्न रणनीति पर बल दिया है, जो कृषक आय बढ़ाने और उत्पादन प्रणालियों में विविधता लाने की इसकी क्षमता को स्वीकार करता है। नारियल क्षेत्र भारत की बागवानी अर्थव्यवस्था

0: यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो लगभग 3 करोड़ लोगों, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल है, की आजीविका का समर्थन करता है। भारत नारियल उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 22.44% योगदान देता है, तथा खेती के क्षेत्रफल के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है, जो विश्व के कुल नारियल क्षेत्र का करीब 19.32% है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत नारियल विकास बोर्ड ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नारियल की खेती तथा संबंधित उद्योगों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नारियल प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और कम उपज देने वाले पेड़ों को उन्नत पौधों और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। भारत में काजू और कोको की खेती के संगठित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। बादाम एक अन्य उच्च मूल्य समितोषण मेवा फसल है, जो विशेष रूप से हृदय संबंधी तथा पाचन स्वास्थ्य के लिए अपने पोषण व स्वास्थ्य लाभों के कारण व्यापक रूप से पहचानी जाती है। बागवानी सांख्यिकी इकाई कृषि व किसान कल्याण विभाग के अनुसार भारत में वर्ष 2024-25 में बादाम का उत्पादन करीब 14,000 मीट्रिक टन रहा, जिसकी खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में केंद्रित है। जम्मू कश्मीर देश के कुल उत्पादन में 83% से अधिक का योगदान देता है, तथा कश्मीर क्षेत्र में प्रमुख प्रसंस्करण और विनिर्माण केंद्र स्थापित हैं। हिमालयी क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण मेवा फसल चिलगोजा है, जो अत्यंत मूल्यवान चिलगोजा पाइन नट्स का उत्पादन करती है। इसे अक्सर चैंपियन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स कहा जाता है। ये फसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनजातीय समुदाय की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चिलगोजा पाइन उत्तर पश्चिमी हिमालय की आंतरिक शुष्क घाटियों में उगता है, जहां कम वर्षा और भारी शीतकालीन हिमपात जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिससे ये प्रजाति पारिस्थितिक रूप से अनुकूल होने के साथ साथ स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन जाती है।
1: सामयिक चर्चा में आज विषय था भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 3:10 हुए हैं। एफएम शिमला पर यह समय रहता है ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत का। तो आइए आगाज करते हैं किस्मत फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है आशा भोंसले ने। नूर देवासी का बोल है और ओपी नैयर का संगीत।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ, और अब आपको सुनवाएंगे मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरूह के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत। अब आपको सुनवाएंगे एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत। इसे गाया है आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी ने, प्रेम धवन के बोल हैं और रवि का संगीत।
1: ये पर

एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और इसी गीत के साथ आज ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत में बस इतना ही।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 3:30 होने को हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा दोस्तों को आरती ठाकुर का नमस्कार। साथियों, आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो साथियों, आज के कार्यक्रम का खास विषय इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली है, यानी के परिवार का महत्व, जो कि सभी व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो परिवार के बहुत बड़े बड़े अर्थ होते हैं, पर अगर हम सरल शब्दों में कहें तो परिवार वो है जो हमें बिना शर्त प्यार, सुरक्षा और संस्कार देता है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए हिम्मत देता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे परिवार की। परिवार माता पिता और उनके बच्चों का एक समूह होता है, लेकिन इसका असली अर्थ

खून के संबंधों से कहीं आगे है। तो साथियों, परिवार का सबसे मुख्य अंग माता पिता होते हैं, जिनके बिना हर परिवार अधूरा है। माँ, जो कि बच्चों के पालन पोषण से लेकर उन्हें संस्कार देने व शिक्षा देने में सबसे अहम भूमिका निभाती है, साथ ही एक बच्चे के लिए उसकी पहली गुरु उसकी माँ होती है, जो उसे अच्छे बुरे में फ़र्क करना समझाती है। एक माँ की जगह बच्चे की ज़िंदगी में कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि एक माँ ही वो शख्स है जो बिना किसी मतलब के अपने बच्चों को प्यार करती है और हर मुसीबत से बचाती है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, परिवार एक बहुत ही अनमोल रिश्ता है जो हमें हर जगह सहारा देता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। परिवार ही वो है जिससे हमें हमारा नाम, हमारी पहचान मिलती है, जो हमें सही गलत का फ़र्क बताता है और हमारे लिए एक ढाल की तरह काम करता है। हर खुशी, हर दुख में जहाँ दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, वहाँ सिर्फ हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है। परिवार ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों परिवार से हमें संस्कार और मूल्य मिलते हैं, यानी कि हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है, जहां हमें बड़ों का आदर करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया जाता है और जीवन की बुनियादी ज़रूरतों जैसे खाना, कपड़े और रहने को पूरा करने से लेकर शारीरिक और वित्तीय संकट में परिवार हमेशा हमारी मदद करता है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, एक परिवार का होना एक ऐसी ज़रूरत है जो हमें अक्सर ज़िंदगी के हर मोड़ पर ज़रूरी होती है। हमारा परिवार हमारी पहली सांस से लेकर हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहता है। ये बात तो सच है कि एक परिवार के बिना किसी भी व्यक्ति की पहचान कभी पूरी नहीं होती है। परिवार तो हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे बुनियादी कनेक्शन है जो हम अपने जीवन में बनाते हैं। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

तो साथियों, इसी के साथ मैं आरती ठाकुर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। फिर मिलूँगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक सुनते रहिए FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर ये समय रहता है स्थानीय सूचनाओं के साथ फिल्म संगीत का। तो आइए सबसे पहले बात कर ली जाए मौसम की। बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी का असर लगभग खत्म कर दिया है। ठंडी हवाएं चलने से तापमान सामान्य से 9 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है और साथ ही साथ कुल्लू मंडी शिमला और सिरमौर के कुछ हिस्सों में हल्की ओलावृष्टि और 5 जून के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है, इसकी संभावना जताई गई है। तो आइए आगाज करते हैं दिल ही दिल में इस फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है अभिजीत ने।

103.7 MHz आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए दोस्तों बात करते हैं पेड़ और हमारी। पेड़ और हमारा रिश्ता बहुत गहरा और जीवनदायी है। पेड़ हमारे फेफड़े हैं और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। इसके अलावा ये तापमान को कम करके और मिट्टी के कटाव को रोककर पर्यावरण को संतुलित बनाते हैं। जी हाँ, अब आपको सुनवाएंगे होगी प्यार की जीत, इस फिल्म का ये गीत, उदित नारायण की आवाज़ में, समीर के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत। कहीं मत जाइएगा, कुछ और बातें पेड़ों की।

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। पेड़ों से हमें ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती है और चिलचिलाती धूप में पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करते हैं जो गर्मी को कम करते हैं यानी छाया और ठंडक देते हैं। मिट्टी और जल संरक्षण भी पेड़ों से होता है। पेड़ अपनी जो जड़ों से मिट्टी को कस कर पकड़ कर रखते हैं जिससे भूस्खलन और मिट्टी कटाव रुकता है। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़, पेड़ों के बीच समय बिताने से हमारा तनाव और चिंता कम होती है। जी हाँ, हमें भी अपने जीवन के कुछ खास अवसरों पर पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। साल में हो सके तो एक और दो पेड़ ज़रूर लगाएं। जी हाँ, अपने अपने खास मौक़ों पर, खास अवसरों पर अपनी खुशी को पेड़ों के साथ बांटें, पेड़ लगाएं और उन्हें जो है वो पालें, उन्हें बड़ा करें ताकि वो भी जो है वो हमारे इसी तरह काम आ सके। इसी के साथ हम आपको सुनवाते हैं हम है राही प्यार की इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है कुमार शानू, अलका याग्निक ने, समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत।

इसी गीत के साथ आज फिल्म संगीत में बस इतना ही। आज का ये सफ़र आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचि ठाकुर के साथ। 4:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और आकाशवाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आइए सबसे पहले सुनते हैं चंब्याली कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

चंब्याली कार्यक्रम सुनने वाले सभी लोगों का जो सुषमा शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार जी। तो हाजिर न अकबरी फिरी तुंदे ही अपना चंब्याली कार्यक्रम लेकर ही ते स्वागत कर दें तुसु सभी लोगों रा इस कार्यक्रम मंज। बिल्कुल जी, जियां तुसु पता ही है जे असे चंब्याली कार्यक्रम जे असे हरेक सवार है ब्रेप तै ते संचरे लेकर ईंदे आ ते कोशिश करदे आ जे तुसु सीते अपनी भाषा अपनी बोली मां जे असे जुड़ी सकन ते कोई ना कोई जे असे स्कीम तुंदे सामने जे असे लेकर ईंदे आ ताकि तुसु तक जे असे जागरूकता पुजी सका तुसु ये पता चली सका जे भारत सरकार है जे असे कुन कुन नई नई स्कीम जे असे इंदे गरीब तबके रे लोकां रे ताएं जे इनसे शुरू करू रही हिन ते कुन कुन स्कीम इदे हिन जड़ी तुंदे फायदे रही हिन ते तुसे जे असे त्यारा भरपूर जे असे फायदा ले सकते हिन। तो अज असु तुसी ते गल करने हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना रे बारे में जे इस स्कीम में जे असे के जे असे भुंदा हा ते पर्यावरण संरक्षण ये भी इंदा अजरा विषय हा ते इत पुठे भी जे असे असु तुसी ते गल लाने हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना री जे असा गल करदे हाँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना रा लक्ष्य जे हा यानी कि जियां मले घर नहीं है तियां टबरा जो कच्चे ते जीण शीण घरा रा जे असे रहने वाले टबरा जो बुनियादी सहूलता से ते पक्का घर जे असे देना हा। ये योजना ग्रामा घरा री कमी जो जे असे पूरा करने रा कम करदे हा ते भारत मां ग्रां रे इलाके मां रहने वाले सभी लोगों रे ताएं घर बनाने मां

आज ऐसे मदद भी करते हैं। इस योजना में आज ऐसे ग्रां ते शहरी इलाके में रहने वाले गरीब लोग का जो पक्के घर जैसे दीते गांदे हैं। सरकार है इस योजना जो तीन फेज में आज ऐसे बंडू रहा। पहला फेज जैसे अप्रैल 2015 जो शुरू हुआ थू जितियो मार्च 2017 में आज ऐसे मुकाय दिता गो थू। इतमा जे ऐसे 100 थो भी ज़्यादा शहरा में आज ऐसे घर बनाए गए थे। फिर दुआ फेज जो ऐसे अप्रैल 2017 जो शुरू हुआ थू जितियो मार्च 2019 में आज ऐसे पूरा कर दिता गो थू। इतमा जे ऐसे सरकार है 200 थो ज़्यादा शहरा में आज ऐसे मकान बनाने का लक्ष्य रखू रहा थू। तो आसू जी ऐसे इत पुठे गलबात जो ऐसे जारी रखने कार्यक्रम री शुरुआत कर दे अनमोल जी रे गाए इस बढ़िया जिने लोकगीत कने।

जी अबे तू शुणुआ ए बढ़िया जीणा लोकगीत तो असं गल करदे तुसी ते प्रधानमंत्री आवास योजना रे त्रिया जड़ा फेज हा ए अप्रैल 2019 मा शुरू हुआ थू ते मार्च 2022 मा जिया से इतियो मुकाई दिता गो थू जितमा बचूरे लक्ष्य जो पूरा जिया से करी दिता गो थू। ऐसा योजना रे अंदर जैसे मिलने वाले रकम सब्सिडी जैसे डायरेक्ट जैसे उम्मीदवार रे बैंक खाते में जैसे इंदिया जड़ा आधार कार्ड कने जैसे लिंक बुंदा हा जिथा हूँ योजना कने जुड़ू रहे मनु जो पूरा जैसे फायदा भुची सका। प्रधानमंत्री आवास योजना रे अंदर बनने वाले पक्के मकान 25 स्क्वेयर मीटर लगभग 270 स्क्वेयर फीट रे बुने चाहिए हैं। तय पहले ही टेरा जोड़ा आकार हा ये 20 स्क्वेयर मीटर लगभग 215 स्क्वेयर फीट तय जैसे करूरा थू। ऐसा योजना में लगने वाला खर्चा जहाँ से केंद्र सरकार ते राज्य सरकार ये दुईयों जैसे मिले करे किठी करे जैसे कर दे हा। मैदानी इलाके रे जैसे गल कर दे हा ता इतमा जैसे अनुपात 60.40% जैसे दिता गांदा हा। ते उत्तर पूर्व हिमालय वाले 3 राज्य जियाँ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जैसे अनुपात 90.10% जैसे हा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो जैसे स्वच्छ योजना कने भी जोड़े छू रहा हा। इत अंदर जैसे बनने वाले शौचालय रहता है स्वच्छ भारत योजना रे अंदर 12,000 रुपये अलग ही दिते गांदे हैं। ऐसा योजना रे अंदर जे लाभार्थी चाहन ता 70,000 रुपये रा लोन भी ले सकते हैं जेतियो जैसे किश्ता रे रूप में जैसे तुसको भरना पैंता हा। शहरी इलाके में उम्मीदवार 70,000 रा लोन जैसे ले सकते हैं ते घट ब्याज दरा पर जैसे ये लोन तुसको दिता गांदा हा। इतमा LIG HIG MIG कैटेगरी रे हिसाब कने जैसे लोन दिता गांदा हा। लाभार्थी जो पूरी सहूलत जियाँ शौचालय हा पीने रा पानी हा बिजली हा सफाई खाना बनाने रहता है जैसे गैस हा ते होर भी मती किस्मरी जैसे तुसु सहूलता जिन से दिती गांदी हिन। ते ऐसा योजना मा होर नी योजनाओं कने भी जैसे ऐसा स्कीमा जो जोड़िया जैसे गुछूरा हा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले जैसे इंदिरा आवास योजना कने भी जाने गांदा थू ता असु गलबात जैसे जायर रखने सुनद्या अखोर बदिया जिना लोकगीत किशोर कुमार जी री भाकमा।

जी अबे तुए सुनवा बड़ा ही बढ़िया लोकगीत चंबा कितनी क दूर। ये सिर्फ सही समझ सकते हिन जड़े चंबे थों दूर हिन, अपने घर थों दूर हिन। ते दूर इच करी जी ऐसे नौकरी लगू रहे हिन करना, ते अपने घर टबरा जो जी ऐसे छड़ी करी दूर बिठू।

जहिन ता से लोग जहिन से इस गाना जो सुनी करे जी ऐसे बड़ा ही भावुक जहिन से महसूस कर देहिन ते तिया जो इस गाना जो सुनी करे अपने घर आरा चेता जी ऐसे बड़ा भरी ईंदा हा। ता ऐसे तो सीते गल करना लगूरे हा प्रधानमंत्री आवास योजना जीतियों से पहले इंदिरा आवास योजना रे नाह कने भी जान देती है। जेतमा असे पात्रता री गल करते हिन ता आवेदक री उम्र जी ऐसे 70 थाउ घट जी ऐसे भूना चाहें दिया। त्यारे टबरा रे 80 सदस्य रे ना जैसे कोई घर की फ्लैट जैसे ना भूना चाहिंदा हा। आवेदक द्वारा जैसे घर खरीदने रहता है कसी भी किस्म रे सरकारी छूट जैतिये ना भुआ ले और ते घर रा मालिकाना हक कीता मणि रा भुआ कीता जैसे टबरा मा सिर्फ जैसे अक मणु भुआ। टबरा री ज़्यादा थों ज़्यादा सालाना आय जहाँ से 18 लाख थों अधिक जैसे ना भूना चाहिंदी। ते आर्थिक रूप कने जैसे 4 अलग अलग भागा मा जैसे इस स्कीमा मा जैसे बंडूरा हा। ईवीएस की आर्थिक रूप कने कमजोर वर्ग सालाना जैसे कुल आय 3 लाख जैसे थाउ घट भुआ। एलआईजी री निम्न आय वर्ग जे हिन से 3 लाख थाउ 6 लाख सालाना भुआ। एमआईजी एक की मध्यम वर्ग जहा इतमा जैसे 6 लाख थाउ 12 लाख जैसे सालाना भुना चाहिए हा। एमआईजी दो मतलब मध्यम वर्ग जहा इतमा जैसे 2 थों 12 लाख इतमा सालाना जैसे 18 लाख जैसे भूना चाहिए है जड़ी तुंदे आर्थिक आय हा ये सालाना आय हा। ता घर री जड़ी मरम्मत रिया से गल थे करते है इतमा जैसे सिर्फ ईडब्ल्यूएस ते ईडब्ल्यूएस कने एलआईजी वर्ग रहताएं ये उम्मीदवार जहिन से चुनी गांद हैं। ते असें उम्मीद कर दिया जे जितनी भी स्कीम असें तुंदे सामने लेकर ही इंदे हा ते तेरे बारे में जे असें तुसो जानकारी भुंदी बोली ते तुसे भी जे असें जागरूक बुची करी अपने आसे पास रे लोका जो जे असें दसते बोले इं स्कीम रे बारे में ताकि होर भी ज़्यादा जे असें लोग जागरूक बुची सकन ते इं स्कीम रा पूरा फायदा जे असें ले सकन। भारत सरकार जी ऐसे टाइमा टाइमा पर किस्मा किस्मा री स्कीमा जी ऐसे बनाते रहते हैं ताकि जितने भी गरीब तबके रे लोग हैं से जे इं स्कीमा कने जिनसे जुड़ी सकन। पर जड़े दूर दराज रे इलाके में रो लोग रहते हैं तियाँ तकर कई बारी अखबार बिना पुछदी कई बारी जी ऐसे टीवी भी तिठी ना बुंदा ता रेडियो राजे तुंदे तिठी ते सजा गामा सिग्नल जैसे ईंदा हा। तो रेडियो लाए करी रेडियो रे माध्यम कने भी तुसे मती सारी स्कीमा रे बारे में जैसे जानकारी जैसे ले सकते हा इं स्कीमा कने जुड़ी सकते हा। ते चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ही नहीं है बल्कि होर भी मती सारी जियाँ कौशल विकास योजना हा आयुष्मान भारत योजना हा हर एक किस्म री योजना जैसे भारत सरकार जैसे शुरू करो रे हा। तो असू इं स्कीमा रे बारे में सिर्फ ता ही पता चल सकता हा जे असें अपने आसे पासे कसकी तो पूछ ले कि रेडियो रे जरिया असें जानकारी जे इनसे ले ले कि अखबारा मा पढ़ ले। ता असें गल करते हा जागरूकता री ता जागरूकता भूना सभी तो जरूर आ। घर मा जे असे कम तो कम अक सदस्य जे असे जरूर जे असे जागरूक भूना चाहिए हा कजू के घर मा कोई भी अक सदस्य जे असे इं स्कीमा रहता है कि अपने घर रहता है जागरूक भूला ता जरूर जे असे इंदा घर जे असे दोता जो जे असे अक मोटा ते खरा जे असे असे बल्ले सकदे आ जे घर जे असे बनी सकदा हा जियां करी तुसे चांदे आ। ता प्रधानमंत्री आवास योजना रा भी लक्ष्य यही आ ते जड़े भी गरीब लोग हिन जियां मले रहने रहता है घर नहीं है जगह नहीं है तियां जो जे असे अक पक्के मकान जे असे दीना तीन पक्के मकान मुहैया करवाना। पर एता बुझी सकदा हा जे तुसे इतमा जे असे अपना आवेदन करदे हा ते आवेदन जिखने तुसे कर दिया था तेसा लिस्ट आमा हेरे गांदा हा जे तुसे इटेरे ताएं जे ऐसे ओ भी हा कि नहीं है जे तुसे इटेरे ताएं जे ऐसे ना इलिजिबल हा कि तू ये पात्रता पूरी ना कर दे हा। ता कई बारी जे ऐसे इतमा जे ऐसे तू सो जे ऐसे ना भी तुंदा फॉर्म जे ऐसे लैन दे। पर हर एक चीज़ रा असू पता ताई चलता हा जिखने असें इं स्कीमा कने जे असें जुड़ते हा ते स्कीमा कने असें जुड़ने हो तुसू ताई बलते हा कजो कि इंदा भारत जे असें इतमा 70% आबादी जे असें ग्राम में रहते हैं ते ग्राम में रहना रा मतलब हा कि सुकून वाली जगह में रहना हर एक चीज़ जे असें खरी बुना साफ सुथरी बुना। पर तियां जो जे असे ग्राई मा रहने वाले लोग का जो तियां सहूलता री कमी हा जियां सहूलता जो से तरस दहिन ते ग्रां छड़े करे जे असे शहर।

पास है जेहन से ईणा लगू रहन। ता इटेरी कमी सिर्फ अक्की तियाँ जो महसूस बुंदा शहर आ पास से ईण रे, अक ता नौकरी री तियाँ जो घाटा हुंदा जे तियाँ जो लगदा जे असु माले नौकरी नहीं है, दुआ तियाँ जो लगदा जे असु माले से सारी सहूलता नहीं है जड़ी शहरा मा हैं। ता इं जितनी भी योजना हैं यारे जरिए कोशिश यही बुंदे लगू रही हुना जे तुसो हर एक सहूलत, हर एक जिया से सहूलत तुसो मिल सका, ताकि तुसे भी जिया से ऊपर उठ सका, ते भारत जो होर भी ज़्यादा विकास करने में जिया से त्यारे भी जिया से मदद कर सका। ता ए थी इंदी आजारी गलबात चलते चलते सुन दिया कार्यक्रम रा आखिरी लोकगीत करण कुमार जी री भाकमा। ता तुसु के करना जे तें ताएं स्वस्थ रहना ते खुश रहना का, जो कि खुश रहना जिया से आजारी जड़ा ये टाइम हाँ इतना बड़ा भरी जरूरी है, जे तुसे खुश रह ले ताई जैसे तुसी रहने वाले लोग जिनसे भी खुश महसूस करते हैं, ते तिये तुंदी वजह थो ही घर में जैसे खुशी ची सकते हैं। खुशी की वजह थो जैसे असु कई सारी इदई बीमारी बुंदी हैं जितों लड़ने रे जैसे ताकत जैसे चली हिंदे आ, कजो कि देखने इंदा मन खुश बुंदा देखने असे हर एक चीज़ कने जैसे लड़ने री ताकत जैसे महसूस करते हैं। ता खुश रहा तंदुरुस्त रहा ते इन्हीं करी सुनते रहा चंबियाली कार्यक्रम हर एक सुआर है ब्रेत ते संचर है चलते चलते सुन दिया ये आखिरी लोकगीत।

पूरा ते बे निकलिया जिस दिहाड़े शिवरात्रि थी तो लोगों की भीड़ लगी गई, तो शिव जी जो देखते सौगी सौगी पांच शिवलिंग ते थी छोटे होर निकले। तो ते शिवलिंग मतलब खूब बड़ा शिवलिंग आ, ते थी पूजा कराएं, होर से पांच छोटे छोटे शिवलिंग है, ते थी मतलब जल चढ़ाएं, पूजा अर्चना कराएं, से तो तुसे जी गड्डिया पर भी चल रहे हो ते भी सूझ जाएं, सो शिव बोले ते थी ते भी दर्शन दे दें, ते थी ते भी अपना मत्था टेके गए तुसे मतलब जाई सकाएं, ते थी जो ना। तो बोला है भाई महाभारत मंजे एक भाई कथा बोला है भाई, आजकल लोग भी सुनाए थे भाई तिथि जो भाई पांडव जब वनवास समय जाए तो तिने मतलब तिथि जे से रहे, पर बोला है भाई तेस वक्त एड़ा हुआ था भाई करसोगी गाँव मंज भाई एक बड़ा भारी राक्षस आई गिरा था, तिने राक्षस क्या कित्या मतलब तेस बारह जियाँ एक ही के थी घर अंदर जैसे लुखी गया ते थी, ते सौना बारह ते कई माणू मारी देने और खाई खुई करने चली जाना, ते लोग के बोलिया भाई यहाँ था सारा ग्राउंड जैसे खत्म हो जाना सारा, क्या करिए ऐसे। तो तिने क्या बोलिया भाई एड़ा करो भाई आसा तुसा भाई राक्षसा कने विनती की भाई तू नहीं आओ, तेरे आसा घरा जो एक माणू भेज दिया करना और तू तिदी खाई ले, यहाँ था सारा ग्राउंड मुक्की जाना सारा भाई, तू तो कहीं मारी दिया करना भाई। तियाँ वही गई मतलब ठीक है बोले एड़ा कर गए बोले। फेरी जब भीम और मतलब पांडव जब ते थी आए तो तिने बोलिया भाई जैसा से बेचारी एक जनानिया रे घर रहे से बच्चा रहा था तैसा कने और से जनानिया से रोंदी लग रही थी, तिन्हों खाना भी खुआया से सब कुछ किया, तो तिने पूछा भाई माता तू की रोया करें, से बोलो भाई थी एक राग सा तेस भाई आज भाई मेरे मठेरी बारी तो मेरा बच्चा चल जाना भाई आज हुरे तेस खाई देना था, आज मेरा बच्चा बिछड़ी जाना हूँ क्या करूँ भाई है ना। पांडवे बोले अच्छा एड़ी गली, बोले माता तू नहीं रो कोई चक्कर नहीं ऐसे जाइए भैया ना, भीम चली गया ते थी, जे वे भीम गया ते थी ता से राक्षस ते चुखांदा लग गया, वो भीमे ता से इतना मारया और से खत्म करी त्या से राक्षस। ता फिर लोग जे पे ते थी आए तो तिने बड़ी भारी खुशी मनाई भई भीम भई देखो आज आसा जो भई इस ग्राम में जिन्हें आसो राक्षसा ते मुक्ति दुआई, तो तद दीते थे धूणा जे आते थी मंदरा जलीरा और आज दिन तक से जलदा लगीरा। मंदरा मंज जया एक भीमारा ढोल भी आ बोला से भेखड़ीरा बनीरा, इतना बड़ा ढोल है ना से मतलब आजकल तेता जो दो तीन जने बजाते लगे ते भी बजना से देखा, ते दसाएं ते थी मंदरा जाओ तो दसाएं और ते थी एक कणकारा दाना से 250 ग्राम मारा दाना, तो देखो जरा तेस वक्त जया कणकारा दाना एड्डा हुआ था आज 250 ग्राम मा मंजल पापू पवा सा भरना देखा है ना, तो आज भी तुसे जे मंदरा जाएंगे तो ते थी तुसा जो तिना कणकारा दाना भी दसना भी मारा से ढोर भी जखना से जे बेखड़ी कने बनीरा और से धूणा भी देखना से जे तदका बखीरा है बखीरा से कदी बंद नहीं होंदा देखो, तो ममलेश्वर महादेव जरूर जाओ और ते थी शिव जी भोले रे दर्शन जरूर पाओ। तो हुई गलबात एक बढ़िया जे लोकगीत सुनी लाएँ।

மேலா லகா மவுநகரா காந்திநகரத்தில் ஷியாம் கலி ஹோர் சாத்தி தேக்கோ இப்போ கல்பாத் கரனி பை பாயோகேஸ் லகாய் ஹோர் அப்படின் பணா ஜோ பச்சாவோ தண் பச்சானா படா பாரி ஜரூரி ஆ தேக்கோ ஜியா ஜியா அசா ஜோ பை லகா பை இஸ் தரத்தை ஆசாரா பை பேட் பௌதே பச்சி ஜானே தியா தியா அசா ஜோ பச்சானே பி சாயே சோ சோச்சாயா சி கியா பி கரோ பர் அசா ஜோ அப்படின் பண் பேட் பௌதே பச்சானே पौने जरूर देखा। बायोगैस कट्ठे आसा जो ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पौंदा देखो बिल्कुल भी डांगरे गोबरा ते ए मतलब गैस जे ये बनी जाई ईदी कट्ठे मतलब आसा जो भी टैंक टूंक बनाने पावाए से असें मतलब अजकल तो बोला भी बने बनाए भी टैंक आए जाए सो सिर्फ रोपड़े पावाए ते दी मंज आधे मतलब धरती ले आधे पाए सो अंदर रोपड़े पावाए सो फिर ती धीरे एक बखा भी ड्रम लगी रहे दूजे बखा भी ड्रम लगी रहे देखा ते तम जरा भी जी हाँ तुम डांगरे गोबरा ए तारे इं भी खाद बननी पर जे तुसे इदी जो गोबर गैस मंच मतलब गैस भी बनी जानी और खाद तितनी बनी जानी देखा है ना जी हाँ बोला भाई एक लीटर एक किलो गोबरा कन्ने सारे भाई काफ़ी सारी जी हाँ गैस बनी जाए पूरी दिहाड़ चली पावा इसे पर यह डाँ भी गोबर अस कट्ठा करना पावा तेना ड्रमा मंज जितना गोबर पाई रहा तितना पानी पाना से घोलते रहना घोलते रहना फिर तेते बाद से मतलब तीदी जो खोली कन्ने से ना बड़े बड़े टैंका में चली जाने तेथी जे इसे हवा नहीं जाती होर से तेथी जे असें गोबर सड़दा रहना तीदी ते से गैस बननी फिर इसे जे दूजे बखारे जे ड्रमा बच्चे लगाई रही वहीं तेता नालियाँ जे भाई पाइपा लगाई रही वहीं से घर तक पहुँची जाई होर से जे गैस बननी से घरों चल जानी तो और जे जे रही जाना तो गोबर वगैरह से सारा घोल घाल जे जे रही जाना से निकली जाना ते होर से खेतरा तुसे कट्ठे करी कने ते तारी खाद जे जे जहाँ मलियुडा पाए ना जहाँ मैल मूल से तो सारे पर बिल्कुल सारी उपजाऊ खाद जे से जेड़ी हुआ तेड़ी से रही जाने देखा इदी मंज मतलब जियाँ कचरा हुआ रसोईरा साठ सूट जितने भी हुआ सू भी पई जाने हो सारा गोबर भी पई जाना था घर जिखा डरांगरे जे नरे जे घरा है ना स्यों तो जरूर एता जो लगाओ ज़्यादा जगह में नहीं लगती तेरे भाई धुप्पे वाली जगह हुई जिथे गर्मी जे पौंदी हो ना तो गैस जे फिर खूब बनाई दे थी देखा तो ऐसा गैस लेड़ा जे खाना भी पूरा बनी जाना देखा गए टिच की अपने चूल्हा तेड़ा ही लगना जेड़े जे गैस चूल्हे हुआ ना तेड़ा लगना देखा इदी मंज होर तीते बाद जनानिया जो बना नहीं जाना पौना बना लकड़ियाँ नहीं कट्टनी पौनी एक तो सारे बण बचे जाने देखा है ना स्यों जे बण बचाए से आ सारे जीव जंतुआ रे घर है देखा तेथी है ना कईयां रे खान गुजार चली रहा सब कुछ चल रहा जीव जंतुआ रा तो से भी तीनों मिल जाना आ सारे जीव जंतु भी बचे जाने ऑक्सीजन जे से कितनी मिलनी देखा अब देखा हर घर रे जे एक बारह लकड़ी रा भी रोज घर ले आओ तो कितनी लकड़ियाँ लगाई बोलने जो तो वहाँ भी थोड़ी जे लेंदी आसे पर कितनी लकड़ियाँ बची जानी और कितने जे मतलब जे सुक्की साकी लकड़ी पई गिरी वहीं तीदरा तो कुछ होर हुआ पर हरे भरे डाल जे कटने ना खाना बनाने

कट्ठे बिच घर नहीं हो कुछ तो खाना बनाने कट्ठे डाल तो कट्टा है फिर तीना जो लिया हो फिर तेते फिर आ सारा देखा पर्यावरण जे ऐसे खराब हो जाए बिल्कुल है ना। जितने आ सारे डाल बूटे होंगे तितने ऐसा जो मतलब ऑक्सीजन मिलनी, जितनी ऑक्सीजन मिलनी तितना माणु जे स्वस्थ रहना। जे माणु स्वस्थ रहेंगा तो इस काम खूब करना, काम जे ज़्यादा करगा तो आ सारे देशा कट्ठे कितना अच्छा। तो देखो आजकल ऐसा जो मतलब जितना हुई सका बोलना है भी अभी पेड़ पौधे छोटे बड़े डाल बूटे जितने भी है से ओरे परे तुसे लगाते रहो ताकि आ सारा जे मतलब ना पर्यावरण जे बिल्कुल बढ़िया हुई जाओ। देखा एक तो जनाने रे आखियां नहीं खराब होनी, नहीं तो धूं खड़े कने लगी रिक बल्ली फुकरा मार दी लग रही चूल्हे जल नहीं लग्या कर दी कुछ नहीं होया करदा, फिर जो आखियां लग रही खराब होंगी फेफड़े लग रहे खराब होंगे जब जो जो बेचारी सारी दिहाड़ से रोटियां दफदी रही फिर जब कुछ वक्त बाद फिर अपना शरीर मतलब खराब हुई जा देखा सीनी लकड़ी कने किड्डा भारी धुआं हुआ सब कुछ मतलब ता और तीना जनाने ना अपने कट्ठे वक्त भी मिली जा कि झटचारे रोटी बनी जाए, नहीं तो सिर लगी रे चूल्हे बखांदे लिपदे लगी रे चलो तिदरी रोटी रहा भी अपना है स्वाद हुआ कद दिखता है तो चलो बढ़िया हुआ। पर जे भी जेड़ी गोबर गैस ही ये हानिकारक नहीं देखा है गोबरा कने बनया कर देखो है ना ये हानिकारक बिल्कुल नहीं सेहती कट्ठे भी ये बिल्कुल ठीक ही। तो एक तो सारे गोबरा कने गैस भी बनेगी मुड़ी उड्डा खाद भी बनेगी और दूजा जे आ सारे बण भी बचगे और पर्यावरण जे ऐसे बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो देखो ये तो हुई बायोगैस रे बारे में जो गलबात, जानते जानते एक बढ़िया जो लोकगीत सुनी लाए देखा।

मंडियाली कार्यक्रम अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुना। प्रस्तुत है पंगवाली कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

आकाशवाणी शिमला बेल दी 5:21 बजकर पेश है त्यों आपो मनपसंद पंगवाली बोली कार्यक्रम। पंगवाली बोली कार्यक्रम सुनने वाले सभी जनों करताप सिंह ठाकुर पंगवाई तरफा बेल दी नमस्ते। जी सुनने वाले हाजिर अखबार फिर त्यों आपको मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम घिन के त्यों सभियाने के आज के इस कार्यक्रम अंतर अखबार फिर स्वागत करते सुनने वाले जिन्हें तुम सभी पता है कार्यक्रम हफ्ते अंतर चारों सुमारे बुझते शंचरे बेलदिया 5:20 पुठा शुरू करते और 5:55 तक पंगवाड़ी बोलिया कार्यक्रम चलता आकाशवाणी जे प्राइमरी चैनल है मीडियम वेव जस होते तस जो साथे साथ आकाशवाणी FM चैनल पुट भी कार्यक्रम ही था 104.7 MHz ऐसे फ्रीक्वेंसी है साथ साथ ये कार्यक्रम त्यों DTH था मोबाइल या पुट भी आनंद नहीं सकते। कार्यक्रम में दौरान अस तुम जो देशे प्रदेशे खबर सुनाते अबल अबल घीतियारी की आवाज़ अंतर घीते सुनाते और जे भी दियर विषय बुते तस्पुट भी अस तुम जो थोड़ी थोड़ी डक बोक लाते आज का भी कुछ ऐसा इन्ना ही कार्यक्रम तुम दिया तोरा जिस अंतर ऐसा डक बोक लानी कुदरती खेती बारे और साथ ही आयुष्मान भारत स्कीम जे ऐसे भी थोड़ी गल लानी अस्ती शुरुआत करते अख बेदजन लोकगीत के फिर लाते तो डकबोक तो सुनते इस लोकगीत

जी सुनने वाले शांति बिष्ट अपने खास अंदाज अंतरस गीत लान लगो थी तू हमें पूरा से आनंद नहीं रोल गल लाते थोड़ी अगर अस आयुष्मान भारत स्कीमी बारे हालांकि अस अगर बड़ी होनी सीधी गल है तो अस तुह ये भी जरूर बताई देते कि सेहत ही जरूरी गल आस्ती है। सरकार भी सोचने लगो रही असा भी जरूरत आई और टेम इन्ना ही कि है भी अस हर घर अंतर बते कोई ना कोई दुख बीमारी बाड़ी जे कहानी आई आई ऐसा पहले कि अस बीमारियां दामने या बीमारी के बारे सोचने कनार घेले असा कोशिश करनी चाहिए कि पहले सेहत ही कनार दी थोड़े मुड़े बोलने मतलब आसता कि भाई बीमार होने के बाद दी तो सरकार कुछ असा इंतजाम करन लग रही लेकिन सेहतमंद रहने वास्ते तो असा इंतजाम करने रहे।

अगर असा सेहतमंद रहना है अपना ध्यान थाने रहा सा खीने पीने भी असा ध्यान थाने ये रहा जिसमें हर तरीके जी भी असा ध्यान थाने ये रहा कसरत भी करनी है रही असा सोच भी अपू असा सुसर थानी है रही और जे असा आराम भी पूरा करनी है रहा उंगने जे टाइम असा से भी असा तसे भी ध्यान थाना है रहा खीणा खुराक की जिखें गल करते तो तिखें सिर्फ ये सामने इतनी गल की भाई आज तो हर मैं जिस तरह से खूब खीण लगो रहा है भाई कम ही कसे नहीं रहे भाई से ब्याह रजपू जस्ते बिल्कुल ठीक गल है पेट कसरे खाली नहीं रहना लगो रो कसरे तो ना बोल सकते लेकिन ज़्यादातर मैं जस्ते से आब है भी अन्य हस्ते ग्रैं कनार खास कर सब पैंगे कनारी गल है तो तेने आज जस्ते से पेट भरीने लगो रिश्ते पर ध्यान देने वाली गल ऐड़ी भूती कि भाई सेहत है ठीक रहनी है सेहत ठीक है कि नहीं असे आसा कि हिसाब ताब का सावज है न तसे आसा हिसाब जो है नहीं हो रही कि जे आसा दी खीण जरूरी है से है अंतर पेट गेर लोड़ी और जे आसा दी जरूरी नहीं से आस ज़्यादा अगर लैन लग रहे तो से भी कोई आसा रोकना ही रहो और साथ साथ हो रही जे चाह गल कि असें भी ध्यान थाने रहा खैर मर्जी त्यों वास्ते सरकारी स्कीम तो बनाई थी रही कि अगर फिर भी का दुख बीमारी भई गया कोई हो रही किसमें कोई यानी बते बीमारी जैसे से लग ही गई तो जे आसा दी स्कीम जैसे अस गल कर लग रही आयुष्मान भारत स्कीम ऐसे इस्तेमाल तू लगभग लगभग अब ग्राएं इलाके भी और जैसे हैं मैं जानते और कार्ड भी बनाते और अगर कहीं नहीं बना रहा तो तहना भी बनाई थाना चाहिए क्योंकि औखे किखें ये घेली पता नहीं चल रहा जे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अस्ती तैसे तरफ चलने वाले जे आयुष्मान भारत स्कीम अस्ती प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम PMJAY जैसे से भारत सरकार या खास सेहत सुरक्षा स्कीम अस्ती ऐसे मकसद माड़ी तौर पर जे कमजोर तबका अस्ता पात्र वाले टब्बर अस्ते तने जे अस्ती बढ़िया जैसे सेहत सेवाएं के जैसे से सहूलियत तना देनी कस टब्बर फायदा हो सकता हर टब्बर जैसे से सालाना 5 लाख तक फायदा हो सकता तने जैसे से बिना कैश वाली सेहत कवर असंतर हती था सरकारी तठां जे सूचीबद्ध केयर बुते एन पैनल अंग्रेजी अंतर बुते आपू हिसाब जो बिल तो जने लिस्ट सरकार बनवारी बुती कि प्राइवेट हस्पताल जैसे एडी भी इलाज हो सकता तस तना तर जैसे सहूलियत है देती टबरे जे सदस्य संख्या अस्ती उम्र आए ऐसे जैसे अनिवार्य तस्तर कोई गिनती नहीं सोबत अंतर शामिल हो सकते पहले मौजूद बीमारी भी आई और तस्कियाँ जैसे तस्त से पहले दिन के कबर हती गेता एनू नहीं कि भाई कब कबर जैसे से बाद में भून आस्ता पहले भी अगर कोई बीमारी था तेना पुट भी जैसे से सहूलियत रहती थी भर्ती भून के 4 दिन पहले तठा छुट्टियाँ के 15 दिन तक जैसे से केरे खर्चे भी असंतर शामिल भूते पूरे देश अंतर जे पोर्टल जे सहूलियत हस्ती मतलब कि कसे भी सरकार सरकारी तठा जे सरकार जे जना बते सूची बना रही लिस्ट बना रही तेना जे प्राइवेट हस्पताल अंतर इलाज संभव अस्ता मतलब बोलने अस्ता कि भाई अगर आज असा सरकारी अस्पताल अंतर के रही तो हो रहे जे सरकारी तरफ जे चुनी जे हस्पताल अस्ते प्राइवेट दोबारा तैड़ी भी अगर इलाज कराने घेड़े तो तैड़ी भी जारी रहती स्कीम पात्र जस्ते से स्कीमी असंतर 2011 जे जनगणना भोरी तैसे आधार पुट चुनी रस्ते तथा ऐसे अलावा जे अलग अलग टेम पुट असंतर जे बदलाव ही था तैसे तना बस जस्ते से 70 साल तथा तस्के जे ज़्यादा उम्र वाले से मैं भी अथंतर शामिल हस्ते कहने के पता लगे कि हैं नौ अथंतर है कि नहीं आयुष्मान कार्ड वाला पोर्टल है तथा पता कर सकते आयुष्मान ऐप अस्ता तैसे माध्यम जो पता कर सकते हेल्पलाइन 8455555 अस्ता इस पुट भी जानकारी नहीं सकते तो सुनने वाले तुआ खैर अणी बारे पता भी अगर कसे नहीं पता तो जे जानकारी थे तो आपस में आखि बताना चाहिए बंटना चाहिए कोई अना टब्बर बोल जिस बेचारे सचमुच ना पता बोल तो तैसा बताना अपना धर्म समझना चाहिए और तस भी सरकार इस स्कीम में फायदा है तेर लोड़ी थोड़ी जनी अस कुदरती जे खेती बाड़ी ऐसे बारे भी गल लानी अस्सी लेकिन इसके पहले जे तुम्हारी गीत में थेरू चुनी के तशुणा पहले फिलहाल तुम्हें डकबोक

जी सुनने वाले हो सोमदत्त बट्टू ते इंद्रपाल छाबड़े आवाज अंतर है बेदेजन लोक गीत तुआ सुनू। अगर बढ़ते डक वोक लाते थोड़ा कुदरती तरीक़े जो खेती बाड़ी बारे सुनने वाले हैं पुरखी के टेम किना जनी अस खेती बाड़ी करते थे संतर आसा आज के टेम जनी जनी जे बदलाव ये रे है ना जनी जनी तकलीफ बदली रही दवाई के छिड़काव वगैरह जे करते बल्कि पहले ना करते थे अपने जे भी देशी तरीक़े जो गोबर छाड़ी के देशी खाद छाड़ी के जे अस खेती बाड़ी करते थे ऐजे कुदरती तरीके जो खेती बाड़ी बाड़े जे कम बच्च गणित है बोते कुदरती जिमी भोल कुदरती फसल बढ़िया खीण तो बढ़िया सेहत और बढ़िया समाज भी हो सकता है।

सुन्ने वालियो, हालांकि तुम्हें कुदरती खेती बाड़ी बारे जैसे से आ सकें ज़्यादा जानकारी है तुम्हें, किसकी तुम खेती बाड़ी कम कन लगो रे। पर याद दीवाणु बार बार अनहीं कना एसकनार जैसे से बते इशारे कने, और हर महनु पता लगे कि कुदरती खेती बाड़ी कनार जस्त से आसा आबे मुंडनू ही रु। अगर अस अपनी तठा अपने ईणे वाली जे पीढ़ी से तय तसे ध्यान थैना है तो एस कनार जस्त से कम करना ही रु। जनी अस पहले गल होती कि भाई आज का टाइम इन्ना ही है रहा कि कसरे भी जस्त से आज बते एनु नहीं कोई भी टबर अंतर कोई भी इलाका इन्ना नहीं रहोर जड़ी की जस्त से पेट भरी खीण नहीं आती लगो रु। किसकी सरकारी तौर पर जे आ सकें खीणे जे सामग्री अस्ती से पूछती रहती आटा चौर दाड़े है ना घ्यू तेल वगैरह जे भी तो मन कानी जे कुड़ी न कुड़ी मैणो आवे बल्ले बल्ले छड़ी देन लोरी। और ऐसे जे अस्ते से नुकसान अस सामने भी कहन लगो रे कि भई अगर अस जे आज के तौर तरीक़े जो जे खेती बाड़ी भून लगो रही जिस अंतर कई किस्में दवाई छिड़कीण लगो रही कई किस्में जे रासायनिक वाली जे है ना वो ते खाद जस्ती से छिड़कीण लगो रही ए किस्में जस्ते से बल्ले बल्ले जे आसा जे सेहती लगो रहा। अक टाइम तो इन्हें थियाँ जिखे बोते देश अंतर पेट भरन दी भी जे अनाज न होती तिखें फैसला सही थियाँ गल थियाँ ता खालक गल अस्ती लेकिन तिखें मजबूरी समझ के इन्हें फैसला निया कि भाई इन्हें जे बीज अस्ते से आसे इस्तेमाल करने जैसे बेली जे ज़्यादा पैदावार भी और ज़्यादा मैणु के पेट भरी सके। और इन्हें जे दवाई के यानी कीड़े मार दवाई के इस्तेमाल भून लगा अक के बाद अक पता नहीं कतरे किस्में दवाई के इस्तेमाल भून लगा कि भाई जे संतर कीड़े लगते नुकसान जे भूता से ना ल्योड़ी भोर और ज़्यादा बढ़िया फसल ल्योड़ी भोरी बिल्कुल इन्हें भून लगो और हर मैणु पेट भरीने लायक जस्त से अनाज जस्त से आज आसा हतीने लगो रू। लेकिन ऐसे जे नुकसान भूण लग रहे तसे बारे भी लगभग हर मैणु जानकारी अस्ते अगर नहीं तो तसे से नुकसान जैसे भुगतन लगो रहा है। इस वास्ते एकदम कोई एना बड़ा बते फैसला भी ना करी तक भई एकदम बंद करे और एकदम जस्त से हरी किनार दी मुड़े तो ए मैणु समझी पुट भी छड़ीन लगो रो और बल्ले बल्ले सरकार भी इस पुट कदम उठाने लगो रही कि अस जस्त से वापस जे पहले कुदरती अस दो तौर उठियो जे तौर तरीके थे तसे किनार अस मुड़ नहीं हेरू जे कुदरती तरीके जो अस आपू बाग जस्त से बाने काम करते तठा फसल नहते तस खाद भी जस्ते से आपू लछी गोरू के मल छटे थी या तनी बेले बनोरो जे खाद अस्ती से इस्तेमाल भूती थी और होरे जे कोई अंस बेरी जे आज कने जे तौर तरीके अस्ते हैं बेजू भी देशी बूते था और हैं जे तौर तरीके भी देशी बूते था और हैं जे खाद पानी वगैरह से भी तठनी साफ सुथरा बूते था तो एसकनार आसा मुड़नी हो अगर आसा जस्ते से जे बड़ी गंभीर शब्द जो इस्तेमाल करी था कि भाई बड़ी यानी बीमारी आज भूण लग रही जे ज़्यादातर कुछ ना कुछ जैसे से है जे हैं खीणे पीने तौर तरीके आस्ते और जिंदगी जीने जे तौर तरीके आस्ते एनी भी लीजिए पैदा भूण लग रही और ऐसे इलाज जैसे से आराम जो नहीं भूण लगो और ज़्यादातर मैं आना जैसे से जिंदगी गुवाणी रही। तो इसके पहले कि अस तरह दी पूजे या सरकारी हो रही जन स्कीम ही पहले गल उठी अस किनार गए अस कोई सेहत ही किनार असा सोचना ही रहो अगर आज ना सोचे तो कहीं सोचे अस आसान तरीके अस अगर अपनान लगो रहे और मुश्किल जे कम आस्ते तस छाड़ी देन लगो रहे तो ऐजे आस्ते से अस खतरे अंतर करन लगो रही। खैर मौके गल थी इन्हें वाले टाइम अंतर तुम्हें जरूर फिर हो रही इस साहब जो इस गल आते देशे प्रदेशे कुछ खास खास खबर है तुम्हें सुनाते सुबह के पहली खबर अस्ती के पंत बने हिमाचल नवे मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा बाले वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंते शिमले अंतर हिमाचल प्रदेशे कार्यकारी कम संभालने वाले सचिव मुख्य सचिव तौर पर जस्ते से जिम्मेवारी संभाली। साल 1993 बैचे उत्तराखंड रहने वाले कमलेश कुमार पंते कई प्रशासनिक तथा बाला जे कम अस्ता से केरत से खासा अनुभव अस्ता पैंगे रेजिडेंट कमिश्नर तौर पर भी अना काम केरू पदभार ग्रहण करने बाद है ना अपनी जे पहल अस्ती तसे बारे बोलू कि हिमाचल सरकारी कल्याणकारी नीति के फायदा आखिरी महीनों तक पुजाने इन्हें प्रमुख जिम्मेवारी अस्ती के पंते बोलू कि सरकारी स्कीमें मजबूत ढंग जो पूरेने वास्ते प्रशासनिक तथा तंत्र जस्त से ज़्यादा जवाबदेह अस्त से बढ़ाई नस्ता एना अगर विश्वास भी दिवा कि भरोसा दिवा कि हिमाचल जे तरक्की वास्ते तथा मैणु के फायदे वास्ते जुड़े जे मकसद अस्ते बढ़िया ढंग जो अस्ते से पूरे अस्ते आ खबर अस्ती कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैणु गर्मी अंतर जैसे टेम सावधानी बरतने तथा अपनी सेहती खास ध्यान देने बलोरू और आकाशवाणी पुट मन बात

जी सुनने वाले प्रेम सिंह तो सैथी के आवाज़ अंतर सभ्य जन लोकगीत जो साथ पंगवाड़ी कार्यक्रम में टाइम भूल लग गया मूँ करताप सिंह ठाकुर पंगवा दी इजाजत तुआ से भिया जमेली नमस्ते।

बंगाली कार्यक्रम अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुना। आइए सुनते हैं लोकगीत। पहला लोकगीत आइए सुनते हैं यशवंत सिंह आज़ाद की आवाज़ में।

0: टीकम राम शर्मा की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों के दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी HP रेडी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना इस वर्ष जनवरी से नवंबर 2030 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले 3 वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने पर भी बल दिया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया NCC माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन दल को कुल्लू की माउंट देव टिब्बा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर से चुने गए 24 NCC कैडेट्स का ये दल 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए पीर पंजाल रेंज जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना मजबूत करते हैं। कविंदर गुप्ता ने सभी कैडेट्स को सुरक्षित और सफल आरोहण की शुभकामनाएं भी दीं।
8: पूरा विश्वास है कि ये कैडेट जब इस सारे ट्रेनिंग से गुजरेंगे तो आने वाले समय में ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक एसेट बने, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो मेहनत, इनकी जो लगन, जो इनकी तपस्या रहेगी, जो देशभक्ति की भावना, वो अपने आप में एक जो विकसित भारत 2047 का हमारा सपना है उसको भी आगे बढ़ाएगी।
7: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 4 में से 3 नगर निगमों में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने माना कि इन चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके कारणों पर पार्टी स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पालमपुर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं,
9: चुनाव खास करके लोकल फैक्टर्स के ऊपर लड़े जाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं जो जनादेश मिला है वो वहाँ के लोगों को मिला है, स्थानीय निकाय के लोगों को मिला है, स्थानीय प्रधानों को मिला है, उप प्रधानों को मिला है, BDC मेंबर्स को मिला है, जिला परिषद मेंबर्स को मिला है। उस पर हम मिलकर आने वाले समय में कार्य करेंगे और हर जगहों पर जहाँ पे समितियां बननी है, जहाँ पे जिला परिषद बनना है, उस पर पूरा प्रयास भी किया जाएगा कमेटीज बनाने का, और मिलकर हम फिर आगे कार्य आने वाले समय में करेंगे।
7: प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों ने

कांग्रेस सरकार की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब बौखलाहट में जनता को गुमराह करने के लिए निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। राकेश जम्वाल ने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ लगातार बढ़ रहा है और 3 नगर निगमों में जनता ने कांग्रेस का राजनीतिक बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हिमाचल की सत्ता का सेमीफाइनल था, जिसे भाजपा ने निर्णायक रूप से जीत लिया है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को अपना पूर्ण समर्थन देगी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस ने व्यापक जन समर्थन प्राप्त कर अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति को पुनः प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 54 शहरी निकायों में से 32 में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों की जीत हुई है, जिससे स्पष्ट है कि जनता कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और विकासात्मक दृष्टिकोण पर पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रही है। विनय कुमार ने कहा कि नगर निगम चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस

0: किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 54 शहरी निकायों में से 32 में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों की जीत हुई है, जिससे स्पष्ट है कि जनता कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और विकासात्मक दृष्टिकोण पर पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रही है। विनय कुमार ने कहा कि नगर निगम चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस संगठन द्वारा विश्लेषण किया जाएगा, ताकि भविष्य में संगठनात्मक स्तर पर और अधिक मजबूती लाई जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू रूप आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: पापा
2: लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं महास्वी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के मीरा वर्मा रा नमस्कार। उम्मीद करूँ मारे श्रोता मारे हिमाचली कार्यक्रम रा आनंद लेने लग रहे हले और सुनने लग रहे हले मारे कार्यक्रम। तो आज कार्यक्रम दी मेरे तुसो सही जो बातचीत करनी इसी बातचीत करनी आज असो विश्व दुग्ध दिवस इतरे बारे दी बात करनी ते थुलावा बात करनी मारे सर्व शिक्षा अभियान और बारे दी और देखो खबरसार और लोकगीत तो जी उने ही उने। तो सभी तो पहले बात कर लो मैं विश्व दुग्ध दिवस और बारे दी। विश्व दुग्ध दिवस सिर्फ एक उत्सव ही नहीं है सो बल्कि एक ईशा आंदोलन है सो जो दूधों के एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत रूपों दे उजागर करो और अरबों लोगों का पोषण करो। दूध आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करो जो हड्डियों रे स्वास्थ्य विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाओ। जनिसाई ए वयस्कों और बच्चों दोनों रीते ही के जरूरी हो जाओ। हर साल 1 जून के मनाया जाने वाला विश्व दुग्ध दिवस देशों संगठनों और समुदायों के एकजुट करो ताकि सतत कृषि आर्थिक विकास और वैश्विक स्वास्थ्य पाए दुग्ध क्षेत्रों के प्रभावों के पहचाना और बढ़ाया जा सको। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्रों रे खाद्य और कृषि संगठनों द्वारा वैश्विक भोजनों रे रूपों दे दूधों रे महत्व के पहचानने री ते स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस असो। ए साल 2001 हर साल 1 जून के मनाया जाओ। इस दिवस रा उद्देश्य डेयरी क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों पाए ध्यान आकर्षित करने रा मौका प्रदान करना असो। दुग्ध दिवस आजीविका रे प्रमुख स्रोतों रे रूपों दे दूधों रे महत्व के रेखांकित करने री ते के मनाया जाओ। वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन हर साल 2% की दर साथी बढ़ने लगी रहा पर भारतों दे इथरी बढ़ोतरी दर 5.7% असो आज दुनिया रा 1/4 दूध उत्पादन भारत वर्षों दे हो। देशों दे सभी तो ज़्यादा दूध उत्पादन गुजरात राज्य दे हो। दूध एक स्वस्थ और संतुलित आहार

सोनी सोनी शिमले री सड़का जी दे तो अजी वंदना पंवर री आवाज तो उसे बहुत बढ़िया लोग गीत सुना। बात कर लेनी ये हमारे सर्व शिक्षा अभियान रे बारे दी। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकारों द्वारा शुरू की गई इसी योजना सो जनी रा लक्ष्य है देश और प्राइमरी स्कूलों रे ढांचे के मजबूत बनावना सो। देश और हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी सको और अपने जीवनों रा विकास करी सको इस योजना रे कई उद्देश्य सो जिसे कि बालक बालिका रा अंतर समाप्त करना, देश और हर गांव शहरों दे प्राथमिक स्कूल खोलना और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें स्कूलों री वर्दी देना, शिक्षकों रा चयन करना, तीनों के लगातार प्रशिक्षण देंदे रहना, स्कूलों दे अतिरिक्त कक्षा रा निर्माण करना, पेयजल और प्रसाधनों री व्यवस्था करना। ये योजना 2002-2001 के केंद्रों दे अटल बिहारी वाजपेयी सरकारे शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य देश और हर बच्चे के शिक्षा देना सो। प्राथमिक शिक्षा के बढ़ावा देने री तई भारत सरकारे ग्रामीण बच्चों री तई 1 किलोमीटर की दूरी दे प्राथमिक स्कूल खोले और 3 किलोमीटर की दूरी दे उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 1-2-8 तई री सुविधाएं दी असो। जनी सही अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों रे बच्चे भी स्कूलों के जाई सको। भारतों दे प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर था। समाज और उच्च वर्गों रे लोग अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूलों दे भेजी रो शिक्षा दिलाओ थे, परंतु गरीब वर्ग आगे बच्चों के पढ़ाने रीते जरूरतों रे हिसाबों सही धन नहीं था। इत रीते सरकार ये योजना शुरू की। आज और वक्तों देशों दे रे सभी प्राथमिक स्कूलों दे मुफ्त शिक्षा दी जाओ। इतरे साथी बच्चों के छात्रवृत्ति मुफ्त किताबें स्कूल रिबर्दी बैग जूते जी सभी जरूरी चीज़ें मुफ्त प्रदान की जाओ। इस योजना साई भारतों री प्राथमिक शिक्षा दे बहुत सुधार हुआ और इस योजना ने उद्देश्य रे बारे दे जे बात करनी तो 2003 के सभी बच्चे स्कूलों के जाने लगे और 2007 के प्राथमिक शिक्षा रा 5 साल पूरा करना और 2010 के स्कूली शिक्षा

जरा 8 साल पूरा करना। प्राइमरी स्कूलों रीति के संतोषजनक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। प्राथमिक स्कूलों और जूनियर स्कूलों दे सामाजिक अंतर और लिंग भेदभावों के समाप्त करना। राज्यों री भागीदारी साई 6 से 14 सालों तीन रे बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। सर्व शिक्षा अभियानों रे अंतर्गत देश और सभी प्राइमरी स्कूलों दे अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सको। एथेरी तई शिक्षकों रा प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है सो। एथेरे साथ ही लगातार प्राथमिक शिक्षकों के कई तरह रे प्रशिक्षण दिए जाओ जनी सही से बच्चों के अच्छी तरह सही पढ़ाई सको। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर इथ्यो प्राथमिक स्कूलों री तई पाठ्य पुस्तकें बांटी जाओ। इत सही वर्दी जूते और दूजी चीज़ें भी बांटी जाओ। सर्व शिक्षा अभियानों के अंतर्गत दी जाने लगे रही सतत मूल्यांकन निगरानी पर्यवेक्षण किया जाओ जनी सही बच्चों के अच्छी शिक्षा मिलो। अनुसंधान और मूल्यांकनों री तई हर स्कूलों के 1500 रुपये री धनराशि दी जाओ। महिला साक्षरता पाए विशेष निगरानी की जाओ। इत सही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों रे बच्चों री शिक्षा पाए विशेष निगरानी की जाओ। बच्चों के पोस्टर चार्ट स्केच पेन और दूजी वस्तुएं दी जाओ। इस परियोजना री तई हरेक स्कूलों के 2000 रुपये रा अनुदान दिया जाओ। जनी सही पुस्तकालय स्कूलों रा सौंदर्यकरण मरम्मत रा काम फर्नीचर संगीत वाद्य यंत्र और दूजे खर्चों पाए धनराशि खर्च की जाओ। भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियानों रे अंतर्गत योग शिक्षा के भी शामिल किया सौ। एथरी तई कई प्रकारों री योजनाएं चलाई जाने लगी रही। भारतों दे सर्व शिक्षा अभियानों रे कारण ही शिक्षा रे क्षेत्रों के बढ़ावा मिला और आज हमें देखने लगी रहे जे लड़का हो या लड़की सभी स्कूल और कॉलेजों दे जाइरो शिक्षा ग्रहण करने लगी रहे। तो जी ये तो थी बातचीत सर्व शिक्षा अभियानों रे बारे दी। ये सुनो तुसे ये लोकगीत।

पहाड़ा रा नज़ारा बड़ा प्यारा लगदा। तो अजी शीला कलसी री आवाज़ों दा तुसे ये लोग गीत सुना। ए बारिया सो आज की खबर सारो री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखवे प्रदेश और सभी लोगों के जनगणना कामों दे बड़ी चढ़ी रो भाग लेने रा आग्रह किया सो। तिने बताया जे प्रदेशों दे जनगणना दो चरणों दे की जानी। पहला चरण 16 जून दो 15 जुलाई रे बीचे चलना। इस दौरान मकान सूचीकरण, मकान गणना और जनसंख्या री गणना की जानी। मुख्यमंत्री ने बताया जे आज 1 जून दो 15 जून ते ही लोग स्वगणना पोर्टलों पाए जाई रो अपनी जानकारी दर्ज करवाई सको। तीने लोगों से ही स्वगणना विकल्पों रो ज़्यादा तो ज़्यादा उपयोग करने रा आह्वान किया सो। सुखविंदर सिंह सुखवे बोला जे जनगणना रा दूजा चरण अगले साल 9 फरवरी दो 28 फरवरी ते ही चलाया जाना। जबकि प्रदेश और बर्फबारी वाले क्षेत्रों दे जनगणना रे कामों रा दूजा चरण 11 सितंबर दो 30 सितंबर ते ही के होना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रे 6 साल पूरे हो गया सो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की तारीफ करते हुए बोला जे पीएम स्वनिधि ए बिना गारंटी रे ऋण वित्तीय समावेशन और विकास और नए मौके खोली रो लाखों रेड़ी पटरी वालों रे जीवन स्तरों दे सुधार किया सो। सोशल मीडिया पोस्टों दे प्रधानमंत्री बोला जे ये योजना विश्वास सम्मान और सशक्तिकरणों पर आधारित सो। साल 2020 दे ये योजना शुरू होने के बाद ए बुतई के 1,12,00,000 तो ज़्यादा ऋण दिते गए आसो। भारतीय प्रशासनिक सेवा रे वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंते शिमला दे हिमाचल प्रदेश और कार्यकारी मुख्य सचिव रे रूप दे पदभार संभाली लुआ। वर्ष 1993 बैच और उत्तराखंड मूलों रे कमलेश कुमार पंत आगे प्रशासनिक कामों लंबा अनुभव रुआ आसो। पदभार ग्रहण करने के बाद तीने अपनी प्राथमिकताओं के स्पष्ट करते हुए बोला जे प्रदेश सरकारों री जन कल्याणकारी नीतियों रा लाभ आखिरी व्यक्ति तीन के पहुंचाना तीनों री प्रमुख जिम्मेदारी होनी। के पंते बोला जे सरकारों री योजनाओं के प्रभावी ढंग साथ ही लागू करने री तई प्रशासनिक तंत्रों के ज़्यादा मजबूत और जवाबदेह बनाया जाना। तीने भरोसा जताया जे सामूहिक कोशिशों साथ ही प्रदेश और विकास और जनहितों साई जुड़े लक्ष्यों के प्रभावी ढंगों साथी हासिल किया जा सकना। राज्य सरकारों द्वारा हिमाचलों के चिट्टा मुक्त बनाने की एंटी चिट्टा अभियान

रितेंद्र ठाकुर होरें गाए लोकगीतों सही मारे कार्यक्रम वक्त गुआ हुई मुलाकात होली आने वाले कल 24:50 पाएं ताऊ तई के इजाजत दियो सभी सुनने वाले के राम राम।

मीडियम वेव और एफ एम बैंड 104.7 मेगाहर्ट्ज़ की मारो जो आकाशवाणी शिमला सन की 100:35 और 58 सेकेंड वक्त हुई शुरू तो मैं आप लोग कुल्लवी कार्यक्रम।

सभी का पहले कार्यक्रम शुरू नारे सभी श्रोता ले डॉक्टर सुभाष मोहन स्नेही तरफे ना नमस्कार तेरा आज के यो कार्यक्रम में शुरुआत मरा सभी का पहले एक शुभली लोक स्तुति साथी कौन लाए दिया मारे आज के कलाकार यो कार्यक्रम में दिया टिंकू तेले सभी का पहले टिंकू देवी आवाज़ ना या शुभली लोक स्तुति साथ साथी आप लोग जाना हमारा देशी कार्यक्रम चला था ये तो पूरा मजा।

अपने देशी कार्यक्रम थारे सभी का पहले शुभली लोकस्तुति मजल भावा रूपिए कहने रिवाज थे मारे कहने मिलने जुड़ने तौर तरीके थे और जनी मारी दंत कथाएं बोली दिया तो देव और देवते साथी विजय जुड़ी दिया ता आज के वक्त दे भी हमें भावा रूपियो गीत इति खातिर ही गाई की भाई खेल कूदो जिंदगी दी बड़ भारी महत्व रौ दुआ पुराने वक्त और भी आम तमाम जितने मारे लोग मानू बिठली होते हैं तो सब ते वक्त दे खेल कूद दे भी सह रुचि डाते हैं। एक खुशहाल और एक सशक्त समाज है जो एक विशेष पहचान रहा जिदे समाज आत्मनिर्भर हुआ कोई दबाव ना हुआ ते उस समाज दे लोग हर नई चीज़ों फायदा लिया चाहे सो खेल कूद हो चाहे सो शिक्षा दीक्षा हुआ चाहे कोई अपने तिने व्यक्तिगत तिनों विकास का जुड़ी दी गल बात हुआ तेणु ही मारे इन कार्यक्रम दे अक्सर ये नल मेड़ा कि आज जन हमारो भारतवर्ष 15 अगस्त

संताड़ी बहादुरी भी जो आज़ाद हुआ तो ये वक्त दे हमारे कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी, परंतु आज के वक्त दे हमारे लोग क्रिकेट क्षेत्र दे आगो बोल रहे थे, खेल खिलाड़ी क्षेत्र दे आगो लगे बोल रहे, पढ़ाई लिखाई क्षेत्र दे आगो लगे बोल रहे। और हालांकि जने मारे रेडियो जे सब का बड़ी सुविधा मारे देश दे मौजूदा रेडियो टेलीविज़न इतने सही होगा कि हमें रंग बिरंगी मतलब कि अलग अलग तरीके जानकारी अपने देश दे मुहैया कर दे लागे दिया और हमें आत्मनिर्भर है या जनो मारो दिल कर तय वो काम हमें कर दे लागे दिया। तो जो एक आज़ाद देशी पहचान हुआ और जो जो देश आज़ाद हुआ तेदी हमेशा तरक्की का जुड़े दे और नई सोची का जुड़े दे काम लोग करा। तो आज के दिहाड़े गल एक और भी विशेष गल दिहाड़े हमें बुझ कि आज एक जून आ जेठ महीना जो चालो दो तो एक ही जून है सभी का बड़ी विशेषता जो कि एक जून आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर गई एक मातृपितृ जने मारे माँ बाप आमा बाप हुआ मातृपितृ दिवस और विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाने प्रावधान ढाव दुआ। वैश्विक मातृपितृ दिवस संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र ये एक घोषित एक दिन परिवार सारे सदस्य प्रति आमा बाप निस्वार्थ प्रतिबद्धता और बच्चे परवरिश दी ने आजीवन जन ने बलिदान दीन दवा यदि खातिर अपने आमा बापू आज के दिहाड़े सम्मानित भी करा। ये दिहाड़े मनाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक विशेष पहचान बढ़ दी और तेती खातिर ही जो एक विश्व स्तर गई जो मनाणो ला दुआ। और साथ साथ ही विश्व दुग्ध दिवस दूध बारे श्वेत क्रांति जने हमें गल करी तो मारे खाद्य पदार्थ पीणीय पदार्थ दुग्ध दिवस खाद्य और कृषि संगठन का इन्हें सहयोग के जो शुरू किए दुआ। और जो दिहाड़ो वैश्विक स्तर गई डेयरी जन मारे दूध क्षेत्र डेयरी फार्म बने दिया क्षेत्र महत्व उजागर करा और इतने के फायदे जने होंदे लगते आज के वक्त दे और दूध और दुग्ध उत्पाद फायदे बारे दे भी आज के दिहाड़े दे आम तमाम मनुविटली लोग जानकारी दिया और जानकारी देने जो दिहाड़ो निश्चित किए दुआ। संयुक्त राष्ट्र और जन मारे विश्व दुग्ध दिवस आधिकारिक वेबसाइट है गई नया इना आयोज के बारे दे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें तो मैं हासिल कर सको क्योंकि आज के वक्त में हम आगे अच्छे फोन आ स्मार्टफोन जुले बोली इतने सहयोग कि हमें हर जानकारी वक्ता वक्ता दे हासिल कर सकें। आज के जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस वैश्विक माता जो खास खास दयाड़ो जो वैश्विक जो माता पिता दिवस जो मनाण ला दो इतने अलावा हमारे देश के आज राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पंचांग के मुताबिक जेठ महीनों भी चालो दो। तो मेरे गल पहले ही की थी कि भाई जेठ महीने जो दौरा और इन दिहाड़े दे कुछ नए कार्यक्रम भी हमारे देशा प्रदेश दे आयोजित होते लगे थे, परंतु आज के कार्यक्रम दे मारे जने मारे मातृ पितृ दिवस के बारे की गल की ता इतने सही होगा कि हमें यह गल अगर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाई जने मारे परिवार दे मारे बड़े बुजुर्ग हुआ तीन बारे दे हमें सोचना कहण कि हमें तीन बारे दे सोच सकी इतने बारे दे संस्कार देने बचपना कई माँ बाप जो आमा बाप जो जिम्मेवारी हुआ जे परिवार दे भाव से और तो तीन ले पोतो कि जो मेरे दादा जो मेरे दादिया जो मेरे बुआ जो मेरे अंकल आ चाचा एने सब जितने मारे रिश्ते नाते हो हमारे समाज दे बने दे इन सभी मूल्य बारे दे परिवारिक मूल्य बारे दे पोतो आज के उद्याय दे हमले लागा जन की इति खातिर जन हमें अपने जो मूल्य हमारे भूलने विसर दे हम लगे दे हमें दिहाड़ दिहाड़ कि भी जने मारे पुराने रिश्ते नाते थे इधर का दूर रहे हमें अपने बाल बच्चे परवरिश शहर दे नया कर दे लग दिया जिसकी वजह से हमें एना पोतब ना रहो कि भाई मारो रिश्तेदार कौन और एक ही दूजे प्रति मारे कहने जिम्मेवारी रो कण के कहने सुख दुख दे हमें एक ही दूजे रिश्तेदारी नातेदारी गलबात कर सकी। संस्कार और पारिवारिक मूल्य इत सभी का ज़्यादा अहम भूमिका निभावा बच्चे कहना खोजना जरूरी है कि पारिवारिक मूल्य और संस्कार कहण के होने कहने होने चाहिए जो बच्चे अपने माता पिता दादा दादी से प्यार के रौंदी बिरा हे तीन ले नल मेला कि तीने सोच हमेशा परिवार जोड़ने ही रोआ एने बच्चे के भी अपने मामा बापू केले देना छाड़ाए थी। और दूजी गल मार कि भावनात्मक जुड़ाव का गल जो जोड़ी दिया कि बच्चे

से हमेशा संवाद तिनसे गलबात करने संवाद बढ़ाने बढ़ाने हम से ही जे भी मौकम तमले तमें तिना तिने सुख दे दुख दे शामिल रहने तो तिना भी बड़े होया थारे बुढ़ापे दे थारे दोस्त सारे रूप दे दोस्त सहित ना सारे तमले देना। और इस साथ ही की वित्तीय सुरक्षा भी एक अहम भूमिका निभावा। हालांकि बच्चे ही बुढ़ापे दे सभी का बड़ी भावनात्मक ढाल हुआ पर माता पिता ले आपू भी अपनी रिटायरमेंट और पेंशन योजना बनानी जरूरी है ताकि से बच्चे गई आर्थिक बोझ ना बोना। क्योंकि तुम्हें पता है कि बच्चे गई अपने छोटू छोटी गए जो परिवार बूढ़े बुजुर्ग निर्भर रहा तो तीन देखभाल तितरी अच्छे तरीके का ना जने कोई सक्षम बूढ़े बुजुर्ग घर दे रोने वाले हुआ। और बच्चे से सिर्फ रोना ही काफ़ी नहीं थी बल्कि तिना से गलबात करने भी बहुत ज़रूरी रहा। तिना से गलबात करने से ही तिना समझाने से ही और तिनाले सुरक्षित माहौल हम देने से ही जो हमारे नैतिक जिम्मेवारी मतलब और तिना एहसास होना चाहिए वक्त वक्त कि बच्चे होर के छोटे मोटे जने फैसले हुआ घर दे जिम्मेवारी कसे जुड़े दे कोई भी अड़ो काम हो छोटा मोटा घर दे परिवार दे दादाजी ले चाय देना पानी देना जब भी छोटे छोटे संस्कार का जुड़ी दी जिम्मेवारी का जुड़ी दी गल बातें हुआ इतने सही हो कि हमें अपने बुढ़ापे दे तो हमारे बड़े बुजुर्ग तीनों सहारे रूप दे हमें अहम भूमिका निभा सकी। तो हम सब ये जो नैतिक जिम्मेवारी है कि हम मिली जुलिया अपना हम समाज एक शुभलो और संस्कारिक समाज बनाओ तो बड़े बुजुर्ग को सम्मान करना बड़ो ही जरूरी है। जेव घर दे बुजुर्ग आज के वक्त दे मौजूद आ तो त्यो घर दे तीनों दरवाजे त्यो घर दरवाजे हमेशा खुले आ और जेव घर दे बुजुर्ग नहीं थी त्यो घर दे शाणे शांगड़ू लागे दिया और जिती वजह के आज के वक्त दे त्यो घर पतो करना भी बड़ा मुश्किल हो कि वो घर मालिक कौन आ। तेरा कार्यक्रम दे मारे गलबात सिलसिला लगातार जाहिर होना तलिया कार्यक्रम दे एक होर शोभली लोक स्तुति मजो मारे कलाकार रामदास हरी ने संगी साथी।

तैयार जी जति शुभली लोकस्तुति रामदास और इन्हें संगीत साथी आवाज दी ये साथी मारे आज की नवी ताजबी लाणी आज के कार्यक्रम दे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू जी गल की कि प्राकृतिक आपदा आपदे जुण बल दी घटने हर वर्ष हेरने ले मैडी लग दिया ये तक उत्पन्न गंभीर जितने भी खतरे आ ये थे मद्देनजर दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम और प्रतिरोधी अधोसंरचने निर्माण दिशा दे काम कर दे लागे दिया तिने गल की कि एक क्रम दे सरकार 2688 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी एचपी रेडी परियोजना शुरू एक के दिया यह योजना मुख्य उद्देश्य आपदा जो आदि लगे आपदा प्रतिरोधक क्षमता बनाने मुख्यमंत्री जी गल की कि जो परियोजना एश की वर्ष जनवरी का नवंबर 2030 तई सारणी और तिने गल की कि ग्लोबल वार्मिंग ये वजह के उत्पन्न जितनी भी परिस्थितियाँ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सभी का ज्यादा तक है प्रभावित हुआ तो और प्रदेश दे प्राकृतिक आपदे प्रति सभी का ज्यादा जो प्रदेश संवेदनशील बना दो पछले 14 वर्ष शुरू आई दी प्राकृतिक जितनी भी आपदे आ इतने मद्देनजर मुख्यमंत्री जी राहत केंद्रित शासन न का प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन और बढ़ने गई तिने बल दिनों अगले हम आगे खबर आए देखिए प्रदेश दुण मारे राज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी तिने आज लोकभवन शिमले ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेरिंग और एक्सपीडिशन दल कुल्लुए माउंट देव टिबे ले हरी झंडी तिन्हें खोजे और ती दल से तिने आज रवाना किए पूरे देश का चुने 24 एनसीसी कैडेट्स एवं दल दे 6001 मीटर ऊंची चोटी फतेह करने तई पीर पंजाल रेंज गई इन्हें नाणो पीर पंजाल जो रेंज आ एवं मौके की राज्यपाल जी गल की एने अभियान युवा वर्ग ले साहस अनुशासन और राष्ट्र प्रेम भावना तिने जहन दे मजबूत करा कविंद्र गुप्ता जी सभी जितने भी कैडेट थे सुरक्षित और सफल आरोहणे तिने तिनले शुभकामनाएं दीनी तेरा जत मारे आज की नई ताजी कार्यक्रम दे हम गल करने कि आज के वक्त दे मारे देश सरकार जन मारो देश भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 का आज़ाद हुआ तथा बाद मारे देश दे एवं देशे तरक्की खातिर मारे देश जो कल्याणकारी सरकार आ जो वक्त वक्त के नई नई योजनाओं आगाज करा और इन योजना में ही आज के वक्त दे प्रधानमंत्री अन्न गरीब अन्न कल्याण योजना चाली दिया यह योजना माध्यम के हर

परिवार लाई 5 किलो राशन चाहे गेहूँ आ चाहे चावल आ चावल रूप से सरकारी सहयोग का मेल दो लागो दवा और अपने परिवारों भरण पोषण इन्हें आम तो आम लोग हैं कॉर्नर लगा दो। योजना मुख्य उद्देश्य गरीब और जितने जरूरतमंद आ तीन लाख खाद्य सुरक्षा जो योजना खोरा और इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अधिनियम के तहत सारे जितने भी पात्र लोग हैं पात्र जो बोली कि जैसे अंत्योदय यदि कोई या IRDP दिया लाभार्थी जैसे अंत्योदय अन्य योजना और प्राथमिकता वाले जैसे परिवार आ तीनों प्रति तीन हर व्यक्ति ले हर महीने दे 5 किलो मुफ्त अनाज गेहूँ या चावल रूप दे सरकारी सहयोग के मेहर दुला दो तो हम सभी जितने मारे पात्र लोग तीन सभी या योजना फायदा लेना चाहिए और जो योजना एवं यानी कि 5 वर्ष तीन आगू चाली दिया और वर्ष 2029 तीन जो योजना मारे पूरे देश दे कायम रहनी और ए योजना फायदा देश 80 करोड़ लोग मेहर दो लागो दो तेरे एनी शोभली और कल्याणकारी योजना मारे देशा प्रदेश दे आज के वक्त दे चाली दिया थामा इन्हें एनी योजना पूरा फायदा लेना चाहिए। तेरा कार्यक्रम दे मारे एक होर शोभली लोक स्तुति मधुर लेनो मारे एव कार्यक्रम दे मारे आखिरी कलाकार पुष्पा देवी इन्हीं आवाज़ सुना तो मैं एक शोभलो जो लोकगीत

देखो जी, ऐ थी कार्यक्रम रा आखिरी लोक गीत। उपेश करने वाले हमारे कलाकार थी पुष्पा देवी। ए तो सती आज के हमारे कुल्लू कार्यक्रमों वक्त हुआ। डॉक्टर सुभाष महंस ने ही ले दिया इजाजत। नमस्कार।

0: कुल्लवी कार्यक्रम अभी आपने सुना। इसी के साथ हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साहिरा मुज्तबा।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
1: नमस्कार।
0: जय सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: रीता जी, बहुत ही बढ़िया हूँ। और आप सुनाएं, क्या हालचाल है, क्या कुछ चल रहा है इन दिनों?
0: जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान बागवान भाई बहन भी ठीक होंगे और अपने खेती बागवानी के काम भी जो है वो बखूबी निभा रहे होंगे।
1: जी
0: इन दिनों जो खेती बागवानी के काम करने होते हैं किसान भाइयों, अब जो गर्मी की आपने सब्जियां लगानी हैं उनमें करेला है, बैंगन है और खीरा है, कद्दू है। इसके अलावा आप कंद वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं, जिस तरह आप अरबी लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं और जिमीकंद लगा सकते हैं। ये आप कंद वाली सब्जियां भी इन दिनों लगा सकते हैं। और बात आती है किसान भाइयों, आपके जहाँ सब्जियाँ या फिर पनीरी लगी हुई है वहाँ पर आप सिंचाई का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये कुछ सामयिक बातें हैं जो हमने आपसे जो है साझा की हैं। तो जय सिंह जी, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। आज के जो कृषि जगत के मुख्य आकर्षण हैं उनकी बात करें।
1: जी, किसान भाइयों, काम की बातों के तहत आज आपको जानकारी देंगे मक्की की किस्मों के बारे में और पहाड़ी लोकगीत से करवाएंगे आपका मनोरंजन और साथ ही साथ सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा गाभिन गाय व बछड़ों की देखभाल। कार्यक्रम में अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनसे बातचीत करेंगे अशोक। किसान साथियों, खेतों में इन दिनों आपने गेहूं की फसल जो है उम्मीद करते हैं कि निकाल ली होगी और बढ़िया सुखा करके उसका भंडारण भी किया होगा।
0: जी जी।
1: लेकिन अभी भी कुछ एक क्षेत्र, जो आप मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें,
0: जी जी,
1: तो उसमें अभी गेहूं की जो फसल है कई जगह अभी कटाई चली हुई है, बारिशों का मौसम भी है।
0: जी,
1: किसान साथियों, ऐसे में यही आपसे चाहेंगे कि बारिशों के मौसम में फिलहाल तो आप कटाई ना करें, लेकिन जैसे धूप निकलती है आप गेहूं की कटाई कर सकते हैं और साथ ही साथ जैसे ही बारिश आती है तो आप प्लास्टिक का तिरपाल भी साथ रखें, गेहूं को इकट्ठा करें, क्योंकि एक बार गेहूं यदि गीला हो जाता है तो उसको सूखने में भी कई दिन लगते हैं, तो
0: जी
1: उसकी गाही में भी दिक्कतें आती है। तो किसान साथियों, ये कुछ एहतियात है जो कि बरतना जरूरी होते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: और आने वाले समय के लिए किसान साथियों, आप मक्की की फसल की बिजाई और साथ ही विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं उसकी भी बिजाई की तैयारी कर रहे होंगे। गेहूं की कटाई के बाद जब आपके खेत खाली हैं, बारिश होती है, खेतों में नमी होती है,
0: जी,
1: तो आप कम से कम 2 से 3 बार खेतों की जुताई जरूर कर ले। उससे क्या होता है कि जितने भी जो कीट पतंग है और अन्य जो खरपतवार है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद यदि आप खेतों में बिजाई करें मक्की और विभिन्न प्रकार की दालें जो हैं, तो आपकी फसल भी बढ़िया होगी और इस समय बिजाई के लिए भी बहुत ही उपयुक्त समय चला हुआ है और बीच में बारिशें भी हो रही है।
0: जी जी।
1: अब आपने बिजाई करनी है किसान साथियों, तो उसमें बात आती है कि आपको मक्की की बिजाई करनी है तो उसमें किस्में कौन सी लेनी है ताकि आपको अच्छी जो उसका मुनाफा आपको मक्की का मिल सके।
0: जी, तो जयसिंह जी, आज का हमारा विषय भी यही है, मक्की की किस्में, मक्की की पैदावार अधिक से अधिक ली जा सकती है अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे।
1: इसके साथ ही आप जो है गोबर की खाद भी यदि मिला दें और उसके साथ आप खेतों की गहाई करें तो जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसकी कमी जो है वो गोबर के साथ पूरी हो जाती
0: जी,
1: है।
0: जी,
1: अब बात आती है किस्मों की।
0: जी किसान भाइयों, किस्मों की बात करें तो गिरजा कंपोजिट L118 भी इसे कहते हैं। इस किस्म को प्रदेश के निचले व मध्यवर्ती और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की उन भूमियों में जहां पानी का निकास ना होता हो उसके लिए ये अनुमोदित की गई किस्म है। ये समय पर तैयार होने वाली और अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसके पौधे मध्यम लंबाई, तना इसका मोटा होता है, पत्ते गहरे हरे और सीधे होते हैं और ये गिरते नहीं हैं। इस किस्म में पौधे पर 2 भुट्टे लगते हैं जिनमें ऊपर कसा हुआ छिलका होता है और इसके दाने हल्के नारंगी रंग के और कठोर होते हैं। किसान भाइयों, ये किस्म 110 दिनों में पककर के तैयार हो जाती है तथा उपज हमारे किसान भाई से ले सकते हैं 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग।
1: किसान साथियों, ये तो बात की गिरजा कंपोजिट L118 की। अब बात करते हैं अर्ली कंपोजिट किस्म की। इस किस्म की खासियत यह है कि अधिक पैदावार के लिए अच्छे जल निकास वाली भूमि इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। यह किस्म कम उपजाऊ भूमि और असिंचित क्षेत्रों के लिए भी अच्छी पैदावार देती है।

0: पूरे सूखे मौसम की परिस्थिति में यदि इसकी बिजाई मई और जून महीने में की हो तो इसकी उपज बहुत ही अधिक आती है। यानी कि आजकल के दिनों में यदि आप बिजाई करते हैं किसान साथियों, तो अर्ली कंपोजिट किस्म से आपकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी।
1: जी
0: और जिला कुल्लू, बिलासपुर, मंडी के जो ऊंचे क्षेत्र जहाँ खेतों में पानी नहीं ठहरता, वहीं चंबा, कांगड़ा, सोलन के शुष्क क्षेत्रों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त किस्म है, क्योंकि यह किस्म जल्दी तैयार हो जाती है और अगली फसल की बिजाई के लिए जमीन में काफ़ी नमी रह जाती है, जिससे फसल का अंकुरण अच्छा हो जाता है। इसके दाने हल्के नारंगी रंग के, कठोर और आटा रोटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। किसान साथियों, बात करें, यह किस्म 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है और उपज 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग है।
1: जी बजारा मक्का की बात करें तो इसे L201 भी कहते हैं। ये किस्म जल्दी तैयार होने वाली मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त इसे माना गया है। किसान भाइयों, इसके दाने चमकीले, नारंगी और कठोर होते हैं। इसमें भुट्टे पौधे के बीच में ही लगते हैं और तोड़ने में सुविधा रहती है और पौधे गिरते नहीं हैं। ये किस्म मेडिस टर्सिकम झुलसा रोग सहनशील इसकी जो है शक्ति है और ये किस्म 85 से 94 दिनों में तैयार होती है तथा उपज हमारे किसान भाई से ले सकते हैं 35 से 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग।
0: जी, किसान साथियों, बात करते हैं नवीन कंपोजिट किस्म की। यह किस्म जल्दी तैयार होने वाली मध्यम ऊंचाई और मोटे पीले व कठोर दानों वाली किस्म है। इस किस्म को निचले क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किया गया है, क्योंकि यह जल्दी तैयार होने के कारण यह मक्की, तोरिया, गेहूं वाले फसल चक्र के लिए उपयुक्त पाई जाती है। इसकी उपज 35 क्विंटल हेक्टेयर के लगभग है। अब बात करते हैं HQPM में एक की, यानी क्वालिटी प्रोटीन मक्की की। किसान साथियों, यह अधिक पैदावार देने वाली, उच्च गुणवत्ता वाली, प्रोटीन से भरपूर एकल क्रॉस संकर मक्की की किस्म है।
1: जी
0: इस संकर किस्म में सामान्य मक्की की अपेक्षा दो अनिवार्य अमीनो एसिड लाइसिन एवं ट्रिप्टोफेन की दुगनी मात्रा पाई जाती है। इसकी खेती से लोगों की कुपोषण की समस्या से निदान के साथ साथ पशु मुर्गी दाना उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। इस किस्म के भुट्टे लंबे व गोलाकार होते हैं और दाने पीले, पिचके, डेंट हुए, जिनका भार 280 से 290 ग्राम प्रति हजार दाने होता है। पौधे मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, पत्ते मध्यम चौड़े और गहरे रंग के होते हैं, तने मोटे होते हैं और भुट्टा पौधे के मध्य भाग पर लगता है, इसलिए इसमें हवा से गिरने की समस्या नहीं होती है। जिन क्षेत्रों में किसान साथियों हवा से मक्की गिरती है, ऐसे सभी क्षेत्रों में जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं,
1: जी
0: उसके लिए HQPM 1 यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मक्की जो है, ये बहुत ही उपयुक्त किस्म है, संकर किस्म है। अब बात करते हैं कि यह
1: जी
0: संकर किस्म खादों की अधिक मात्रा के प्रति प्रतिक्रियाशील है। इसकी औसत पैदावार 68 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म मेडिस टर्सिकम झुलसा रोग अवरोधी और 110 से 112 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म प्रदेश के निचले मध्यवर्ती यानी कि 1200 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त है और जिसकी औसत उपज 20 क्विंटल हेक्टेयर है। इसलिए इस संकर किस्म का बीज उत्पादन आर्थिक रूप से किसान साथियों बहुत ही फायदेमंद साबित होता है।
1: जी किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं PMZ शार हाइब्रिड मक्का। ये अधिक पैदावार देने वाली मध्यम अवधि की संकर किस्म है जो सिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका पौधा मध्यम ऊंचाई वाला और पत्तियां चौड़ी तथा आधी झुकी हुई होती हैं। भुट्टे लंबे और मोटे होते हैं जो पौधे के मध्य में लगते हैं। किसान भाइयों, इसके दाने मोटे, सेमी फलिट और सुनहरी पीले रंग के होते हैं तथा एक भुट्टे में लगभग 400 दाने होते हैं। ये किस्म हरे भुट्टे और दाने दोनों के लिए उपयुक्त है। इसके पौधे का तना मोटा होता है जिससे इसके गिरने की संभावना कम होती है। इस किस्म की तना गलन रोग रोधक क्षमता साधारण होती है और पत्तियों को प्रभावित करने वाले रोगों को सहने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी औसत पैदावार हमारे किसान भाई ले सकते हैं 78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ये किस्म 96 से 105 दिनों में पककर के तैयार हो जाती है। अच्छी पैदावार

0: देने के कारण ये किस्म प्रदेश में सबसे लोकप्रिय है और प्रदेश के हर क्षेत्र में उगाई जाती है। किसान भाइयों, इसका किसान की आमदनी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
1: किसान साथियों, खेतों में जो है बीजों का बदलना भी काफ़ी उपयुक्त होता है, क्योंकि 2 से 3 बार यदि आप एक ही तरह का बीज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है
0: जी।
1: उपज जो है वो भी अच्छी नहीं निकलती है।
0: जी जी
1: ऐसे में समय रहते आप बीज भी जो है वो जरूर बदल लें। किसान साथियों, अब बात करते हैं बजौरा पॉपकॉर्न की, तो यह भी एक विशेष प्रकार की मक्की होती है जो कि पॉपकॉर्न के लिए उपयुक्त है। किसान साथियों, निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों के लिए यह किस्म बहुत ही उपयुक्त है और भुनने पर 20 गुना ज़्यादा फूल जाती है। इस किस्म के दाने छोटे मोतियों की तरह गोल, सख्त, चमकीले और संतरी पीले होते हैं और इसके 1000 दानों का वजन लगभग 120 ग्राम होता है। इसकी पत्तियां संकरी, नरमंजरी, बड़ी व खुली और पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं। भुट्टे लंबे एवं पतले जो कि पौधों के मध्य में लगते हैं। इस पॉपकॉर्न की औसतन पैदावार 25 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। किसान साथियों, यदि आप मुख्य रूप से इस पॉपकॉर्न की बिजाई यदि आप करते हैं तो इसका बाजार में भी आपको अच्छा दाम मिलता है और साथ ही साथ पॉपकॉर्न बनाने के यह काम आती है। किसान साथियों, यह किस्म 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और प्रमुख पत्ता झुलसा रोग के प्रति भी यह सहनशील पाई गई है। यह विशेष प्रकार की मक्की सामान्य दाने वाली मक्की से 6 से 7 गुना अधिक आय अर्जित कर सकती है और किसान इसे नकदी फसल के रूप में अपनाकर अपनी आर्थिक दशा को भी सुधार सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं।
0: जयसिंह जी, आपने बात कही बजौरा स्वीट कॉर्न की, तो जी बिल्कुल इसकी जानकारी अपने किसान भाइयों को देते हैं। मीठी मक्की ताज़ा खाने के लिए और संसाधित पदार्थों के रूप में उपयोग के लिए ये प्रचलित है। मीठी मक्की में शर्करा की मात्रा अधिक होने के कारण सामान्य मक्की से ये भिन्न होती है। शर्करा की अधिकतम मात्रा परागण के 18 से 21 दिन के अंतराल में पाई जाती है और ये समय हरे भुट्टे की तुड़ाई के लिए अति उपयुक्त माना गया है। इस किस्म के दानों के छिलके सामान्य मक्की के दानों की तुलना में पतले होते हैं जो इसको अधिक मुलायम बनाते हैं। इस किस्म के पौधों के तने मध्यम ऊंचाई तथा मोटे होते हैं, पत्ते गहरे हरे, नरम मंजरी बड़ी और खुली, रेशा लाल होता है। प्रत्येक पौधे के मध्य में 1 से 2 भुट्टे लगते हैं जिनका कसा हुआ छिलका होता है और इसके दाने कम सिकुड़े हुए तथा पीले सुनहरी रंग के होते हैं जिनमें 20 से 22% शर्करा की मात्रा होती है और ये किस्म निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म मानी गई है।
1: तो रीता जी, आपने बात की बजौरा स्वीट कॉर्न के बारे में और उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी का हमारे किसान और बागवान भाई बहनें भरपूर लाभ उठाएंगे।
0: जी,
1: तो किसान साथियों, कार्यक्रम में हमने बात की मक्की की किस्मों के बारे में। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं कृतिका तनवर की आवाज़ में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: किसान भाइयों, कृतिका तन्वर की आवाज़ में ये तो सुना आपने लोकगीत। और हर रोज़ की तरह हम आपको विभिन्न तरह की जानकारियाँ देते हैं। आज जानकारी का विषय रहेगा गाभिन गाय व बछड़ों की देखभाल। डॉक्टर संदीप गुप्ता से जानकारी हासिल कर रहे हैं अशोक।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हम समय समय पर कृषि जगत कार्यक्रम के माध्यम से आपको समसामयिक जानकारी लेकर आते हैं, ताकि आपको कार्य करने में जो है आसानी हो और आप जो है नई तकनीकों से अवगत हो सके और अच्छा मुनाफा जो है आप अपने व्यवसाय से कमा सके। आज किसान भाइयों हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर संदीप गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी लेंगे कि गाभिन गाय और बछड़ों की देखभाल जो है हमारा पशुपालक भाई किस तरह से कर सकता है और किन किन खास बातों का जो उसमें उनको ध्यान रखना होता है। तो डॉक्टर साहब, गाभिन गाय और बछड़ों की देखभाल की जब बात आती है तो सबसे पहला हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गाभिन गाय को जो है महामारी से बचाने के लिए कौन कौन से जो है टीकाकरण किए जा सकते हैं।
2: गाभिन गाय की महामारी से बचने के बारे में टीकाकरण की अगर हम बात करें तो इसमें खास ख्याल रखना पड़ता है। महामारी से बचने के लिए जो मेन टीकाकरण हमारा किया जाता है वो है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, जो खुर मुंह में छाले पड़ जाते हैं जिस गाय के, उसको FMD हो जाती है, टेम्परेचर हाई रहता है। दूसरी बीमारी है हिमरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसको गलघोटू कहते हैं। और तीसरी बीमारी है बैक क्वार्टर।
1: जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप ये बताएं कि जो आपने FMD जो बीमारी, जिसको कि खुर मुंह की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पहचान जो है किस तरह से होती है, लक्षण क्या होते हैं और हमारा किसान भी इसको किस तरह से जो है पहचान सकता है।
2: खुर मुंह की बीमारी में सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि इसमें जो है खुर में और मुंह में अल्सरेशन होगी, मतलब छाले पड़ेंगे।

0: ठीक
1: है,
0: है।
1: मुंह से बहुत लार टपकेगी, बुखार रहेगा, 105 से 106 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। दूध की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, जैसे 10 लीटर गाय अगर दूध देती है तो 1 से 2 लीटर पे आ जाएगी, और मृत्यु होने का भी बहुत खतरा रहता है। तो इसके लिए टीकाकरण करवाती है, जो साल में 2 बार होता है, मार्च महीने में और सेप्टेम्बर के महीने में। 6 महीने तक की इसकी इम्यूनिटी रहती है, 6 महीने तक टीका नहीं लगवाना पड़ता है। तो किसान भाई जो है मार्च के महीने में लगवा लें और 6 महीने बाद सेप्टेम्बर में लगा लें। किसी कारणवश अगर छूट जाता है तब भी टीकाकरण कभी भी करवा सकते हैं। ख्याल रखने वाला यह है कि 6 महीने की इसकी इम्यूनिटी रहेगी।
0: जी, यानी कि वर्ष में जो है 2 बार इसका टीकाकरण किया जाता है।
1: हाँ जी।
0: इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, आपने बात की HS, जिसे कि गलगोंटू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में भी आप किसानों को थोड़ा सा बताएं।
1: गलगोटू बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब हम पशुपालन के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा है इसमें मृत्यु दर है। इसके प्राइमरी सिम्टम ये रहते हैं कि इसमें भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है, बुखार चढ़ता है, 105 से 106 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और
0: जी
1: जैसा कि नाम बोलते हैं गलगोटू है कि गला घुटना शुरू हो जाएगा। पशुपालक जो है पाएंगे कि एकदम से गाय की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे बचाव के लिए भी टीकाकरण किया जाता है। इसमें ख्याल रखने की बात यह है कि साल में 1 बार टीकाकरण होता है, जो कि मई जून के महीने में होता है। मतलब अगर FMD का टीका आप मार्च में लगा रहे हैं तो उसके 1 से 2 महीने बाद इसका टीकाकरण होता है, मई जून में इसका टीकाकरण हो जाता है, और ये साल में 1 बार करना होता है। इसकी इम्यूनिटी 1 साल की होती है।
0: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपने बात की BQ के बारे में, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप किसानों को बताएं।
1: BQ से हमारा मतलब है ब्लैक वाटर। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो गाभिन गाय को हो सकती है और जिससे मृत्यु दर बहुत हाई है। इसमें भी टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, पर इसमें एक खास सिम्टम आता है। उसमें यह है कि जब आप गाय की गर्दन में या हिप्स में हाथ लगाएंगे तो क्रिपटेटिंग साउंड आएगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होती है इस बीमारी की, क्रिपटेटिंग साउंड। इससे बचाव के लिए भी हमारे को ये ख्याल रखना पड़ता है कि इसका टीकाकरण होता है, वो इस साल में 1 बार इसका टीकाकरण होता है। इसके टीकाकरण की ये खासियत है, ये HS के साथ मिक्स होता है, कंबाइंड होता है,
0: जी
1: हेमरेजिक सेप्टिसिमिया और ब्लैक वाटर का इकट्ठा टीकाकरण होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च में FMD का होता है और मई जून में हमारा HSBQ का टीकाकरण होता है। HSBQ की, जैसे HS की इम्यूनिटी 1 साल की है, वैसे BQ की भी इम्यूनिटी 1 साल की रहती है।
0: अब बात करेंगे कि गाभिन गाय की जो है क्या एक खुराक होनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ माँ बन सके।
1: आमतौर पे जब भी हम गाय की खुराक के बारे में बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने पिछली पार्चुरेशन है, पिछले सुए में कितना दूध दिया है या अभी वो कितना दूध दे रही है। जैसे मान लीजिए एक फार्मूला है, अगर एक गाय 6 लीटर दूध दे रही है तो उसको फीड लगेगी कम से कम 4 किलो, मतलब 2 किलो फीड उसके रखरखाव के लिए लगेगी और हर प्रत्येक 3 किलो पे 1 किलो फीड लगेगी। तो 6 किलो का अगर दूध दे रही है गाय तो 4 किलो फीड बनी, मतलब 2 किलो फीड सुबह, 2 किलो फीड शाम को लगेगी। इसी तरह से फार्मूला बदलता जाता है, अगर 12 किलो दूध दे रही है तो फिर 6 किलो फीड लगेगी, 3 किलो सुबह, 3 किलो शाम। जानने वाली बात यह है कि 2 किलो फीड लगेगी रखरखाव के लिए और प्रति 3 किलो मिल्क पे 1 किलो फीड लगेगी। अब साथ में साथ ये ख्याल रखना है कि पेट के कीड़ों की दवाई जो है गाभिन गाय को जरूर खिलाएं, ठीक है जी। वो फेनबेंडाजोल नाम की गोली आती है जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती है। 1 गोली आप 1.5 ग्राम की खिलाएंगे और 14 दिन बाद फिर रिपीट करेंगे और 3-3 माह के अंतराल में उसको खिलाते रहेंगे जब तक गाय सूई नहीं, ठीक है। इसके साथ तरल कैल्शियम खिलाएंगे आप। कैल्शियम बहुत तरह का मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में लेना है तो एस्काल गोल्ड कैल्फोस वेट के नाम से आता है, प्रतिदिन पिलाएंगे आप। सूने के टाइम तक पिलाते रहेंगे, सूने से 15 दिन पहले बंद कर देंगे। उसका कारण ये है कि अगर कैल्शियम खिलाते रहे तो दिमाग को ये सिग्नल नहीं जाता कि गाय बच्चा दे दे, तो 15 दिन पहले अगर आप बंद कर देंगे तो दिमाग से गाय को सिग्नल जाएगा कि बच्चा पार्चुरेट कर दे। तो कैल्शियम आपने खिलाते रहना है, 15 दिन पहले बंद करना है और सोने के तुरंत बाद फिर शुरू कर देना है। तीसरा हमारा है खनिज मिश्रण खिलाना बहुत जरूरी है। 25 से 50 ग्राम डेली खनिज मिश्रण खिलाएं। खनिज मिश्रण का मतलब है मिनरल मिक्सचर जो है वो लगातार खिलाना है आपने पूरी प्रेगनेंसी में। मार्केट से ग्रोमिन SC या मिनफा के नाम से आता है, इस नाम का खरीद लें और 50 ग्राम दिन का खिलाएं सोने तक। किसान भाई चाहें तो अपने आप भी फीड बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा था 2 किलो सुबह 2 किलो शाम फीड खिलाएं 6 किलो वाली गाय के लिए। तो 2 किलो फीड कैसे बनानी है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। 2 किलो की अगर फीड बनानी है तो 750 ग्राम उसमें चोकर होनी चाहिए
0: जी,
1: 750 ग्राम उसमें खल होनी चाहिए। खल कोई भी हो सकती है, मूंगफली की खल हो सकती है, सरसों की हो सकती है, बिनौले की खल हो सकती है। और 750 ग्राम आपका क्या हालत है इसमें दाना आएगा, चाहे वो गेहूं का हो चाहे मक्की का दाना हो। इसमें आपने 2 चम्मच नमक मिलाने और 50 ग्राम गुड़ मिलाना है। तो ये आपकी 2 किलो की फीड होगी। ये 2 किलो की फीड आप सुबह, 2 किलो की फीड शाम को खिलाएंगे अगर 6 किलो गाय आपका दूध देती है। तो इस तरह के फार्मूले से आप चलेंगे तो गाय को कोई भी मुसीबत नहीं आएगी।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की गाय को कैल्शियम देने की, तो थोड़ा सा आप बताएं कि गाय को जो ये कैल्शियम देना है तो ये 2 टाइम देना है कि एक ही टाइम से ये हो जाएगा।
1: कैल्शियम जो गाय को देना है उसमें मात्रा पे

0: डिपेंड करता है। जैसे 100 ml इसकी डोज रेट है, 100 ml डेली देंगे आप,
1: जी
0: प्रेगनेंसी शुरू होने से स्टार्ट कर देंगे और 100 ml डेली देंगे, एक बार दिन में देना है और सोने के 15 दिन पहले बंद करना है, फिर
1: जी
0: सोने के बाद फिर शुरू कर देना है।
1: जी डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गाभिन गाय को आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां जो है मुख्य रूप से लग जाती है।
0: इसमें प्रेगनेंसी में जो आमतौर से बीमारियां गाभिन गाय को लग जाती हैं, उनमें ख्याल रखने वाली बीमारी का नाम है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स होता है जिसमें बच्चादानी, गांव में इसको दंदी भी बोलते हैं, जगहों पे अलग अलग नाम से ले जाते हैं, हम लोग इसको प्रोलैप्स बोलते हैं।
1: जी
0: इसमें जो है बच्चादानी गाय की जो है बाहर आ जाती है, तो इसमें प्रोलैप्स ये पेट के कीड़े की दवाई ना खिलाने या कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है। तो इसमें किसान भाई ये ख्याल रखें कि, और अगर घर में इसका इलाज करना है तो इसमें यही ख्याल रखें कि बर्फ़ वाले पानी से जो भी बच्चादानी बाहर निकली है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। पर किसान भाई अपने लेवल पे ये ख्याल करें कि जब ये बाहर निकल जाता है तो उसका साफ़ सफाई का ख्याल रखें और बर्फ़ वाले पानी से साफ़ करके अच्छी तरह से अंदर कर सकते हैं तो कर दें।
1: जी
0: दूसरी बीमारी जो है वो इसमें है टॉर्शन। इसमें जो है बच्चादानी पलट जाती है, ये दो तरह की हो सकती है, प्री सर्वाइकल या पोस्ट सर्वाइकल। प्री सर्वाइकल का मतलब है कि जो सर्विक्स से पहले, पोस्ट सर्वाइकल का मतलब है जो सर्विक्स से बाद। तो भागों में और बांटा है, लेफ्ट या राइट, मतलब या तो उल्टी साइड पलट जाएगी बच्चादानी या सीधी साइड पलट जाएगी बच्चादानी। इसमें भी किसान भाई पशु गाय को पलटा देते हैं और वो बच्चादानी को सीधी पोजीशन में ले आते हैं और बच्चा निकाल देते हैं। तीसरी बीमारी हमारी जो है वो है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर बहुत ही आम बीमारी है, नाम इसका मिल्क फीवर है, पर इसमें टेम्परेचर जो है गिर जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है इसमें। इसमें जो है कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अगर किसान भाई, जैसे मैंने अभी बताया था कैल्शियम खिलाना जरूरी है, अगर कैल्शियम खिलाना बंद कर दें तो कैल्शियम की कमी की वजह से गाय जो है सूने के बाद एकदम से बैठ जाती है
1: जी
0: और गर्दन पूंछ की तरफ कर लेती है, ठीक है जी। उसमें फिर तुरंत हमारे को कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट, आप टॉर्च डालने में जाएँ, कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट इमिजिएटली IV चढ़ाना पड़ता है, 300 ml IV, 150 ml सेपकट। और ये बिल्कुल कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, अगर आप एकदम से बता देंगे तो इसका इलाज हो जाता है। 3 दिन से ज़्यादा अगर गाय बैठी रह गई तो फिर उसको डाउनर काउ सिंड्रोम बोलते हैं, इलाज यही रहेगा सर। अगली बीमारी का नाम है रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब है जेर का नहीं गिरना। जैसे गाय सोती है, हमारी गबन गाय सोती है, तो उसकी जेर का ना गिरना, वैसे आमतौर पर जेर जो है 12 से 24 घंटे के अंदर गिर जाती है, पर अगर 12 से 24 घंटे के अंदर जेर ना गिरे और साथ में इसको दवाइयाँ खिलानी शुरू करें, जैसे पाउडर प्लेंटा है 50 ग्राम BD 3 दिन तक खिलाएं, ओरल जो है यूट्रोफ्रेश 100 ml डेली 5 दिन तक खिलाएं, और बोलस इनुलन 2 सुबह 2 शाम 3 दिन तक खिलाएं।
1: के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब बछड़ा पैदा हो जाता है तो इसकी जो है किस तरह से जो है देखभाल करनी चाहिए।
0: बछड़े की देखभाल का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ही बछड़ा पैदा होता है उसकी नेवल कॉर्ड को लाइगेट करना पड़ता है। जैसे ही गाय सूए, बछड़े का नेवल कॉर्ड लाइगेट करें, गाय का ताज़ा सूआ हुआ दूध जो है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं वो पिलाएं, ठीक है ना, उसमें बिल्कुल कमी ना करें, कोलेस्ट्रम पिलाएं, नेवल कॉर्ड को लाइगेट कर दें, और कम से जब 15 से 17 दिन का बछड़ा हो जाए या बछड़ी हो जाए तो उसके सींग निकाल दें, ठीक है, और साथ में पेट के कीड़े की दवाई दें। इसमें दूध की मात्रा कितनी देनी है ये बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे सपोज करें इसका एक फार्मूला है, अगर 25 किलो का बछड़ी जन्म लेती है तो या बछड़ा जन्म लेता है तो उसमें उसके 10% वेट के हिसाब से दूध देना है। जैसे 25 किलो का बछड़ा है तो 2.5 किलो दूध उसको हर रोज़ दिन का देना है। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो बछड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
1: डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने गाभिन गाय और बछड़ों की देखभाल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारे पशुपालक भाइयों को जो है दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुना जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था गाभिन गाय व बछड़ों की देखभाल। कार्यक्रम में अधिक जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनसे बातचीत कर रहे थे अशोक। किसान साथियों, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, स्मूथ स्वरों में ये तो सुना आपने लोकगीत।
1: अब रीता जी किसान साथियों को जानकारी देते हैं कि कल कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ जानकारी हम किसान भाइयों को देंगे।
0: जी, कल के मुख्य आकर्षण होंगे काम की बातों के तहत कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। लोकगीतों से आपका मनोरंजन करवाया जाएगा और हर रोज की तरह हम आपको जानकारियां देते हैं। कल जानकारी का विषय रहेगा पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय।
1: तो किसान साथियों सुनना ना भूले अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत। किसान साथियों के साथ ही कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है। आप सभी किसान और बागवान श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जन

0: में जारी।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार, स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने नकारा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, नगर निगमों के चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारणों पर मंथन करेगी कांग्रेस। और गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए 38 पदक। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान आज से 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेशवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश व प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। राज्यपाल ने कहा कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
4: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे देश का एक सुंदर पहाड़ी राज्य है, जो कि इस प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण मदद करेगी। जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस बार स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रदेशवासी जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें।
3: इस दौरान हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन दल को कुल्लू के माउंट देव टिब्बा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर से चुने गए 24 एनसीसी कैडेट्स का ये दल 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए पीर पंजाल रेंज जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करते हैं। कविंद्र गुप्ता ने सभी कैडेट्स को सुरक्षित और सफल

0: आरोहण की शुभकामनाएं भी दी।
1: मुझे पूरा विश्वास है कि ये कैडेट जब इस सारे ट्रेनिंग से गुजरेंगे तो आने वाले समय में ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक अशक्त बने, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो मेहनत, इनकी जो लगन, जो इनकी तपस्या रहेगी, जो देशभक्ति की भावना, वो अपने आप में एक जो विकसित भारत 2047 का हमारा सपना है उसको भी आगे बढ़ाएगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों के दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी HP रेडी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना इस वर्ष जनवरी से नवंबर 2030 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले 3 वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने पर भी बल दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनाव परिणामों में जनता ने भाजपा को अपना भरपूर समर्थन दिया है और कांग्रेस की करारी हार हुई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटियों और मुख्यमंत्री की बात पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों में अपनी हार का पहले से अंदेशा था, इसीलिए वे इन चुनावों को टालना चाहते थे। उन्होंने राज्य सरकार को साजिश करने के बजाय जनहित में निर्णय लेने और केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही आर्थिक सहायता को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने की सलाह भी दी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 4 में से 3 नगर निगमों में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने माना कि इन चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके कारणों पर पार्टी स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पालमपुर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं।
2: ये चुनाव खास करके लोकल फैक्टर्स के ऊपर लड़े जाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं जो जनादेश मिला है वो वहाँ के लोगों को मिला है, स्थानीय निकाय के लोगों को मिला है, स्थानीय प्रधानों को मिला है, उप प्रधानों को मिला है, BDC मेंबर्स को मिला है, जिला परिषद मेंबर्स को मिला है। उस पर हम मिलकर आने वाले समय में कार्य करेंगे और हर जगहों पर जहाँ पे समितियां बननी है, जहाँ पे जिला परिषद बनना है, उस पर पूरा प्रयास भी किया जाएगा कमेटीज बनाने का और मिलकर हम फिर आगे कार्य आने वाले समय में करेंगे।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। वर्ष 1993 बैच के उत्तराखंड मूल के कमलेश कुमार पंत के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। के पंत ने कहा कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकेगा। असम के गुवाहाटी में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने खिलाड़ियों की इस अद्भुत सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता राज्य के युवाओं की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। पंचायती राज संस्थाओं के

0: हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जनादेश प्राप्त करने वाले हमीरपुर जिले की बगवाड़ा, गवारडू और कराह पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भेंट की। इस अवसर पर प्रोफेसर धूमल ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतें विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति देने, जन समस्याओं के त्वरित समाधान और समाज के प्रत्येक वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करना आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार, स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने नकारा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, नगर निगमों के चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारणों पर मंथन करेगी कांग्रेस। और गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए 38 पदक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: हर खुशी अब लगे नमी,
1: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। इस खुशनुमा और सुनहरी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एफएम शिमला पर अब आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम दीपा बिकटा के साथ। संगीत रूह की खुराक है जो उदास दिलों में भी जान फूंक देती है, तो हम इसी सुरमय सफर पर निकल रहे हैं जहां हर गीत एक नई कहानी कहेगा। जब भी पुराने गीतों की बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना अपनी ही कहानी कह रहा हो। उस दौर की सादगी और आवाज़ों का जादू आज भी हमारे दिलों पर राज करता है। वो इश्क भी क्या इश्क था जिसमें खत की जुबान होती थी, वो नगमे भी क्या नगमे थे जिनमें रूह की आवाज़ होती थी। तो अब करते हैं आगाज़ एफएम शिमला पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गाना अंदाज फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

0: उम्र है,
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में जुगनू फिल्म का गाना। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का अगला नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जब जब फूल खिले फिल्म से।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: मेरे सनम फिल्म के इसी गाने के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल SC

0: census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है FM शिमला के साथ।
2: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
3: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
1: FM शिमला पर लीजिए एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: रखी दुनिया सारी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं फिल्म संगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हीरोपंथी मूवी के इसी सॉन्ग के साथ फिल्म संगीत में आज के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया

0: भी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री

0: रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से

0: घटकर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
3: वैली 1 जून से 31st ऑफ अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters.

हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में टाइम हुआ है रात्रि के 9:15 और FM शिमला पर अब आप सुनेंगे एक फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है कभी खुशी कभी गम। जी हाँ लिसनर्स, अगर बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म 2001 की एक ब्लॉकबस्टर पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इसे करण जौहर ने लिखा और निर्देशित किया है। ये फिल्म अपनी शानदार स्टारकास्ट, पारिवारिक मूल्य और सुपरहिट गानों के लिए आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। तो लीजिए आप भी इंजॉय कीजिए।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जी हाँ लिसनर्स, आपको बता दें कभी खुशी कभी गम फिल्म का संगीत बहुत ही बेहतरीन था और इसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। ये फिल्म 2001 में भारत के साथ साथ विदेशों में भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई थी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते जिसमें मुख्य रूप से काजोल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जया बच्चन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और करीना कपूर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ और एंजॉय कर रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है कभी खुशी कभी गम।

इसी सॉन्ग के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला पर अब आप एंजॉय करेंगे ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन। जी हाँ लिसनर्स, प्रोग्राम में अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी चॉइस के सॉन्ग्स तो आप भी हमें सेंड कर सकते हैं ईमेल्स और एंजॉय कर सकते हैं अपनी चॉइस के सॉन्ग्स सिर्फ और सिर्फ 103.7 में।

हर्ट्स पर। हमारा ईमेल आईडी है AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com। तो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और आपको सुनवाते हैं दो लफ्जों की कहानी मूवी का सॉन्ग अरमान मलिक की आवाज में। इंजॉय कीजिए और यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ लिसनर्स, आपके ईमेल्स हम तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो सबसे पहला ईमेल हमें भेजा है वो हमें भेजा है छत्रपति सनभांजी नगर से, भेजने वाले हैं राजेश पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा, सिटी दीवाना। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू हमें ईमेल कर रहे हैं और ये सुनना चाह रहे हैं हाउसफुल 3 मूवी का कोई सा भी सॉन्ग। आदर्श नगर मलाउट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन शर्मा, सौरभ शर्मा, सहानी शर्मा और मैंडी शर्मा का हमें ईमेल मिला है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। सूरज रेडियो श्रोता संघ से हमें ईमेल कर रहे हैं गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा और पुष्पराज सूरज राजपूत। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रचक और मुरली क्षत्रिय। राजस्थान से दतार सिंह और संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का हमें ईमेल मिला है। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना और इनका हमें ईमेल मिला है मुरादाबाद से। तो लीजिए आप सभी लिसनर्स के लिए हम प्ले कर रहे हैं हाउसफुल 3 मूवी का ये सॉन्ग। एंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए FM शिमला के साथ।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ और एंजॉय कर रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े का हमें ईमेल मिला है। तालुका पंढरपुर से जाकिर, सौम्या, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर और इनके चाचा चाची और पूरा इनका जो परिवार है वो हमें ईमेल कर रहा है और ये सुनना चाह रहे हैं आशिक फिल्म से कोई सा भी गीत। गांव कुम्हार सुहानपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया और इब्राहिम का हमें ईमेल मिला है। हनुमानगढ़ फजलिका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा का हमें ईमेल मिला है। महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रगेश और प्रतियेश हमें ईमेल कर रहे हैं। गांव वैजागर नमनाबाद ज़िला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर का हमें ईमेल मिला है और ये भी सुनना चाह रहे हैं कोई सा भी गीत। तो लीजिए आप सभी लिसनर्स के लिए हम प्ले कर रहे हैं आशिक मूवी का ये सॉन्ग। एंजॉय कीजिए और बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दिल की आवाज़ भी सुन आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम में अब हम जो ईमेल शामिल करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है चौपाहड़ी रोडू से भेजने वाले हैं तारा सिंह गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, जामिंदा गुंजेटा, लोभाराम गुंजेटा, अनुज और मुकुल गुंजेटा ने। और इन्होंने सुनना चाहा है चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी का सॉन्ग। नाभा ज़िला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कौरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। महाराष्ट्र से नासिर और नाजिया नासिर और साजिद का हमें ईमेल मिला है। गोविंदापुरा से जुनैद, सहिदा और जैनब हमें ईमेल कर रहे हैं। कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का हमें ईमेल मिला है। तो आप सभी लिसनर्स के लिए हम प्ले कर रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी का ये सॉन्ग।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया हमें ईमेल कर रहे हैं। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी का ईमेल मिला है। महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, परिणीता और टुक टुक हमें ईमेल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत पूरा माऊ से मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का हमें ईमेल मिला है। तो आप सभी लिसनर्स के लिए हम प्ले कर रहे हैं बिच्छू मूवी का ये सॉन्ग।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में टाइम हुआ है रात्रि के 10 और एफएम शिमला पर अब वक्त है गजलें कार्यक्रम का।

0: प्रसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

FM शिमला पर अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में त्रिशूल फिल्म का गीत।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: प्रश्न हमेशा
1: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म है दूसरा आदमी।

0: इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 11 बजने को है, अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे।

0: श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Minong Lian at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to